तो पुलिस ने इन बक्सों की तलाशी ली और ये जो बक्सा है जो हमने पहले दिखाया था जिस पर रामराज कोच लिखा हुआ है, हालांकि इस बक्से में ताला बंद है लेकिन ये बक्सा फिलहाल

0: से निकल गई। तो ये सारे दस्तावेज अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक के हैं, जो दोनों यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर जो केयर टेकर उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका?
1: हमारा सुंदरलाल नाम।
0: जानकारी मिली कि क्या कुछ कल पुलिस ने किया?
1: अब ये हमें कोई जानकारी, हम रहे नहीं, कोई हमको जानकारी नहीं। हम शाम को जब आए तब ये पता चला कि आए
0: था। कैश यहीं से बरामद हुआ था 5 जून को ना?
1: हाँ, वो तो कैश बरामद हुआ, वो तो बाद में न्यूज में निकला है, तब हमको भी जानकारी हुई कि कैश यहाँ से बरामद हुआ है।
0: तो बिल्कुल यहीं से पुलिस ने कल एक लंबी जांच की और जांच के बाद पुलिस यहाँ से निकली और ये वो इलाका है। इसी इलाके से पुलिस ने अविनाश शुक्ला की एक ब्रीजा गाड़ी बरामद की। पुलिस के मुताबिक ये सेकेंड हैंड कार है जो कि अविनाश के भाई अभिषेक के नाम से रजिस्टर्ड थी और पुलिस के मुताबिक ये जो गाड़ी है वो दान चोरी के पैसे से ली गई है। अयोध्या से कैमरा पर्सन कमल कांत के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।
2: On that note, slipping into a very short break, more news and updates on the other side. Stay with us on the broadcast.

0: And viewers, beginning this bulletin with the fresh drama unfolding in West Bengal. The battle for control of the Trinamool Congress has now spilled onto the streets and right to the doors of the party's Kolkata headquarters. A dramatic showdown unfolded after the rebel faction led by Leader of Opposition Ritha Pratap Banerjee laid claim to the TMC office, triggering a fresh political flashpoint. The rebel camp insists it has every right to access the premises, claiming it is now the principal opposition in the assembly and alleging that the lease for the party office has expired. The Mamata Banerjee camp, however, has hit back strongly. Senior TMC leaders Kunal Ghosh and Madan Mitra have accused the rebels of trespassing into Trinamool Bhavan, saying expelled members have no right to enter the party office. They have also alleged that the police and the central forces failed to act against the rebels. Meanwhile, Bengal Minister Dilip Ghosh called the row an internal matter of the Trinamool Congress, but condemned the scenes at the party office. It's a big story, a fresh face-off between the TMC and the rebel camp, and these are the reactions that we are picking up.
1: इस वक्त हम लोग खड़े हैं कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन इलाके में और मेरे पीछे है तृणमूल भवन जो पिछले रात को तृणमूल भवन में देखा गया था कि जो रिवेल विधायक थे ऋतव्रत बैनर्जी जो नए तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं ऋतव्रत बैनर्जी संदीपन शाह और जावेद खान मूल पांच जो विधायक थे वो कल रात को तृणमूल भवन में आए और अंदर घुसने के बाद जो ममता बनर्जी की फ़ोटो थी वो हटा दिया हटा देने के बाद वो लोग कह रहे थे कि वो लोग तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं और वो लोग अपने पार्टी ऑफिस में आए हैं और पार्टी ऑफिस में आने के बाद वहाँ पर जो कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाएगी और वहाँ पर जो कई समस्याएं लेके आएंगे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उन लोगों की बातें सुनी जाएंगी इसके बाद ही तृणमूल कांग्रेस के जो नए विधायक हैं वो पहुँचे और पहुँचने के बाद अंदर से ममता बनर्जी की फ़ोटो हटा दी गई हटा देने के बाद उन्होंने बाहर आने के बाद फिर जो एक बैनर है वो बैनर लगाया गया नया बैनर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जो चेयरमैन है वो अरूप राय है वो बैनर सीधा सीधी गेट के बाहर लगाया गया वो वीडियो मैं देख चाहूँगा कि वो बैनर लगाने के बाद ही जो नए तृणमूल कांग्रेस के नेता थे और विधायक थे वो इस तृणमूल भवन से बाहर चले गए उसके बाद थोड़ी देर बाद जो पुराने तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं कुणाल घोष जो कि ममता बनर्जी के गुट के हैं वो कुणाल घोष आए यहाँ पर आने के बाद वो लोग अंदर नहीं घुस पा रहे थे क्योंकि ऋतव्रत बनर्जी वो जो मेन डोर है जो मेन डोर पर ताला लगा दिए उसके बाद जो पुराने जो विधायक अर्थात ममता बनर्जी के जो विधायक थे वो आए और एक और ताला लगा दिया अर्थात बोला जा सकता है कि जो दो ताले लगाए गए एक ऋतव्रत तो नए तृणमूल कांग्रेस के विधायक लगाए हैं और एक पुराने तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष ने लगाया है दो ताला उसके बाद एक और बैनर लगाया गया तृणमूल भवन सामने तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी ऐसा पोस्टर दिया है ये पुराने जो तृणमूल कांग्रेस के नेता लोग हैं वो आके लगाए
2: तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस में गए थे और जाके वहाँ पे हम लोग बैठे तो इस पे कोई क्या आरोप लगा रहा है उस पे ध्यान हम लोग नहीं देंगे हम लोगों को विधानसभा में प्रिंसिपल ऑपोजिशन का स्वीकृति मिल चुका है उधर का जो मालिक है वो ऑलरेडी चिट्ठी दे चुका है कि जो लीज था वो ओवर हो चुका है तब भी वो लोग जबरदस्ती तो वो लोग बैठे हुए हैं क्या एफआईआर क्या किस कारण से एफआईआर खुद दखल करके बैठे हुए हैं और हम लोग जो तृणमूल कांग्रेस है तृणमूल कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है उसको हम लोग पकड़ के रखना चाहते हैं और हम ही लोग के ऊपर बोल रहे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे
3: लोग पुलिस से रिक्वेस्ट किए थे लेकिन पुलिस उनका फॉलो अप टीम जैसा बिहेव कर रहे थे वो लोग ताला मार के चले गए और पुलिस वो ताला को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग बोला वो साइट का गेस्ट से एंट्री लेने के पुलिस रैफ सेंट्रल फोर्स वहां पर खड़ा हो गया ये तृणमूल को डैमेज करने का एक बड़ा साजिश है पुलिस यहाँ का पुलिस स्टेशन का पुलिस के खिलाफ हमारा कोई कॉम्प्लेन नहीं है ये बहुत ऊपर से आ रहा है तो हम लोग इसीलिए कुछ दिन पहले हम लोग हमारा जो रेंट का एग्रीमेंट है यहाँ पर सबमिट किए थे हम लोग रिक्वेस्ट किया ये पूरा रिकॉर्ड चेक करके पुलिस वो पूरा सिक्योरिटी ठीक ठाक करने के लिए जो जो करना है पुलिस को करना चाहिए
4: तृणमूल कांग्रेस की वर्कर लोगों को ऊपर निर्यातन चल रहा है बीजेपी का गुंडाई चल रहा है बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा तृणमूल कांग्रेस कर्मी अपना घर में जा नहीं सकते हैं उसी टाइम

0: तृणमूल कांग्रेस की एक तो ग्रुप को बचाने के लिए 15 मिनट का अंदर सेंट्रल फोर्स आ गया है। इसी से ये साबित हो जाता है ये लोग बीजेपी का गोद में बैठकर बीजेपी का बी टीम होके काम कर रहे हैं।
1: ये टीएमसी का अंदरूनी मामला है, कौन नेता, कौन कब्जा करेगा ऑफिस, कौन विधानसभा में बैठेगा, कहाँ बैठेगा, ये तो माननीय स्पीकर विधानसभा में और बाहर कानून ठीक करेगा। लेकिन ये जो हो रही है ये नहीं होना चाहिए। जनता ने उनको मैंडेट दिया विपक्ष में बैठने के लिए, 15 साल सत्ता में रह के आदत खराब हो गया है, लड़ाई करने की इच्छा नहीं है, सुविधा में रहने का आदत है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा भूमिका होता है। हम चाहते हैं कि टीएमसी वो भूमिका का वादा करे, सरकार को दिशा दे, साथ दे करके सही रास्ता दिखाए कि जनता को सही में सुशासन मिले। वो काम नहीं कर पाएंगे तो जनता आगे भी सोचेगा।
2: And there's some more breaking news coming in regard to Badrinath Kedarnath. And this is yet again another controversy that's brewing. Badrinath Kedarnath Temple Committee orders probe into the donation misuse claims. The BKTC has ordered an inquiry into alleged misuse of temple donations. Action follows claims raised about the irregularities in donation handling. Committee says strict action will be taken if wrongdoing is found. The probe aims to ensure transparency in temple funds management. Remember, viewers, now this fresh controversy is brewing in the backdrop of the controversy that we have seen in Ayodhya, where temple funds have been misused, there's been theft, and there's an investigation that is underway. There's been a huge political controversy over it, and now in Badrinath Kedarnath as well, fresh allegations of some kind of misuse of the donation. The probe has been ordered and investigations will now find out what has really happened and whether there is transparency and things will come out. Let's listen in to some of the reactions that we are picking up and then we'll get more details from our report.
3: सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है और चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी गण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, सो कोज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी।
2: Well, that was Hemant Dwivedi, the chairman of the Badrinath Kedarnath Temple Committee, getting us the details on the order that has been given for probe. And now Kishore joins us live, NDTV's correspondent, tracking down the details very closely. Kishore, what's the latest that you're picking up? What is the order all about and what is the controversy? Who has made these allegations?
4: देखिए, इसमें जो सबसे पहले ऑर्डर अभी किया गया है, इसमें जांच के आदेश दिए गए हैं और कहा गया है कि जो तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है, जो लगातार आरोप लग रहे हैं, वो जो जिस पे लगाए जा रहे हैं उसके तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जाएगा। और जिस तरीके से बीकेटीसी यानी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने ये मामला सामने आया, उसके बाद लगातार मंदिर समिति के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में इस तरीके सामने आया। सबसे पहले उनको ये चीज़ बात का इल्म होना चाहिए कि अगर कोई सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का आरोप लगा रहा है तो अगर मंदिर की सुरक्षा पुख्ता है, अगर वहाँ पर चढ़ावा और दान दिया जाता है उसकी सुरक्षा पुख्ता है, तो ऐसे में कोई भी अगर आरोप लगाता है तो वो कैसे उसको कर सकते हैं। लेकिन आरोप जो है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि बद्रीनाथ जो मंदिर है वो धाम है, वो भारत के चारों धामों में सबसे प्रमुख धाम है, उत्तराखंड के चारों धामों में सबसे प्रमुख है और यहाँ पर देश विदेश से लोग यहाँ पर आ जाते हैं, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। और ऐसे में अगर वहाँ पर इस तरीके से आरोप लगे और वहाँ पर ये कहा जाए कि दान का जो पैसा है वो वहाँ के कर्मचारी ले रहे हैं और कर्मचारी भी जिस पर आरोप लगाया, क्योंकि भैरवी सेना के जो अध्यक्ष है संदीप खत्री, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो बीकेटीसी के अध्यक्ष है उनके निजी सहायक, यानी जो जांच के आदेश कर रहा है उन्हीं के निजी सहायक इस तरीके से अगर वो आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे में जांच कैसे सत्य होगी, जांच कितनी निष्पक्ष होगी, इस पर सवाल उठते हैं। बहरहाल जांच जरूर इसमें बिठाई गई है, अब ये देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है। लेकिन जिस तरीके से ये आरोप है, अयोध्या के बाद सीधा बद्रीनाथ धाम, क्योंकि बद्रीनाथ धाम एक बहुत आस्था का केंद्र है और करोड़ों हिंदू यहाँ पर पहुँचते हैं, ऐसे में वहाँ पर अगर दान पात्र यानी जो दान दिया जाता है, चंदा दिया जाता है, उसके उसमें हेरा फेरी हो, उसमें चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाए, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसमें उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। और ये जाँच किसके लेवल पर बिठाई गई है ये भी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मंदिर के लोग ही अगर जांच करें तो ऐसे में सवाल ही उठता है कि उस जांच का फायदा क्या है, यानी मंदिर के लोगों पे आरोप लग रहा है और मंदिर के अगर अधिकारी इसकी जांच करेंगे तो सवाल उठना लाजमी है। ऐसे में इसकी जांच उस स्तरीय जांच होनी चाहिए, एक पुख्ता ऐसी जांच होनी चाहिए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
2: जी बिल्कुल, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किशोर, आप नजर बनाए रखें, दैट वाज किशोर रावत गेटिंग अस द लेटेस्ट डिटेल ऑन द फ्रेश एलिगेशंस इन बद्रीनाथ केदारनाथ टेंपल कमिटी, एंड नाउ एन ऑर्डर हैज बीन गिवन फॉर अ प्रोब, बट विल दैट बी इनफ, शुडंट देयर बी एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। Meanwhile, the SIT probe into the alleged Ram Temple donation theft is intensifying, with investigations now tracking what sources describe as a larger conspiracy in the money trail. According to sources, police suspect 6 to 8 lakh was siphoned off from the daily donations at the Ayodhya Ram Temple. Bank records shared with the SIT reportedly show collections were around 16 to 18 lakh a day before the alleged theft, rising to 24 to 26 lakh after the scam came to light. Investigators also took accused Avinash Shukla to a yoga center where documents were examined and a fresh search was conducted. Sources say police earlier recovered a large amount of cash and a Brezza car allegedly bought with stolen temple funds. The accused also identified the orchard where the money was reportedly divided. Now, we have been tracking this investigation very, very closely, and these are the reactions that we are picking up.
5: अयोध्या में चंदा चोरी मामले में तमाम बरामदगी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये राम जन्मभूमि थाना है और इस राम जन्मभूमि थाने में खड़ी इस ब्रिजा कार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जरा इस ब्रिजा कार को देखिए, ये ब्रिजा कार जिसका नंबर है UP42AP6054। दरअसल ये ब्रिजा कार अविनाश की है, उसकी निशानदेही पर पुलिस की तरफ से बरामद की गई कार है ये, और चंदा चोरी के पैसे से ये कार खरीदी गई थी। ये कार जो है, पूछताछ में पता चला पुलिस को कि अविनाश की तरफ से बताया गया कि ये कार जो चंदे चोरी का पैसा था उससे खरीदी गई। देखिए, कार काफ़ी नई दिखाई दे रही है, कुछ समय पहले ही खरीदी गई है। तमाम तरीके के आरोपों के बीच में इस कार को पुलिस ने बरामद किया है। इस कार को इस समय चौकी में लाकर रखा गया है। तस्वीरें हम आपको कार की दिखा रहे हैं। ये देखिए, पीछे की तरफ से इसका नंबर प्लेट हटा हुआ है और पुलिस देखिए पीछे गाड़ी की स्थिति बता रही है कि काफ़ी नई ये कार है। यह कार नगर कोतवाली क्षेत्र के ही एक सड़क पर खड़ी थी और जब पूछताछ हुआ और इसके बाद जब निशानदेही की गई अविनाश की तरफ से, तो पुलिस ने रिमांड में लेकर तमाम खुलासे किए और इस कार को भी बरामद किया, जो कार अब लाकर यहां पर राम जन्मभूमि का जो थाना है वहां पर रख दी गई है। तो चंदा चोरी से जुड़ी हुई तमाम जो संपत्तियां हैं पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है, चोरी से बनाई गई संपत्तियों को आइडेंटिफाई कर रही है, जब्त कर रही है, जिसके जरिए जो चोरी से धन निकाला गया है उसकी उगाही पुलिस आगे चलकर करेगी।
6: इस वक्त मैं कौशलपुरी इलाके में उस योगा सेंटर में हूं जहां अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस आई थी, और यहां पर वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा कैश बरामद हुआ था। तो अविनाश शुक्ला को पुलिस यहां पर लेकर आई थी, और ये जो बक्से रखे हैं इनकी एक बार फिर से तलाशी हुई थी, और इन बक्सों में हालांकि कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला, कोई कैश नहीं मिला। जो कैश 20 लाख रुपये पहले मिला था और साथ में 1100 अमेरिकी डॉलर और कुछ गहने बरामद हुए थे, उसके बाद कल की तलाशी में पुलिस को यहाँ से कुछ नहीं मिला है। पुलिस ने यहाँ पर रखे जो तमाम आधार कार्ड हैं, जो कागजात हैं वो देखे, और इन बक्सों को एक बार फिर से खोला, और पूरी तलाशी के बाद पुलिस यहाँ से निकल गई। देखिए कि बक्से में किस तरह से कम्बल और कपड़े रखे हुए हैं, और इन्हीं कम्बलों के बीच में, कपड़ों के बीच में कैश को छुपा कर रखा गया था। तो पुलिस ने इन बक्सों की तलाशी ली, और ये जो बक्सा है जो हमने पहले दिखाया था, जिस पर रामराज कोच लिखा हुआ है, हालांकि इस बक्से में ताला बंद है, लेकिन ये बक्सा फिलहाल यहीं पर रखा हुआ है। इस बक्से का ताला नहीं खोला गया है कि बक्से के अंदर क्या है, तो ये बक्सा यहीं पर रखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ये देखिए कुछ दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों को पुलिस ने बड़ी बारीकी से देखा, ये तमाम जो दस्तावेज हैं, ये दस्तावेज पुलिस ने बहुत बारीकी से देखे, और पुलिस ने काफ़ी लंबी यहां पर पूछताछ की, जांच की और पुलिस उसके बाद यहां से निकल गई। तो ये सारे दस्तावेज अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक के हैं जो दोनों यहां पर रहते थे। यहां पर जो केयर टेकर उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका?
7: हमारा सुंदरलाल नाम है।
6: कैश यहीं से बरामद हुआ था 5 जून को ना?
7: हाँ, वो तो कैश बरामद हुआ, वो तो बाद में न्यूज में निकला है, तब हमको भी जानकारी हुई कि कैश है।

0: बरामद हुआ है।
1: अभी आंदोलन करने जा रहे हैं, फिर एक बार जो राम जन्मभूमि का आंदोलन है वैसे ही छेड़ा जाएगा, क्योंकि ये सारे हिंदुओं की भावना का अपमान है कि भाजपा ने दान पेटी से पैसा को चुराया है और आज सांसदों को उसी पैसे से खरीदना चाहते हैं। तो गांव में जाके हम राम रक्षा आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि राम लल्ला का जो आंदोलन है वो राम लल्ला का रक्षण भाजपा से करे, भाजपा के लुटेरों से करे।
2: को बोलना चाहिए जैसा है वैसा उन्होंने बोला है। वहां चढ़ावे में चोरी हुई तो किसको दुख नहीं हुआ। तो ऐसे सब चोर और उनके गिरोह के लोग पहचाने जाने चाहिए। चौथी बात की जो चील कौए गिद्ध 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इसमें अपने लिए मौका ढूंढकर हिंदुत्व को भी बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं।
3: The alleged embezzlement of donations at the Ram Temple in Ayodhya has now triggered a political war of words. Breaking its silence, RSS General Secretary Dattatreya Hosabole described the alleged theft as a deeply hurtful to the sentiments of Ram devotees and appealed for patience and restraint. Hosabole backed the special investigation team constituted by the Uttar Pradesh government, saying those found guilty must face strict punishment, while urging people not to allow anti-Hindu and anti-national forces to exploit the incident. The Congress, however, has hit back. State Congress Chief Ajay Rai accused the RSS of waking up too late, saying statements alone are not enough and demanding strict action against those responsible.
4: Shri Ram Lala Mandir mein rakhe huye daan patron mein jama rashi ki chori ki durbhagyapurna ghatna se samuche samaj aur Ram bhaktoon ko bhavana evam shraddha ko aghat pahuncha hai tatha is ghatna se hum sabhi aahat hain। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है।
5: इतने दिन बीत जाने के बाद अब ये कुंभकर्णी नींद से उठे हैं ये लोग। आप सोच सकते हैं कि जो आज इतना पुराना प्रकरण हो गया है, सारा चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जमीन में घोटाला सब लगातार बोल रहे हैं, संघ उसमें नहीं जागा, उसमें संघों को नहीं लगता था कि ये क्या हो रहा है। अब जब लगा गांव गांव में घर घर में चर्चा हो गई कि चढ़ावा चोर हैं ये लोग, तब ये बयान जारी कर रहे हैं, तब ये वीडियो जारी कर रहे हैं। कार्रवाई कराइए, वीडियो से बयान से नहीं होगा। जो आज बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं दत्तात्रेय हसबोले, कार्रवाई करें और उनको जेल भेजें, चाहे वो चंपत राय बंसल हों, अनिल मिश्रा हों, गोविंद गिरी हों, चाहे गोपाल राव हों, क्योंकि जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता ये कह रही है। अयोध्या वासी कह रहे हैं, मैं अभी दो दिन पहले दर्शन करने गया था, उसमें भी ये लोग व्यवधान डाल रहे थे कि दर्शन न करने दिया जाए।

0: And Prime Minister Narendra Modi is speaking and addressing audience in Rajasthan. Let's cut live to it.
1: मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है। भाइयों बहनों, शेखावटी क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है। मैं इन सभी प्रदेश के लिए राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज राजस्थान के करीब 54,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी मिला है। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनका युवा मन राजस्थान के उज्जवल भविष्य को और मजबूती देगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज राजस्थान की इस धरती से मैं देश के एक और सामर्थ्य की चर्चा करूंगा। आप भी देख रहे हैं, पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों, 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी

भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं। भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है। साथियों, जब सार्वजनिक तौर पर कुछ ताकतें अफवाह और आशंका फैलाने में व्यस्त थी, तब किस स्केल पर दिन रात काम हो रहा था, किस तरह स्थिति को संभाला जा रहा था, वो मेहनत, वो प्रयास, वो धैर्य नीतिगत स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर उठाए गए एक एक संवेदनशील कदम कभी न कभी इतिहास लिखेगा, ये सब अभूतपूर्व है। मैं एक उदाहरण देता हूं, रसोई गैस यानी एलपीजी के विषय में हम सब जानते हैं हमारी जरूरतों की करीब 60% एलपीजी अन्य देशों से आयात की जाती थी और इसमें से भी 90% एलपीजी गल्फ देशों से आ रही थी, हॉर्मुज से होकर के आ रही थी और अचानक से युद्ध के हालातों ने उस सप्लाई को लगभग बंद कर दिया। आप अंदाज लगा सकते हैं हमारे देश में कितना बड़ा हाहाकार मचने जा रहा था, लेकिन राजस्थान की इस धरती ने हमें चुनौतियों को भी चैलेंज देना सिखाया है और इसलिए हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया, औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया। जिन रिफाइनरीज ने पहले कभी एलपीजी नहीं बनाया था उन्हें भी इसके लिए कन्फिगर किया गया। साथियों, रसोई गैस की डिमांड का पूरा लोड एलपीजी पर न पड़े, सरकार ने इसका भी ध्यान रखा। पीएनजी कनेक्शन यानी पाइप से रसोई गैस के कनेक्शन बढ़ाने का अभियान चलाया गया। बहुत ही कम समय में भारत ने करीब 11 लाख से ज्यादा घरों को गैस का पीएनजी कनेक्शन से जोड़ दिया। भाइयों बहनों, हमने एक और सप्लाई को सुनिश्चित किया, दूसरी ओर घरेलू उपभोक्ताओं पर बहुत

कुछ भी नहीं पढ़ने दिया। जो हालात थे उनमें घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 2000 रुपये तक जा सकती थी। बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट यही आकलन कर रहे थे, लेकिन हमारे यहां अभी भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर 950 रुपये से भी कम में दिया जा रहा है। गरीबों को तो उज्ज्वला सिलेंडर 650 के भी भीतर पड़ रहा है। अब से दो दिन पहले सरकार ने कमर्शियल गैस की कीमतों में भी बहुत बड़ी कटौती कर दी है। ये दिखाता है कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है। साथियों, युद्ध की वजह से डीजल पेट्रोल पर आया संकट भी बहुत बड़ा था। हमारे देश में तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं हैं। जब ये संकट बढ़ा तो क्रूड ऑयल की कीमतें $70 प्रति बैरल से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। आयात के रास्ते भी बंद थे। दुनिया के कई देशों में डीजल पेट्रोल की कीमतों में 40 से 50% का इजाफा हो गया। कई देशों में तो डीजल पेट्रोल कोटे के आधार पर मिलने लगा था, लेकिन भारत में एक दिन भी ऐसे हालात नहीं आए। अफवाहें बहुत फैलाई गई, लोगों को डराया गया, भड़काया गया, राजनीति के खेल खेले गए, लेकिन जिनके इरादे गलत थे वो सफल नहीं हो पाए। दूर सुदूर इलाकों में भी छोटी मोटी अड़चनों के अलावा सप्लाई की कोई बड़ी चुनौती नहीं आई। अप्रैल से जून के बीच ही अकेले डीजल पेट्रोल में 75,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा कंपनियों को उठाना पड़ा। यानी एक नई रिफाइनरी बन जाए इतना घाटा सहना पड़ा, और इस घाटे को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकारी खजाने से उठाई गई। हमने प्रति लीटर 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी भी कम की, और बहुत ज्यादा बोझ जनता पर नहीं पड़ने दिया। साथियों, युद्ध के इसी समय में भारत की दूसरे देशों के साथ जो दोस्ती है ना, वो दोस्ती भी बहुत काम आ गई है।

गारंटी और ये मोदी की गारंटी है। इसका बहुत लाभ लघु उद्योगों को मिला, कुटीर उद्योगों को मिला, ऐसे ही अनेक फैसलों का नतीजा है कि आज हमारे छोटे बड़े उद्योग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने निरंतर निर्णय लिए, क्योंकि हमें भारत के सामर्थ्य पर भरोसा था, हमें हमारे देशवासियों की क्षमताओं पर, उनकी सूझबूझ पर हमारा 100% भरोसा था। और आज मैं 140 करोड़ देशवासियों का आभार प्रकट करता हूं, मैं देशवासियों को नमन करते हुए धन्यवाद कहता हूं, जिस तरह वो इस मुश्किल समय में देश के साथ मजबूती से खड़े रहे, जिस तरह देशवासियों ने अफवाह, डर और भ्रम फैलाने वालों का सामना किया, देश में अस्थिरता फैलाने की साजिशों को नाकाम किया, देश उसी विश्वास के भरोसे आगे बढ़ पाया है। जो लोग भारत को असफल होते देखना चाह रहे हैं, इसके लिए भविष्यवाणी भी करने लग गए थे, वो जरूर आज निराशा की गर्त में पड़े होंगे। साथियों, आज विकास परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास के साथ ही मुझे यहां एक पेड़ मां के नाम खेजड़ी का पौधा लगाने का सौभाग्य भी मिला। मैं जानता हूं कि राजस्थान में खेजड़ी का कितना महत्व है। बढ़ते रेगिस्तान को रोकने में इसकी बहुत सार्थक भूमिका रही है, इसलिए ये वृक्षारोपण हमारी कार्य संस्कृति का उदाहरण भी है। हमें प्रगति की नई ऊंचाइयों को भी छूना है और हमें पर्यावरण का संरक्षण भी करना है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ऊर्जा के दूसरे स्रोतों पर भी काम कर रही है, खासकर राजस्थान पर सूर्य देवता की कुछ ज्यादा ही कृपा है, इसलिए यहां विश्व स्तरीय सोलर पार्क बनाने का काम चल रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भी राजस्थान में 1.5 लाख से ज्यादा घरों को सोलर से जोड़ा जा चुका है। पीएम कुसुम योजना के तहत भी राजस्थान में किसानों को 65,000 से ज्यादा सोलर पंप भी दिए गए हैं। साथियों, कठिन से कठिन लगने वाले संकल्प भी सिद्ध हो जाते हैं अगर उनके पीछे की नीयत साफ हो। यही बीजेपी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर है। साथियों, राजस्थान में पानी से जुड़ी परेशानियों का समाधान इसका एक और बड़ा उदाहरण है।

0: आप सब जानते हैं कांग्रेस की सरकारों ने कभी राजस्थान के जल संकट को दूर करने के लिए कोई ठोस काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी क्षेत्रवाद और बंटवारे की सियासत नहीं करती। बीजेपी राष्ट्र प्रथम की भावना पर चलती है। हमने जब गुजरात में पानी पहुंचाने की योजनाओं पर काम किया था और राजस्थान को पानी देने की बात आई थी, मुझे बराबर यह हिंदुस्तान के हर कोने में एक राज्य दूसरे राज्य से पानी के लिए लंबे अरसे से लड़ाइयां चल रही है। राजस्थान के लोगों को भी लगता था कि पता नहीं गुजरात नर्मदा का पानी देगा कि नहीं देगा, लेकिन हमारा सौभाग्य था कि राजस्थान में भी बीजेपी सरकार, गुजरात में भी बीजेपी सरकार, उस समय मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, यहां बहन वसुंधरा जी यहां मुख्यमंत्री थी, और हम दोनों ने मिलकर बिना कोई संघर्ष, बिना कोई वाद विवाद, बिना कोई आंदोलन, बिना कोई लड़ाई गुजरात से नर्मदा का पानी राजस्थान के साथ साझा किया और राजस्थान के कई गांवों तक मां नर्मदा का पानी पहुंच रहा है। अभी भजनलाल जी बड़े भावुक होकर पानी की इस काम का वर्णन कर रहे थे। भाइयों बहनों, अब जब राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों में भाजपा सरकार है तो पहली बार आपसी सहमति से समाधान निकाले गए। अब राजस्थान और हरियाणा सरकार मिलकर शेखावटी तक पानी पहुंचाएंगे। हाल ही में दोनों राज्यों के बीच समझौते पर मोहर भी लग चुकी है। इस समझौते के तहत हथनी कुंड बैराज से पानी राजस्थान लाया जाएगा। इसके लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसका लाभ सीकर, चूरू, झुंझुनू और आसपास के पूरे शेखावटी क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। इस परियोजना पर लगभग 34,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथियों, आने वाले समय में अपर यमुना बेसिन में रेणुका, लखवाड़ और किशाऊ बांधों का निर्माण पड़ा होने पर राजस्थान को पानी का और लाभ होगा। गांवों में नल से जल पहुंचाने का काम भी तेजी से आगे बढ़ा है। राम जल सेतु परियोजना भी इसी सोच का परिणाम है। साथ ही राजस्थान में जल संरक्षण के लिए जल संचय जन भागीदारी भी बड़ी भूमिका निभा रही है। देश में इस अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए करीब करीब 25 लाख सॉक पिट्स बने हैं। राजस्थान में भी 1.25 लाख से ज्यादा सॉक पिट्स बनाए गए हैं। इससे पानी संरक्षित हो रहा है, ग्राउंड वाटर का स्तर सुधर रहा है। मैं इन प्रयासों के लिए केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों को और शेखावटी क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब देश कोई संकल्प लेता है, कोई लक्ष्य बनाता है, तो राजस्थान उसके केंद्र में होता है। आज राजस्थान में तेज गति से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है। नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज जयपुर मेट्रो फेज टू की आधारशिला और जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन, ये राजस्थान के विकास को और गति देंगे और नई उड़ान देंगे। जयपुर में फेज टू पूरा होने के बाद जयपुर का कुल मेट्रो नेटवर्क 50 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण मेट्रो नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को आसानी तो होगी, पर्यटकों के लिए सुविधा भी बढ़ेगी। साथियों, आने वाले समय में हमें विकास के और भी नए आयाम छूने हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप सब इसी तरह डबल इंजन सरकार को आशीर्वाद देते रहेंगे। हम साथ मिलकर राजस्थान के नए भविष्य का निर्माण करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर राजस्थान रिफाइनरी के लिए, अन्य विकास कार्यों के लिए देशवासियों को, राजस्थान वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, दोनों मिट्टी ऊपर करके राजस्थान की ताकत नजर आए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: All right, that was Prime Minister Narendra Modi speaking at Rajasthan. He is in fact visiting Rajasthan as well as Gujarat. Several massive projects have been in fact inaugurated by the Prime Minister, and thereafter, after inaugurating the new terminal at Jodhpur, and of course the new Udaan scheme that will benefit the common people, a new infra push by the Modi government in Rajasthan as well. There you have it, viewers, the latest visuals coming in from Balotra in Rajasthan. And in a few minutes from now, Prime Minister Narendra Modi will be in fact heading towards Gujarat for the second leg of his visit. And breaking news coming in from West Bengal, Chandrima Bhattacharya has stepped down from the post of Trinamool State President. She informed party leader Mamata Banerjee via a letter that she is relinquishing the position she had assumed on June 3rd. It's a massive blow coming in to Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee. Chandrima also requested to be relieved of her responsibilities as a signatory for the various bank accounts held by the Trinamool Congress and its affiliated organizations. Additionally, the former state minister stepped down from the role of representing the party before the election commission. So this is the latest that we are picking up. Ritik is joining us on this big story. It's a big blow coming into Mamata faction of the TMC, and we are waiting for some kind of a reaction to come up from that. Ritik, what's the latest that you're picking up on this big story?
2: That's right. It's a big blow. What we are given to understand, Chandrima Bhattacharya, very close confidant of Mamata Banerjee, and till now she was presenting the Mamata's faction of the camp, but she has suddenly decided to step down from the post of state president. Remember, on 3rd of June, she was appointed, as the state president of the party, replacing very veteran leader, Subrata Bakshi. And it has come days after Mamata Banerjee visited Subrata Bakshi's residence. And it's a very surprising move by Chandrima Bhattacharya. So far, we know that Chandrima Bhattacharya continued to be a close confidant of Mamata Banerjee. But since her son, who is also, the civic body member of Kolkata Municipal Corporation, shifted to the rebel faction, there are a lot of murmur over the stand or the political stand of Chandrima Bhattacharya. Yes, as you rightly put it out, her reaction is yet to come. But what we're learning that Chandrima Bhattacharya in a short while likely to move to visit the state assembly, where the rebel factions or the leaders like Ritopudu Bandyopadhyay and others are currently attending a very special ceremony, which is being chaired by the Lok Sabha Speaker Om Birla around 2:30. So it is expected that Chandrima Bhattacharya would express her stand before the media that time, but that's right that she has decided to step down from the post of state president, as well as she has also withdraw her name from the signatory post of the party's financial transaction. It's a big blow for Mamata Banerjee camp, definitely. Back to you.
1: All right, Ritik, getting us the latest. Keep a close watch on that big story, and we will certainly follow it very, very closely. Meanwhile, the battle for control of the Trinamool Congress has now spilled onto the streets and right to the doors of the party's Kolkata headquarters. A dramatic showdown unfolded after the rebel faction led by leader of the opposition, Ritabrata Banerjee, laid claim to the TMC office, triggering a fresh political flashpoint. The rebel camp insists it has every right to access the premises, claiming it is now the principal opposition in the assembly and alleging that the lease for the party office has expired. The Mamata Banerjee camp, however, has hit back strongly. Senior TMC leaders Kunal Ghosh and Madan Mitra have accused the rebels of trespassing into Trinamool Bhavan, saying expelled members have no right to enter the party office. They have also alleged that the police and central forces failed to act against the rebels. Meanwhile, Bengal Minister Dilip Ghosh called the row an internal matter of the TMC, but condemned the scenes at the party office. These are the political reactions we are picking up.
3: तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस में गए थे और जाके वहाँ पे हम लोग बैठे, तो इस पर कोई क्या आरोप लगा रहा है उस पर ध्यान हम लोग नहीं देंगे। हम लोगों को विधानसभा में प्रिंसिपल ऑपोजिशन का स्वीकृति मिल चुका है, उधर का जो मालिक है वो ऑलरेडी चिट्ठी दे चुका है कि जो लीज था वो ओवर हो चुका है, तब भी वो लोग जबरदस्ती, तो वो लोग बैठे हुए हैं। क्या FIR, क्या किस कारण से FIR, खुद दखल करके बैठे हुए हैं। और हम लोग जो तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है उसको हम लोग पकड़ के रखना चाहते हैं, और हम ही लोग के ऊपर बोल रहे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
4: पुलिस से रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन पुलिस उनका फॉलो अप टीम जैसा बिहेव कर रहे थे, वो लोग ताला मार के चले गए और पुलिस वो ताला को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम लोग बोला वो साइट का गेस्ट से एंट्री लेने के, पुलिस रैफ सेंट्रल फोर्स वहाँ पर खड़ा हो गया। ये तृणमूल को डैमेज करने का एक बड़ा साजिश है। पुलिस यहाँ का पुलिस स्टेशन का पुलिस के खिलाफ हमारा कोई कॉम्प्लेन नहीं है, ये बहुत ऊपर से आ रहा है। तो हम लोग इसीलिए कुछ दिन पहले हम लोग हमारा जो रेंट का एग्रीमेंट है यहाँ पर सबमिट किए थे, हम लोग रिक्वेस्ट किया ये पूरा रिकॉर्ड चेक करके पुलिस वो पूरा सिक्योरिटी ठीक ठाक करने के लिए जो जो करना है पुलिस को करना चाहिए।
5: तृणमूल कांग्रेस की वर्कर लोगों को ऊपर निर्यातन चल रहा है, बीजेपी का गुंडाई चल रहा है, बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा तृणमूल कांग्रेस कर्मी अपना घर में जा नहीं सकते हैं। उसी टाइम तृणमूल कांग्रेस की एक तो ग्रुप को बचाने के लिए 15 मिनट का अंदर सेंट्रल फोर्स आ गया है। इसी से ये साबित हो जाता है ये लोग बीजेपी का गोद में बैठकर बीजेपी का बी टीम होके काम कर रहे हैं।
6: ये टीएमसी का अंदरूनी मामला है, कौन नेता, कौन कब्जा करेगा ऑफिस, कौन विधानसभा में बैठेगा, कहाँ बैठेगा, ये तो माननीय स्पीकर विधानसभा में और बाहर कानून ठीक करेगा। लेकिन ये जो हो रही है ये नहीं होना चाहिए। जनता ने उनको मैंडेट दिया विपक्ष में बैठने के लिए, 15 साल सत्ता में रह के आदत खराब हो गया है, लड़ाई करने की इच्छा नहीं है, सुविधा में रहने का आदत है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा भूमिका होता है। हम चाहते हैं कि TMC वो भूमिका को अदा करे, सरकार को दिशा दे, साथ दे करके सही रास्ता दिखाए कि जनता को सही में सुशासन मिले। वो काम नहीं कर पाएंगे तो जनता आगे भी सोचेगा।
7: ममता बनर्जी सपोर्टर्स दे वेंट टू द ऑफिस, दे वांटेड टू ब्रेक द लॉक, बट पुलिस प्रिवेंटेड देम फ्रॉम डूइंग सो। पुलिस सेड दैट यू कांट टच द लॉक। सो दिस इज एन एफर्ट made by so-called dissident TMC MLAs in support of the BJP.
8: पार्टी अपना पार्टी ऑफिस तक तय नहीं कर सकती, हमको तो आश्चर्य है। पिछले 15 साल ये राज्य कैसे संभाला होगा? जो पार्टी अपने

0: शेफ बनने के लिए आपको बस इच्छा चाहिए अच्छा खाना बनाने की, वो मुझ पे बहुत ज़्यादा है। इतनी जगह घूमी हूँ तो मैं सिर्फ ऐसे नहीं कि घूमी, आई हैव ऑलवेज चोजन द बेस्ट फ्रेंड्स जो दे आर द बेस्ट शेफ्स, दो दे वे होम शेफ्स बेसिकली। बट मैंने सीखा हर जगह, जैसे व्हेन आई वाज इन जलंधर आई टू लर्न द करी, वहाँ पे जो कड़ी पकौड़ा अलग बनता है, पकौड़े इतने बड़े बड़े बनते हैं। देन व्हेन आई वाज इन जयपुर तो मैंने राजस्थानी फूड सीखा, तो बेसिकली गट्टे की सब्जी विच इज़ लाइक माई वेरी वेरी फेवरेट एंड करी। एंड हाँ, जयपुर राजस्थानी कड़ी इज़ अलग, राजस्थानी कड़ी ना थोड़ी माइल्डर होती है, लाइक इट्स लाइटर साइड, तो आई डिडंट लाइक द राजस्थानी कड़ी, बहुत मुझे अच्छा लगा था। एंड माई फ्रेंड ना वो ना ऐसे छोटे छोटे गोल गोल पकौड़े बनाती थी, ना प्याज के ना कुछ, बट वो इतना, और शी इज़ टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ घी इन द करी, तो वो इतना अच्छा लगता था। तो वो छोटी छोटी चीज़ें लाइक दाल बाटी चूरमा, तो वेर एवर आई ट्रैवल्ड आई लर्न्ड द फूड कल्चर, तो दिस इज़ जस्ट अ लव फॉर द क्विजीन। मेरा नाम बिल्के से है, जब मुझे बिल्ली बुलाते थे क्योंकि मैं फ़िश खाती रहती थी पूरे टाइम। सो आज हम चार चीज़ें बना रहे हैं, बेसिकली इट्स सुफियाना समोसा, सुफियाना केसर समोसा। तो उसकी जो फिलिंग है इट इज़ ऑफ पनीर क्रम्बल, मावा हो गया, थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा हल्का सा ब्राउन शुगर एंड थोड़ा सा कार्डमम पाउडर एंड थोड़ा सा रोज़ वाटर, बस एकदम सिंपल फ्लेवर्स। अब उसको बस हम घी में थोड़ा सा अच्छे से दो तीन मिनट भून लेंगे एंड थोड़ा नट्स वगैरह डालेंगे जैसे पिस्ता हो गया, काजू हो गया, एंड देन उसको फिल ऐसे छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे या स्पून से भी फिल कर सकते हैं। एंड पैटी के लिए तो मुझे कुछ मेहनत ही नहीं करनी क्योंकि मेरे पास स्वीट्स के वो रेडीमेड समोसा पैटीज है, तो बस उसमें बस मैं रोल करूँगी, फिल करूँगी और उनको बंद करूँगी और फ्राई करूँगी गर्मा गर्म। एंड रबड़ी मैंने बनाई है बहुत प्यारी सी केसर डाल के, तो बस रबड़ी के ऊपर उसको डाल देंगे और हल्का सा हम उस पर गुड़ आई विल ड्रिजल अ लिटिल बिट ऑफ दैट, तो बहुत दैट विल बिकम अ वेरी नाइस डिश। एंड व्हाट आई बिलीव इज़ दैट जो सिंपल रेसिपीज़ होती है ना, मतलब जितने कम इन्ग्रीडियंट्स होते हैं, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग आउट द यू नो एक्स्ट्रा वैगन टेस्ट आउट ऑफ इट।
1: Number one ingredient, love.
2: I remember making gajar halwa when I was literally 4 years old at my grandmom's place where I grew up.
1: Guests, family, relatives, business people, everybody used to, it used to be 100 people having a meal. So you see the traditions that I have grown up with.
0: It gives me happiness. Achha lagta hai mujhe. Like suppose if you do something for me, if you are a friend or a stranger, I will cook something really nice which you will love and I'll give it to you as a gift. Matlab, I loved cooking. Like cooking was everything for me from childhood. Like 6-7 years se hi mujhe lagta tha main kuch banau and jaake chup chup ke kuch kuch I used to make. And my mother though, like she was really afraid of the gas. Wo bahut darti hai, meri mummy bahut darpok hai. Matlab she is always afraid ke main kuch kar lungi, haath jala lungi and all that.
3: अम्मी का चूल्हा शुरुआत 2018 में हुई। सर कुछ प्लान नहीं था स्टार्ट करना बोल के, बस ऐसे ही कि अम्मी के जो रेसिपीज है तो उसको हम थोड़ा जिंदा रखना चाह रहे थे बस। वट एवर शी यूज टू मेक, वो खुशबू तो बहुत अच्छी आती थी एंड द डिस्टिंग आई मीन आई यूज टू लव वॉट शी यूज टू मेक इज़ वो गोश्त की कड़ी बहुत अच्छी बनाते थे, तो उससे पूरा घर महक जाता था गोश्त की कड़ी से।
0: खुशबू से ही तो सब रिश्ता है, बिकॉज इट्स अबाउट द अरोमा ऑफ द फ्लेवर्स यू आर पुटिंग इन द डिश, तो दिस इन्ग्रीडियंट्स ब्रिंग दैट अरोमा एंड दैट अरोमा इज़ एवरीथिंग।
1: You know, I initially started with cuisine, not baklava. I started with Thai food, with Lebanese Arabic food. And that was also very well appreciated because it's very authentic and nobody was doing baklava at that time over here. So I started with that. I sent it off to some relatives, some friends. And the unanimous result was, we have never had something like this. in our life. That's something, that's a compliment. So I figured, I said, you know, let me do more on these lines. And yeah, the baklava just took off.
0: To go in the market and buy the things, definitely that is a different joy. You know, that colors, the different colors of nature. So yeah, of course, vegetables and fruits, so आपको खुद से ही पिक करने चाहिए, बिकॉज वो पता चलता है ना कौन सा पक्का है, कौन सा अच्छी क्वालिटी का है. देयर आर मेनी थिंग्स टू बी ऑब्जर्व्ड.
3: बहुत खुशी मिलती हो जब, स्पेशली जो विंटर्स में जो तरकारी आती है, वो मटर हो, गाजर हो, मार्केट में तो वो तरकारी देख के ही इतना दिल खुश हो जाता. जो हरी हरी तरकारी, ताज़ी ताज़ी तरकारी देख के बहुत खुशी होती.
0: सिर्फ आप रेसिपी नहीं फॉलो कर सकते, यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द पीपल दैट व्हाट दे लाइक.
1: सो वी आर मेकिंग बकलावा नाउ. स्टार्ट विद बटर एंड देन द फिलो, टू एट अ टाइम. एवरी टू शीट्स वी हैव टू बटर. सो माय बकलावा इज प्योर वेजिटेरियन एंड सूटेबल फॉर जैन्स आल्सो.
0: व्हेनेवर वी आर कुकिंग, यू हैव टू कुक फ्रॉम योर सोल, बिकॉज राइट क्वांटिटी एंड राइट इंटेंशन मेक्स इट ब्यूटिफुल. जैसे कोई एक्टर होता है, वो अपने रोल में घुस जाता है, एज अ शेफ जो मेरा क्विजीन होता है, मैं उसमें घुस जाती हूँ. तो मैं एकदम फॉलो करती हूँ, नॉट ओनली द क्विजीन, ऑल्सो हाउ द पीपल विल लाइक इट. दिस इज वॉट यू शुड डू वेन एवर यू स्टार्ट कुकिंग. लाइक आई एम अ बंगाली मुस्लिम, तो फर्स्ट वी से बिस्मिल्ला एंड वी स्टार्ट कुकिंग. तुम अपनी सोच किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, लेकिन तुम किसी को खाना खिला के उसके अंदर की थिंकिंग को चेंज कर सकते. वो मेरी दादी ने मेरे को सिखाया था. तो मैं कभी भी खाना बनाती हूँ, केक बना, कुछ भी बनाती हूँ, तो मैं मंत्र चैंटिंग हुआ, भगवान का नाम हुआ, कुछ नहीं आया तो अच्छा अच्छा सोचो, खुश होके बनाओ, तो वो चीज़ अलग ही उसका फ्लेवर होता है. से बीइंग अ वूमन, हमको कभी भी पैसा कमाने के लिए एंकरेज किया जाता नहीं है. जस्ट बिकॉज सबको चाहिए कि हमारी नीड पहले रखी जाए, लेडीज़ लोग की बाद में. वो तो है ही हमारे लिए, उनका तो ये फ़र्ज है, उसको तो ये चीज़ करना है सबके लिए. वो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है ही नहीं. आज भी हम लोग काम करने जाते हैं, हम लोग सारा घर का काम करके जाते हैं, बच्चे की जिम्मेदारी हम लोग निभाते हैं, कोई कुछ करने नहीं आता है. एंड देन इफ़ यू आर गोइंग टू डू द सेम वर्क व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, ना यू कैम टू नो, आप नहीं बढ़ पाओगे इतना. हम फिर भी आगे बढ़ते हैं. लेडी जो करती है वो कोई नहीं कर सकता है, आई एम टेलिंग यू. अ होम शेफ इज नॉट ओनली अ होम शेफ, शी इज लाइक अ साइंटिस्ट, शी इज थिंकिंग अबाउट योर हेल्थ.

0: भी चाहिए।
1: At Ammi Ka Chulha, we wanted to hold that philosophy with the fresh ingredients and the meals and no shortcuts.
0: And जो भी है सब मिलके करते हैं, इफ्तार बॉक्सेस का भी सब पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती है, फ्रॉम द कुकिंग टू द पैकिंग टू द डिस्पैच करना और फिर कोऑर्डिनेट करना कस्टमर्स तक पहुंचा नहीं पहुंचा।
2: मेरे परदादा ने 100 साल पहले से शुरू किया था धंधा। सूरत में मटन समोसा पहले वही लेके आए थे।
3: ये चीज़ ऐसी बनाई कि अपने को ये आज चले और 100 साल भी हो जाए तो ये चीज़ ऐसी बननी चाहिए कि जो अभी बन रही है।
2: और मैं चिकन समोसा लेके आया। हमारे पास अब दाल समोसा, मटन समोसा और चिकन समोसा, तीन चीज़ें हमारे पास हैं।

0: She will go there and she will pick me the saris and she will send to here. I am selling here and giving support to her.
1: मैंने अराउंड 68 लेडीज को बेकिंग सिखाया. उनको सिखाया कि आप धीरे धीरे आपका जो भी है आप बनाओ. नाउ दे आर अर्निंग. और मैंने ये चैरिटी मेरे पापा के नाम से स्टार्ट की. तो मेरा वो चीज़ है कि भाई हम लोग अपने सराउंडिंग को जो देते, अपने बच्चे को जो देते हैं, वो चीज़ हमारे कंफर्ट जोन से हम लोग बाहर निकलेंगे तो ही आएगा.
2: Of course, food brings people together, unlike anything else. Because, you know, when it all laid out on the table, there's camaraderie, there's people sitting, chatting, how was your day, what's going on, what should we do tomorrow? And of course, discussing what's to be made. That is half the joy.
3: Then when I started Ammika Chula, to meko ek it gave me an identity also. Koi bolte thi ki aap khupo ke jaisa paka rahe hain, to wo ek khushi milti thi. तो मेरा एक है ख्वाहिश है कि अम्मी के जो भी रेसिपीज है एक टू नोट इट डाउन इन अ बुक एंड शेयर इट विद माय फैमिली.
4: यू आस्क मी व्हाट यू फील दैट्स व्हेन आई फील दिस लंच बॉक्सेस एंड आई मिस माय मॉम.
0: इफ वी कैन स्माइल अ पर्सन, इफ यू कैन गिव स्माइल अ पर्सन, दैट इज द मेन हैप्पीनेस. दैट्स अनलिमिटेड a wealthy, worthy one thing we get in our life. So

0: And moving on, now the SIT probe into the alleged Ram Temple donation theft is intensifying, with investigators tracking what sources describe as a larger money trail. Investigators also took accused Avinash Shukla to a yoga center where documents were examined and a fresh search was conducted. Meanwhile, the row has of course taken a political turn, with Akhilesh Yadav sharing an AI-generated video of Lord Ram leaving Ayodhya asking, have they gone into exile again? Now, in an apparent swipe at the alleged donation theft that was carried. Keeping the politics aside, let's take a look at some ground reports that we have from Ayodhya, followed by some reactions coming in.
1: इस वक्त मैं कौशलपुरी इलाके में उस योगा सेंटर में हूं जहां अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस आई थी, और यहां पर वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा कैश बरामद हुआ था। तो अविनाश शुक्ला को पुलिस यहां पर लेकर आई थी, और ये जो बक्से रखे हैं इनकी एक बार फिर से तलाशी हुई थी, और इन बक्सों में हालांकि कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला, कोई कैश नहीं मिला। जो कैश 20 लाख रुपए पहले मिला था और साथ में 1100 अमेरिकी डॉलर और कुछ गहने बरामद हुए थे, उसके बाद कल की तलाशी में पुलिस को यहां से कुछ नहीं मिला है। पुलिस ने यहां पर रखे जो तमाम आधार कार्ड हैं, जो कागजात हैं, वो देखे और इन बक्सों को एक बार फिर से खोला, और पूरी तलाशी के बाद पुलिस यहाँ से निकल गई। देखिए कि बक्से में किस तरह से कम्बल और कपड़े रखे हुए हैं, और इन्हीं कम्बलों के बीच में, कपड़ों के बीच में कैश को छुपाकर रखा गया था। तो पुलिस ने इन बक्सों की तलाशी ली, और ये जो बक्सा है जो हमने पहले दिखाया था, जिस पर रामराज कोच लिखा हुआ है, हालांकि इस बक्से में ताला बंद है, लेकिन ये बक्सा फ़िलहाल यहीं पर रखा हुआ है। इस बक्से का ताला नहीं खोला गया है कि बक्से के अंदर क्या है, तो ये बक्सा यहीं पर रखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों को पुलिस ने बड़ी बारीकी से देखा। ये तमाम जो दस्तावेज हैं, ये दस्तावेज पुलिस ने बहुत बारीकी से देखे, और पुलिस ने काफ़ी लंबी यहाँ पर पूछताछ की, जांच की, और पुलिस उसके बाद यहाँ से निकल गई। तो ये सारे दस्तावेज अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक के हैं, जो दोनों यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर जो केयर टेकर, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका?
2: हमारा सुंदरलाल नाम है।
1: कैश यहीं से बरामद हुआ था 5 जून को ना?
2: हाँ, वो तो कैश बरामद हुआ, वो तो बाद में न्यूज में निकला है, तब हमको भी जानकारी हुई कि कैश यहाँ से बरामद हुआ है।
3: अयोध्या में चंदा चोरी मामले में तमाम बरामदगी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये राम जन्मभूमि थाना है, और इस राम जन्मभूमि थाने में खड़ी इस ब्रिजा कार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जरा इस ब्रिजा कार को देखिए, ये ब्रिजा कार जिसका नंबर है UP42AP6054। दरअसल ये ब्रिजा कार अविनाश की है, उसकी निशानदेही पर पुलिस की तरफ से बरामद की गई कार है ये, और चंदा चोरी के पैसे से ये कार खरीदी गई थी। ये कार जो है, पूछताछ में पता चला पुलिस को कि अविनाश की तरफ से बताया गया कि ये कार जो चंदे चोरी का पैसा था उससे खरीदी गई। देखिए, कार काफ़ी नई दिखाई दे रही है, कुछ समय पहले ही खरीदी गई है। तमाम तरीके के आरोपों के बीच में इस कार को पुलिस ने बरामद किया है। इस कार को इस समय चौकी में लाकर रखा गया है। तस्वीरें हम आपको कार की दिखा रहे हैं। ये देखिए, पीछे की तरफ से इसका नंबर प्लेट हटा हुआ है, और पुलिस देखिए पीछे गाड़ी की स्थिति बता रही है कि काफ़ी नई ये कार है। यह कार नगर कोतवाली क्षेत्र के ही एक सड़क पर खड़ी थी, और जब पूछताछ हुआ और इसके बाद जब निशानदेही की गई अविनाश की तरफ से, तो पुलिस ने रिमांड में लेकर तमाम खुलासे किए और इस कार को भी बरामद किया, जो कार अब लाकर यहाँ पर राम जन्मभूमि का जो थाना है वहाँ पर रख दी गई है। तो चंदा चोरी से जुड़ी हुई तमाम जो संपत्तियाँ हैं, पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है, चोरी से बनाई गई संपत्तियों को आइडेंटिफाई कर रही है, जब्त कर रही है, जिसके जरिए जो चोरी से धन निकाला गया है उसकी उगाही पुलिस आगे चलकर करेगी।
4: कि हम ये कहेंगे कि करप्शन इज करप्शन, चाहे वो कहीं भी हो, अपराध अपराध है। तो जब अपराध हुआ है या अपराध रिपोर्ट किया गया है, आरोप लगाए गए हैं, तो उसकी जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए, और लगना भी चाहिए कि वाकई निष्पक्ष जांच हो रही है। और ये बात सही है कि कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन ये बात भी सही है कि कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो हम ये समझते हैं कि कानून, जब आप एक अपराध को आप धर्म की निगाह से न देखें, यही अपराध अगर किसी दूसरे धर्म स्थल पर हुआ होता तो आपका रवैया क्या होता, ये सवाल लोग उठा रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ जनता देख रही है, और जनता जानती है कि इस मामले में

0: निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। अपराधी चाहे कितना ही बड़ा हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का समर्थक हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
1: आजकल कुछ नकली राम भक्त अपने को सनातनी कह रहे हैं, जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि गुंबज पर तो चढ़ गए, उतर नहीं पाएंगे, गोलियों से भूंज दिया गया, चाहे मियां मुलायम क्यों न कहे, आज वो सबसे बड़े सनातनी बन रहे हैं। जो घटना घटी है चोरी का, वो हिंदू समाज आहत है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और वहां की सरकार तत्पर है और दूध का दूध पानी का पानी करके रखेंगे।
2: देश में गुस्सा है इस तरह की घटना को लेकर के, जो भगवान राम के भक्त लोग हैं उनको ठेस पहुंची है, इसमें तो दम है उस बात में। सरकार की तरफ से जो ट्रस्ट ने डिमांड रखी तो SIT गठित हो गई। प्रथम दृष्टया SIT ने 8 लोगों के खिलाफ जांच में दोषी पाया, 8 लोगों को जेल भेज दिया।
3: अभी आंदोलन करने जा रहे हैं, फिर एक बार जो राम जन्मभूमि का आंदोलन है वैसे ही छेड़ा जाएगा, क्योंकि ये सारे हिंदुओं की भावना का अपमान है कि भाजपा ने दान पेटी से पैसा को चुराया है और आज सांसदों को उसी पैसे से खरीदना चाहते हैं। तो गांव में जाके हम राम रक्षा आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि राम लल्ला का जो आंदोलन है वो राम लल्ला का रक्षण भाजपा से करे, भाजपा के लुटेरों से करे।
4: को बोलना चाहिए, जैसा है वैसा उन्होंने बोला है। वहां चढ़ावे में चोरी हुई तो किसको दुख नहीं हुआ। तो ऐसे सब चोर और उनके गिरोह के लोग पहचाने जाने चाहिए। चौथी बात की जो चील कौए गिद्ध 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इसमें अपने लिए मौका ढूंढकर हिंदुत्व को भी बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं।
5: Well, now the alleged embezzlement of donations at the Ram Temple in Ayodhya has, of course, triggered a political war of words. Breaking its silence was the RSS General Secretary, who described the alleged theft as deeply hurtful to the sentiments of Ram devotees, and he's also appealed for patience and restraint as well. RSS has also backed the special investigation team that is being constituted by the Uttar Pradesh government, saying that those found guilty must face strict punishment, while he also urged people not to allow anti-Hindu and anti-national forces to exploit the incident. The Congress, however, has hit back. State Congress Chief Ajay Rai has accused the RSS of working up too late, saying statements alone are not enough and demanding strict action against those responsible.
6: Shri Ram Lala Mandir mein rakhe huye daan patron mein jama rashi ki chori ki durbhagyapurna ghatna se samuche samaj aur Ram bhakton ko bhavana evam shraddha ko aghat pahuncha hai tatha इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है।
5: And with that, it's time for us to slip into a short break. Don't go anywhere. News and updates continue here on NTD.

0: Good evening, hello and welcome. You're watching NETV 24/7. I'm Anusha Sonia. Quick check at the headlines first. Highlighting government's role amid West Asia war, Prime Minister Modi says India beat the biggest energy crisis as government absorbed 75,000 crore rupees fuel shock. Another big blow to Mamata Banerjee. Chandrima Bhattacharya resigns as TMC Bengal president, says I withdraw from all party posts. Mamata loyalists hit back. The monsoon session of the parliament will be held from the 20th of July to the 13th of August. The opposition is expected to bring up the issue of privilege proceedings against Defence Minister Rajnath Singh. After Ayodhya, Badrinath Dham hit with a donation theft claim. Badrinath Kedarnath Temple Committee orders probe into donation misuse claims. Temple Committee says strict action will be taken if wrongdoing is found. Centre issues notice to Telegram over widespread piracy claims. INB Ministry directs Telegram to take immediate measures against pirated films and OTT content. Submit an ATR action taken report in 15 days. Move aims to protect India's creator economy, film industry, broadcasters and OTT platforms. And the battle for control of the Trinamool Congress has now spilled onto the streets and right to the doors of the party's Kolkata headquarters. A dramatic showdown unfolded after rebel faction led by leader of opposition Ritabrata Banerjee laid claim to the TMC office, triggering a fresh political flashpoint. The rebel camp insists it has every right to access the premises, claiming it is now the principal opposition in the assembly, alleging that the lease of the party office has expired. Mamata Banerjee camp, however, hit back strongly. Senior TMC leaders Kunal Ghosh, Madan Mitra have accused the rebels of trespassing in the Trinamool Bhavan, saying expelled members have no right to enter the party office. They've also alleged that police and central forces failed to act against the rebels. Dilip Ghosh, the Bengal minister, called the row an internal matter of the TMC but condemned the scenes at the party office. Reactions.
1: इस वक्त हम लोग खड़े हैं कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन इलाके में और मेरे पीछे है तृणमूल भवन, जो पिछले रात को तृणमूल भवन में देखा गया था कि जो रिवेल विधायक थे ऋतव्रत बैनर्जी, जो नए तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं ऋतव्रत बैनर्जी, संदीपन शाह और जावेद खान, मूल पांच जो विधायक थे वो कल रात को तृणमूल भवन में आए और अंदर घुसने के बाद जो ममता बनर्जी की फ़ोटो थी वो हटा दिया। हटा देने के बाद वो लोग कह रहे थे कि वो लोग तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं और वो लोग अपने पार्टी ऑफिस में आए हैं और पार्टी ऑफिस में आने के बाद वहाँ पर जो कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाएगी और वहाँ पर जो कई समस्याएं लेके आएंगे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन लोगों की बातें सुनी जाएंगी। इसके बाद ही तृणमूल कांग्रेस के जो नए विधायक हैं वो पहुँचे और पहुँचने के बाद अंदर से ममता बनर्जी की फ़ोटो हटा दी गई। हटा देने के बाद उन्होंने बाहर आया। आने के बाद फिर जो एक बैनर है वो बैनर लगाया गया, नया बैनर, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जो चेयरमैन है वो अरूप राय है, वो बैनर सीधा सीधी गेट के बाहर लगाया गया। वो वीडियो मैं देखा चाहूँगा कि वो बैनर लगाने के बाद ही जो नए तृणमूल कांग्रेस के नेता थे और विधायक थे वो इस तृणमूल भवन से बाहर चले गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो पुराने तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं कुणाल घोष, जो कि ममता बनर्जी के गुट के हैं, वो कुणाल घोष आए यहाँ पर। आने के बाद वो लोग अंदर नहीं घुस पा रहे थे क्योंकि ऋतव्रत बनर्जी वो जो मेन डोर है, जो मेन डोर पर ताला लगा दिए। उसके बाद जो पुराने जो विधायक अर्थात ममता बनर्जी के जो विधायक थे वो आए और एक और ताला लगा दिया, अर्थात बोला जा सकता है कि जो दो ताले लगाए गए, एक ऋतव्रत नए तृणमूल कांग्रेस के विधायक लगाए हैं और एक पुराने तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष ने लगाया है, दो ताला। उसके बाद एक और बैनर लगाया गया तृणमूल भवन सामने, तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी, ऐसा पोस्टर दिया है। ये पुराने जो तृणमूल कांग्रेस के नेता लोग हैं वो आके लगा।
2: तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस में गए थे और जाके वहाँ पे हम लोग बैठे, तो इस पर कोई क्या आरोप लगा रहा है उस पर ध्यान हम लोग नहीं देंगे। हम लोगों को विधानसभा में प्रिंसिपल ऑपोजिशन का स्वीकृति मिल चुका है, उधर का जो मालिक है वो ऑलरेडी चिट्ठी दे चुका है कि जो लीज था वो ओवर हो चुका है, तब भी वो लोग जबरदस्ती, तो वो लोग बैठे हुए हैं। क्या एफआईआर, क्या किस कारण से एफआईआर, खुद दखल करके बैठे हुए हैं। और हम लोग जो तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है उसको हम लोग पकड़ के रखना चाहते हैं और हम ही लोग के ऊपर बोल रहे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
3: तृणमूल कांग्रेस की वर्कर लोगों को ऊपर निर्जातन चल रहा है, बीजेपी का गुंडाई चल रहा है, बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा तृणमूल कांग्रेस कर्मी अपना घर में जा नहीं सकते हैं। उसी टाइम तृणमूल कांग्रेस की एक तो ग्रुप को बचाने के लिए 15 मिनट का अंदर सेंट्रल फोर्स आ गया है। इसी से ये साबित हो जाता है ये लोग बीजेपी का गोद में बैठकर बीजेपी का बी टीम होके काम कर रहे हैं।
4: ये टीएमसी का अंदरूनी मामला है, कौन नेता, कौन कब्जा करेगा ऑफिस, कौन विधानसभा में बैठेगा, कहाँ बैठेगा, ये तो माननीय स्पीकर विधानसभा में और बाहर कानून ठीक करेगा। लेकिन ये जो हो रही है ये नहीं होना चाहिए। जनता ने उनको मैंडेट दिया विपक्ष में बैठने के लिए, 15 साल सत्ता में रह के आदत खराब हो गया है, लड़ाई करने की इच्छा नहीं है, सुविधा में रहने का आदत है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा भूमिका होता है। हम चाहते हैं कि टीएमसी वो भूमिका का वादा करे, सरकार को दिशा दे, साथ दे करके सही रास्ता दिखाए कि जनता को सही में सुशासन मिले। वो काम नहीं कर पाएंगे तो जनता आगे भी सोचेगा।
5: ममता बनर्जी सपोर्टर्स दे वेंट टू द ऑफिस, दे वांटेड टू ब्रेक द लॉक बट पुलिस प्रिवेंटेड देम फ्रॉम डूइंग सो। Police said that you can't touch their lock. So this is an effort made by so-called dissident TMC MLAs in support of the BJP.
6: वो पार्टी अपना पार्टी ऑफिस तक तय नहीं कर सकती, हमको तो आश्चर्य है। पिछले 15 साल ये राज्य कैसे संभाला होगा? जो पार्टी अपने विधायक को साथ रख नहीं सकती, सांसद को साथ नहीं रख सकती, वो संभाल रहे थे पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल की जनताओं को। तो इससे समझ आता है ये पार्टी सिर्फ तृणमूल कंपनी है, तृणमूल पार्टी नहीं है। तो कंपनी में अभी दोनों मालिकों के बीच खींचातानी हो रही है, वो रस्सी का लड़ाई देखें आप कि एक तरफ से ये खींचा, एक तरफ से ये खींचा, तो जिसमें जोर ज़्यादा होगा उसी को मिलेगा।
0: And another setback for the embattled Trinamool Congress, Chief Mamata Banerjee, party's West Bengal president Chandrama Bhattacharya and a long-time aide of TMC chief has resigned from all party positions. In a letter addressed to Mamata Banerjee, Chandrama relinquished responsibilities from all posts she held in the party. She told the reporters that her decision came after Mamata Banerjee accused her for the takeover of the party headquarters by the rebel faction. Soon after the resignation, Chandrama met the rebel faction leader, Ritaprata Banerjee, at the Bengal Assembly, stirred a speculation of her

लोहगढ़ आने का, लेकिन मैं सुबह निकला, मैं कार्ला लेनी जाके लोहगढ़ में आ गया। तो ऊपर जैसे ही मैं गया तो मेरे मन में था कि वो स्पॉट देखूं जहाँ से वो केतन भाई को

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: We are over, जिमी।
3: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स।

0: infrastructure, and even block roads. These incidents raise urgent questions, not just in Maharashtra, but across the entire country. Just last August, the national capital witnessed something eerily similar. During a period of heavy downpour, Sudhir Kumar, a 50-year-old man, was crushed to death after an old neem tree abruptly uprooted in South Delhi's Kalkaji. With monsoon sweeping across India once again, a looming question remains. How long will citizens pay the price for civic negligence? NDTV took to the streets of Delhi to ask citizens if they feel safe and whether they trust the authorities to maintain the trees surrounding them.
1: सरकार को समय समय पर पेड़ की छटाई टहनियाँ वगैरह काटनी चाहिए और समय समय पर उनकी देखभाल करनी चाहिए
2: बहुत पेड़ गिरते हैं मैडम उस पर कोई एमसीडी कुछ ध्यान ही नहीं देती है इधर आगे भी बहुत पेड़ गिर जाते हैं कमज़ोर पे होते हैं गिनने गिनने छोड़ देती है एमसीडी से ऐसे गिर जाते हैं बरसात में
3: जो गिरने वाले हैं उनको पहले से ही हटा देना चाहिए क्योंकि बहुत से बुजुर्ग जाते हैं बहुत महिलाएँ जाते हैं तो गाड़ियों के ऊपर गिर जाते हैं बच्चों के ऊपर गिर जाते हैं तो ये तो सही नहीं है ना
4: मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट शुड ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस लाइक दे हैव टू रिपोर्ट व्हाट काइंड ऑफ वेदर देयर शुड बी व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन बाय द पीपल बाय द लोकल गवर्नमेंट्स बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ताकि ये फैटिलिटी कम हो और एक्सीडेंट्स भी कम हो
5: टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स प्रायर सो इनिशिएटिव्स आई वुड से इज ऑलवेज बेटर देन
0: NDTV questioned the Municipal Corporation of Delhi regarding their preparedness and preventive measures to stop these fatal collapses. Here's what the Delhi Mayor Pravesh Wahi had to say.
6: फिर भी देखिए प्राकृतिक आपदा कहीं भी आ सकती है इसके लिए तो कोई दावा नहीं किया जा सकता लेकिन इलावा इसके पूरी कोशिश की जा रही है कि जो कमजोर पेड़ है उनको चिन्हित करके उनको जल्द से जल्द जो है वो हटा दिया सीडी की जो नालों की ड्रेन्स की जो सफाई है वो अपने टारगेट को पूरा कर चुकी है और उसके अलावा अब सघन जो है वो सिल्ट सघन अभियान चल रहा है जिसमें जो क्षेत्र बचे हैं उनमें सिल्ट निकाली जा रही है
0: बट स्ट्रक्चरल नेग्लिजेंस गोज डीपर देन जस्ट अ लैक ऑफ ट्रिमिंग एनवायरमेंटलिस्ट पॉइंट दैट द रैम्पेंट कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रोड्स एंड पेवमेंट्स सफोकेट्स ट्री रूट्स leaving them weak, unstable, and prone to collapsing under heavy wind and rain.
7: Now what happens is when the tree gets concretized, there is no room for water to seep in, there is obviously no oxygen that's going in, and the roots start getting weak, and that is how. So even when it appears to be all right, a bit healthy and nothing really alarming, but it'll obviously fall. This is the time to introspect and understand that firstly, these are laws. These are not advisories that you have to think that tree needs that space around it 1 by 1 meter, etc. Tree health is also a conversation that is totally missing. Everything is about tree plantation. If you see, whether it's the leaders, the politicians, or the CSRs, corporates. There's a lot of money involved. Everyone tends to follow that. But protecting the existing trees is even much more important.
0: Well, monsoon has just reached the national capital and year after year we see trees falling in the very capital. It remains to be seen what the civic authorities do, but the one hope that all the citizens and the civic authorities have is for these trees to not claim the lives of anyone, nor damage infrastructure or even power grids. Remains to be seen how the capital takes care of its trees, but this is Reet Kaur Sahani reporting from New Delhi for NDTV.
8: Well, much more about the monsoon mayhem and what's happening in Mumbai up on our website, ndtv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you for watching.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा,

0: आप अपना देख लो।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा प्योर मसाला।
4: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
5: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
4: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

मेरा जन्म यहीं हुआ है, मेरे गांव, मेरे गांव का नाम है दुन्ने के। ये पंजाब में एक ज़िला है मोगा, वहाँ पे छोटा सा गांव है दुन्ने के। तो मैंने अपनी स्कूलिंग की है यहीं से, अपने गांव से। 10th तक पढ़ाई की है यहाँ पे, फिर मैंने 12th की है लाइक मोगा में जाके, लाइक कहीं आया। उसके बाद कॉलेज, मेरा कॉलेज चल रहा है। मम्मी है, पापा है, मेरे दो भाई है छोटे, एक बहन है बड़ी, तो एक मैं हूँ। पापा मेरे लेबर करते हैं, मम्मा भी करते हैं किसी के घर में काम। मैं इसी गली में बड़ी हुई हूँ, यहीं पे खेलती थी मैं पूरा टाइम। डायरी दे वरिक्या उत्ते।

0: बचपन से मतलब इसको शौक ही था गाने का जी। चौथी साल में वो गाना थोड़ा सा लग गया था गाने के लिए।
1: मेरा स्कूल फ्रेंड था तो वो उसने लाइक एक पेज बनाया था तो मैंने उसको देखा। तो मेरा एक कॉलेज फ्रेंड था जो बहुत अच्छा सिंगर भी है, राइटर भी है, ही इज़ वेरी गुड। तो मेरे को लगा कि यार इसको भी करना चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू जा वहाँ पे, तू कर, तो हम उसके साथ चले, क्योंकि मैं जानती थी उसको, वो नहीं जानता था। तो हम गए वहाँ पे, उसने किया। तो जो मेरा स्कूल फ्रेंड था जिसका वो पेज था, उसने बोला कि यहाँ इस पर कोई लड़की भी करती है ना आप में से, तो इन्होंने बोला कि ये कर लेती थोड़ा बहुत। तो पहले तो मैं नर्वस थी ऑब्वियसली, लेकिन फिर मैंने गा दिया तो आई डोंट नो हाउ, पर वो रील काफ़ी वायरल हुई। वो एक मैंने बनाया था एक पंजाबी और थोड़ा इंग्लिश को मिक्स करके। You're the one I'll let it never be alone.

0: जब रील वायरल हुआ तो है ना, तो मैंने तो इतना ध्यान नहीं दिया था, तो क्योंकि मेरे को तो ऐसे था कि भाई कुछ भी हो सकता है, लोगों को पता नहीं क्या पसंद आता है क्या नहीं आता है, आपको कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने तो अपना फ़ोन देखा भी नहीं था, ऐसे डाल दिए थे लाइक नॉर्मल। तो मैंने जब सुबह उठ के देखा तो बैक मेरे को कॉल कर रहे हैं, भाई देख तेरी रील वायरल हुई। मैं क्या अच्छा, तो उसके बाद DMs आए है ना, काफ़ी आर्टिस्ट ने लाइक लोगों ने अप्रोच किया। बेसिकली मैंने सोचा ही था कि मेरे को तो जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और कुछ तो मेरे से होगा नहीं, टीचिंग ही कर लूंगी मैं, यही सोचा था।
1: की पता नहीं तेरे च देखे यार,
0: रैपिंग और सिंगिंग की शुरुआत बस दोस्तों को देख के साथ में करते थे, तो सोचा मेरे को भी ट्राई करना चाहिए।
1: और जितना तेरे च सजना कोई है मेतानी फील ले गया मारी सहन तो तू ऐसी अपना।
0: जो कॉलेजेस में होते हैं यूथ फेस्टिवल्स, उसने मेरे को बहुत हेल्प किया लाइक उस वहीं से। मेनली जब यूथ फेस्टिवल हुआ वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया तो अच्छा गया, मैं जीत गई थी तो हाँ, तो उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ, लाइक मेरे टीचर्स ने भी बोला कि यू शुड ट्राई है ना, तुम अच्छा गाती हो। तो उसके पहले मैं लिखती नहीं थी, मैं गाती ही थी। वे जा तेरे वस दी ना गल, मेरे रूट छड़ दे ते किसे होर दारा मल, सिद्धी तीर वर्गियां पुठी जरा ना मैं गल, हाथ अज भी ना आवा नहीं होना तेरे कल।

0: तो आज हम लंच में खाएंगे आलू के पराठे।
1: चलो चलेंगे।
0: आज खाने में है अचार, चटनी और पराठे और दही भी। लासी छाछ नहीं है ब्रो ये।
2: साइफर हम करते हैं ना, तो ये सिर्फ यही लड़की थी जो साइफर पे गाती थी। इसके बाद काफी लड़कियों ने बोला कि हम भी गाएंगे या हम भी करेंगे। कईयों के तो साथ घर वाले भी साथ देने लगे।
0: तो काफी अच्छा लगता है कि मैं इंडिया को एज अ फीमेल रैपर इंटरनेशनल लेवल की स्टेज पे प्रेजेंट कर पा रही हूँ या फिर कर पा सकूंगी आगे, तो हाँ अच्छा लगता है। हाँ बाकी सब वाहेगुरु पे।

जब लोग मुझे सिद्धू मूसेवाला जैसे रिलेट करते तो आई फील वेरी, मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो पर्सनली, क्योंकि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं यार. उनके साथ लेके आपको जोड़ रहे हैं लोग, ऐसे बोल रहे हैं तो बहुत, एक तो पहले तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है मेरे को उनके साथ जोड़ना. इज लाइक प्राउड फील, लाइक नाउ प्राउड नहीं, बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों. प्रेशर भी लगता है और कॉम्प्लीमेंट भी लगता है. प्रेशर थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ही थे, उनके जैसा कोई है नहीं अभी तक, ना ही कोई

0: टीम में
1: जब इस इंडस्ट्री में घुसते हैं तो आपको एक गाने को जो देखने का नजरिया होता है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। पहले हम देखते थे गाना बस वाइब करने के लिए, ठीक है ठीक, अब देखते हैं भाई ये आए तो वो बहुत लाइक बहुत ध्यान देने लग गए उन चीजों पे।
2: असी तेनु पहला ही क्या सी कि तू भी गा,
1: हाँ।
2: ये बोल रही थी मैं नहीं गाऊंगी, छोड़ो मैं नहीं गाऊंगी,
1: मैं कह रहा हूं मैं क्या करूंगी गा,
2: इसको धक्के से गवाया था,
1: धक्के से लाइक जबरदस्ती कह, थोड़ी सी जबरदस्ती की तो फिर मैंने गाया।

0: उसके अगली बार फिर जब साइफर हुआ तो हम कल पिक देख रहे थे वो केक वाली।
1: हाँ कल देख रहे थे हम। हाँ, हाँ,
0: एक साल हो गया उसको, कल एक साल हो गया उस
1: मैं दिखाऊं आपको, मेरे पास है
0: सुखे ने वो भेजी हुई
1: स्नैप। ये हमारा फिर जब 1 मिलियन हुआ था रील पे तो हमने केक काटा था।
2: इसकी खुशी ज्यादा हुई
1: तो बहुत थी,
0: इसकी खुशी ज्यादा थी क्योंकि वो सभी ने पैसे जोड़ जोड़ के केक लेके आए
1: थे। सब ने लाइक इन्वेस्ट किया था वो छोटे से केक। चलो चलो कॉलेज चलिए,
0: चलो चलते हैं।

बनना इतना आसान भी नहीं था और इतना मुश्किल भी नहीं था, बस थोड़ा सा समझने की लाइक वो होती है और डिसीजन लेने की आप में थोड़ा गट्स ऑल लाइक आपको डिसीजन लेना पड़ता है। मेरे को भी पड़ा था लाइक बहुत से, जब आप इस उम्र में होते हो यू नो किसी भी लाइक फील्ड में जाने के लिए, या फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत से ऑप्शन होते हैं, पर आपको सही चूज़ करना बहुत कई बार लाइक बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि लाइक चूज़ ही नहीं कर पाते हैं। सपोज़ अगर मैं अब गाती हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई करती रहती, कभी बोलती नहीं कॉलेज में, मुझे वो लोग ही नहीं मिलते जो मुझे मोटिवेट करते, तो लाइक दिस इज़ हाउ लाइक थिंग्स। मुझे तो मेरे लिए तो यही प्राउड मोमेंट होता है, जब भी मैं बोलती हूँ कि मेरे को घर से बाहर जाना है, तब मेरे को कोई कुछ पूछता नहीं है वापस से कि भाई कितने दिन जाना है, नहीं जाना है, तो मैं इनके

शादी वही तभी वही अच्छा लगता है कि भाई हाँ अब फ्रीडम है अब। पहले थी रिस्ट्रिक्शन कि ऐसे नहीं करना है ऐसे नहीं करना है, तो हाँ वो अभी थोड़ा फ्रीडम है, खुद चूज़ करने का फ्रीडम है। यू कैन चूज़ एनी थिंग व्हाट एवर यू वॉन्ट टू डू, है ना। पहले घर वाले थे कि नहीं आपको ये करना है, ये करना है, वो करना है।

मेरे को तब लगा कि मुझे लोग एक्चुअल में सुन रहे हैं, जब मैंने एक ही दिन में मेरे को किसी बच्चे ने भी बोला दीदी आपका गाना बहुत अच्छा लगा, उसी दिन मेरे को एक ओल्ड लेडी ने भी बोला कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मेरे को लगा कि हाँ मेरे को लोग सुन रहे हैं, क्योंकि हमसे छोटे हमें सुन रहे हैं, हमसे इतने बड़े भी सुन रहे हैं, सिटीजन्स लाइक सीनियर सिटीजन्स भी सुनते हैं, तो तब लगा मेरे को भी यहाँ मेरे को थोड़े लोग सुन रहे हैं।

0: ये है राजवीर मेरी सहेली, मुंह देख लो इसका।
1: मेरे नमस्ते भी नहीं नहीं
0: नहीं। ये मेरा दोस्त है, इसका नाम गुरदत्त है। देखदा है सच्चे पातशाह।

0: अब हम पहुंच गए हैं वहां जहां हम यूजुअली हमारी प्रैक्टिस करते हैं, लाइक यहां पे हमारा थिएटर का थिएटर की चीज हो चीजें होती हैं।
1: तो कहना मैंने क्लासिकल नहीं जो
0: तू तो ये हमारा स्टेज है, यहां पे हम बैठते हैं, विश्वनीय क्लासिकल गाते हैं, लोग कभी बार नाचते भी हैं।
2: धीरे धीरे
0: ये हमारे सारे साथी हैं।
3: सही कहा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: We are over, Jimmy.
3: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आर्थोर मसाला।
7: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
8: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
7: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: now, the rebel camp is now, the principal opposition in the assembly and alleging that the lease of the party office has actually expired. The Mamata Banerjee camp, however, hit back strongly. Senior TMC leaders Kunal Ghosh, Madan Mitra have accused the rebels of trespassing into the Trinamool Bhavan, saying expelled members have no right to enter the party office. They have also alleged that the police and central forces failed to act against the rebels. Bengal Minister Dilip Ghosh has called the row an internal matter of the TMC but condemned the scenes at the party office.
1: इस वक्त हम लोग खड़े हैं कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन इलाके में और मेरे पीछे है तृणमूल भवन, जो पिछले रात को तृणमूल भवन में देखा गया था कि जो रिवेल विधायक थे ऋतव्रत बैनर्जी, जो नए तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं ऋतव्रत बैनर्जी, संदीपन शाह और जावेद खान, मूल पांच जो विधायक थे वो कल रात को तृणमूल भवन में आए और अंदर घुसने के बाद जो ममता बनर्जी की फ़ोटो थी वो हटा दिया। हटा देने के बाद वो लोग कह रहे थे कि वो लोग तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं और वो लोग अपने पार्टी ऑफिस में आए हैं और पार्टी ऑफिस में आने के बाद वहाँ पर जो कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाएगी और वहाँ पर जो कई समस्याएं लेके आएंगे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन लोगों की बातें सुनी जाएंगी। इसके बाद ही तृणमूल कांग्रेस के जो नए विधायक हैं वो पहुँचे और पहुँचने के बाद अंदर से ममता बनर्जी की फ़ोटो हटा दी गई। हटा देने के बाद उन्होंने बाहर आया, आने के बाद फिर जो एक बैनर है वो बैनर लगाया गया, नया बैनर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जो चेयरमैन है वो अरूप राय है, वो बैनर सीधा सीधी गेट के बाहर लगाया गया। वो वीडियो मैं देखा चाहूँगा कि वो बैनर लगाने के बाद ही जो नए तृणमूल कांग्रेस के नेता थे और विधायक थे वो इस तृणमूल भवन से बाहर चले गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो पुराने तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं कुणाल घोष, जो कि ममता बनर्जी के गुट के हैं, वो कुणाल घोष आए यहाँ पर। आने के बाद वो लोग अंदर नहीं घुस पा रहे थे क्योंकि ऋतव्रत बनर्जी वो जो मेन डोर है, जो मेन डोर पर ताला लगा दिए। उसके बाद जो पुराने जो विधायक अर्थात ममता बनर्जी के जो विधायक थे वो आए और एक और ताला लगा दिया, अर्थात बोला जा सकता है कि जो दो ताले लगाए गए, एक ऋतव्रत नए तृणमूल कांग्रेस के विधायक लगाए हैं और एक पुराने तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष ने लगाया है, दो ताला। उसके बाद एक और बैनर लगाया गया तृणमूल भवन सामने, तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी, ऐसा पोस्टर दिया है। ये पुराने जो तृणमूल कांग्रेस के नेता लोग हैं वो आके लगा।
2: तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस में गए थे और जाके वहाँ पे हम लोग बैठे, तो इस पर कोई क्या आरोप लगा रहा है उस पर ध्यान हम लोग नहीं देंगे। हम लोगों को विधानसभा में प्रिंसिपल ऑपोजिशन का स्वीकृति मिल चुका है, उधर का जो मालिक है वो ऑलरेडी चिट्ठी दे चुका है कि जो लीज था वो ओवर हो चुका है, तब भी वो लोग जबरदस्ती, तो वो लोग बैठे हुए हैं। क्या FIR, क्या किस कारण से FIR, खुद दखल करके बैठे हुए हैं। और हम लोग जो तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है उसको हम लोग पकड़ के रखना चाहते हैं और हम ही लोग के ऊपर बोल रहे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
3: तृणमूल कांग्रेस की वर्कर लोगों को ऊपर निर्यातन चल रहा है, बीजेपी का गुंडाई चल रहा है, बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा तृणमूल कांग्रेस कर्मी अपना घर में जा नहीं सकते हैं। उसी टाइम तृणमूल कांग्रेस की एक तो ग्रुप को बचाने के लिए 15 मिनट के अंदर सेंट्रल फोर्स आ गया है। इसी से ये साबित हो जाता है ये लोग बीजेपी का गोद में बैठकर बीजेपी का बी टीम होके काम कर रहे हैं।
4: TMC का अंदरूनी मामला है, कौन नेता, कौन कब्जा करेगा ऑफिस, कौन विधानसभा में बैठेगा, कहाँ बैठेगा, ये तो माननीय स्पीकर विधानसभा में और बाहर कानून ठीक करेगा। लेकिन ये जो हो रही है ये नहीं होना चाहिए। जनता ने उनको मैंडेट दिया विपक्ष में बैठने के लिए, 15 साल सत्ता में रह के आदत खराब हो गया है, लड़ाई करने की इच्छा नहीं है, सुविधा में रहने का आदत है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा भूमिका होता है। हम चाहते हैं कि TMC वो भूमिका का वादा करे, सरकार को दिशा दे, साथ दे करके सही रास्ता दिखाए कि जनता को सही में सुशासन मिले। वो काम नहीं कर पाएंगे तो जनता आगे भी सोचेगा।
5: ममता बनर्जी सपोर्टर्स दे वेंट टू द ऑफिस, दे वांटेड टू ब्रेक द लॉक बट पुलिस प्रिवेंटेड देम फ्रॉम डूइंग सो। Police said that you can't touch their lock. So this is an effort made by so-called dissident TMC MLAs. In सपोर्ट ऑफ द बीजेपी।
6: जो पार्टी अपना पार्टी ऑफिस तक तय नहीं कर सकती, हमको तो आश्चर्य है पिछले 15 साल ये राज्य कैसे संभाला होगा। जो पार्टी अपने विधायक को साथ रख नहीं सकती, सांसद को साथ नहीं रख सकती, वो संभाल रहे थे पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल की जनताओं को। तो इससे समझ आता है ये पार्टी सिर्फ तृणमूल कंपनी है, तृणमूल पार्टी नहीं है। तो कंपनी में अभी दोनों मालिकों के बीच खींचातानी हो रही है, वो रस्सी का लड़ाई देखें आप कि एक तरफ से ये खींचा, एक तरफ से ये खींचा, तो जिसमें जोर ज्यादा होगा उसी को मिलेगा।
0: In another setback for an embattled Trinamool Congress chief Mamata Banerjee, party's West Bengal president Chandrima Bhattacharya and a long-time aide of the TMC chief has resigned from all party positions. In a letter addressed to Chief Mamata Banerjee, Chandrima relinquished responsibilities from all other posts she held within the party. She told the reporters that her decision came after Mamata Banerjee accused her for takeover of the party headquarters by the rebel faction. Soon after resignation, Chandrima met the rebel faction led by Ritabrata Banerjee in Bengal Assembly, and that stirred another speculation of her joining the rebel faction. TMC's Kunal Ghosh has launched a sharp attack and said that Chandrima never felt hurt till the time she was a minister, and now she's hurt after the party's out of power.
7: विश्वास नहीं है, जहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है वहाँ पर अगर काम करना है तो वो काम ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए हमने वो ये रेजिग्नेशन दी। हमारा का लॉयल्टी के सवाल उठाने वाले हम कुणाल जी को सम्मान करते हैं, लेकिन वो उठाने वाले कौन है, वो कौन कैसे देखे हैं हमको? ममता जी जानती है कि हमारी लॉयल्टी है या नहीं।
8: चंद्रिमा भट्टाचार्य हमारा रिस्पेक्टेड दीदी था, आप देखिए उनका वो तो उनका लड़का पहले ही उस कैंप में चला गया था। चंद्रिमा जी कल जब पार्टी ऑफिस में बैठे हुए थे तो वो लोग आया, चंद्रिमा जी थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अगर वहाँ पर रह जाते तो ऐसा ये तालामाला नहीं होता, वो छोड़ के चला गया बीइंग प्रेसिडेंट। और चंद्रिमा जी ममता दीदी जब चीफ मिनिस्टर थे सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के हाथ में था। तो आप देखिए जब दीदी एक के बाद एक इंक्लूडिंग फिनेंस इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री उनको दे रहे थे तब कुछ दुख नहीं हुआ। आज ममता दीदी का देने का, ममता दीदी चीफ मिनिस्टर नहीं है, ममता दीदी को देने का कुछ नहीं है, सब दुख लगने लगा और पूरा एक्सपोज हो गया। अगर दुख लगा तो बात हो सकता है, ओपोनेंट कैंप में अगर कोई जाता है तो इससे एस्टेब्लिश होता है, ये प्री प्लान्ड था, पूरा प्रोसेस प्री प्लान्ड था।
0: अक्रॉस महाराष्ट्र अ सीरीज ऑफ प्रिवेंटेबल सिविक ट्रेजेडीज हैव वंस अगेन रेज सीरियस क्वेश्चंस। दीज क्वेश्चंस आर अबाउट पब्लिक सेफ्टी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द लॉस ऑफ लाइव्स। Relentless monsoon rain continues to wreak havoc across Mumbai and its neighboring districts. The Andheri subway remains submerged. Roads in Thane and Sion are waterlogged. And a massive tree crashed into a market in Dadar, disrupting normal life across the region. In Pune, a 2-year-old boy drowned in an open sewage pit, allegedly left unsecured. According to police, the contractor's negligence is under scanner. FIR has been registered, but the boy lost his life. In another incident, an 11-year-old lost his life after a tree collapsed on a school bus. A biker was killed when a coconut tree fell on him, while a 55-year-old man died after falling into an open manhole in Mumbai. In Mumbra, a minor died of electrocution from a live wire, and all these coming in from the financial capital of the country.
9: Once again, Mumbai has begun to witness extensive rainfall, and at present we are here at Andheri subway. The subway has been shut for vehicular movement, and like you see, the water has completely overflown, because of which it is difficult for people to even stand in the nearby vicinity. Andheri subway, a low-lying region, but every year Mumbai overflows. Mumbai is flooded with water, especially in its suburban regions like Andheri, Goregaon, and other areas like Borivali and Dahisar. And today, being an orange alert, people had been advised to not ensure that there are going to be extensive rainfall. You see on the other end, people are forced to walk in knee-length water. because of the flood-like situation.

0: जिमी।
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
5: सबका राजा आर्गन मसाला।
6: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
7: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
6: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.
10: NDTV tops the Reuters Institute. India reach rankings again. Number one in offline and online news reach. For the sixth year in a row, audiences continue to choose NDTV across television and digital. NDTV, trusted across every screen.

0: But yeah, just like we can't take it for granted because Egypt, I don't know how many times we play in a World Cup. It's never before we qualified in a group stage. Now we qualified and we qualified in the next round. So it's just, it's a moment to enjoy.
1: Salah has been struggling with hamstring strain. His return to complete fitness, Argentina will be crucial for the Faroes. Cape Verde has shown them Argentina's weak areas. It will require quality to take down the world champions on Tuesday night. With Rika Roy, Bureau Report, NDTV.
2: The FIFA World Cup 2026 is set to be the biggest World Cup ever.
3: World's biggest football spectacle.
4: We've been up since 11 watching him, tracking him from the airport to the hotel here.
3: The passion, the glory, and the thrill. Every goal, every upset, every single knockout battle. NDTV brings you the 360-degree view.
5: Thousands of fans behind me have gathered just to see one game of Ronaldo, the big and perhaps the most interesting match.
6: It didn't feel real. It's like a once-in-a-lifetime opportunity there in Toronto.
7: A 360-degree view of the greatest show on earth, only here on NDTV 24/7.
8: All right, some latest news coming in, and this is coming in from the city of Ayodhya, where Ayodhya police have granted permission to question Ram Venkatesan, theft accused, in jail. The Ayodhya police have received this permission to question the accused in the theft case inside the jail premises, since all of them are in judicial custody. The police will question the five accused person: Anukalp Mishra, Lavkush Mishra, Ram Shankar Yadav, he's also known as Tinnu, Karunesh Pandey, Manish Yadav. And according to the police, the questioning of all five accused will begin on Sunday inside the jail. The application seeking permission was filed by the Ayodhya Circle officer, the CEO, Ashutosh Tiwari, who is investigating the case before the court of the special judge, Rajat Verma. My colleague Mukesh Singh joining us on the broadcast, giving us more perspective on that story. Mukesh, give us more details. With they in judicial custody, where all the accused are, the police can go ahead and question them.
9: देखिए, ये सभी आरोपी अभी अयोध्या जेल में हैं और अयोध्या पुलिस को इस मामले की जांच में ये पता करना है कि इन आरोपियों ने कितनी संपत्तियां बनाई हैं और इस पूरी चोरी की, थेफ्ट की कॉन्स्पिरेसी में क्या कोई शामिल है या फिर ये एक सिंडिकेट बना के चोरी कर रहे थे, तो ये जांच करनी है। इसीलिए अयोध्या पुलिस ने आज अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की थी, जिसमें ये कहा था कि उनको पांच आरोपियों से जेल के अंदर पूछताछ करनी है। कोर्ट ने परमिशन ग्रांट कर दी है और अब संडे को ये जो पांच आरोपी हैं, जिसमें लवकुश मिश्रा है, अनुकल्प मिश्रा है, टिन्नू यादव है, मनीष यादव है और साथ में करुणेश पांडे हैं, इन सभी से जेल के अंदर पूछताछ होगी और पूछताछ के दौरान पुलिस पता लगाएगी कि आखिर इनके साथ में मंदिर के अंदर दान चोरी कोई और भी कर रहा था या केवल यही लोग हैं और इस चोरी के द्वारा इन लोगों ने कितनी संपत्तियां बनाई हैं, इसको लेकर भी जांच की जाएगी। जी
8: मुकेश जी, ये जो पूछताछ हो रही है इस समय जुडिशियल कस्टडी में, इसके अलावा भी क्या ये संभावना है कि और कोई गिरफ्तारियां हो सकती हैं? कौन कौन से ऐसे पक्ष हैं, कौन कौन सा ऐसा संदर्भ है जिसमें पुलिस अभी भी अपनी पूरी कार्यवाही जारी रखी हुई है?
9: देखिए, ये पूछताछ जो है वो कल संडे को होगी और पुलिस निश्चित तौर पर ये पता लगा रही है कि इसमें क्या इनके अलावा कोई और भी लोग इन्वॉल्व हैं। पुलिस के मुताबिक कुछ बैंक के कर्मचारी और मंदिर में काम करने वाले कुछ एम्प्लॉई जो है वो जांच के दायरे में हैं। अगर उनके नाम, उनका रोल सामने आता है चोरी के मामले में, तो निश्चित तौर पर उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा जो बड़े नाम हैं, जिसमें चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राय हैं, इन सभी से एसआईटी ने पूछताछ कर ली है। अयोध्या पुलिस ने चंपत राय से पूछताछ की है और बाकी जो ट्रस्टी हैं उनसे बहुत जल्दी पूछताछ होगी। पुलिस के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर सभी 140 जो लोग हैं, जिसमें आरोपी भी हैं, जिसमें विटनेस भी हैं, कुछ मंदिर के एम्प्लॉई हैं, उन सभी से एक हफ्ते के अंदर पूछताछ हो जाएगी और अगर किसी का रोल निकल कर सामने आता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। जी
8: बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सिंगर, ये सारी जानकारी हम तक लाते हुए। माय कॉलीग मुकेश विद ऑल द डिटेल्स। द पुलिस विल क्वेश्चन द अक्यूज्ड इन जुडिशियल कस्टडी। Moving on, Jammu and Kashmir, Lieutenant Governor Manoj Sinha on Saturday suspended 8 officials of the School of the Education Department. He removed a contractual staff and ordered an inquiry into two controversial books that were found containing highly inappropriate content. What was this content? Now, this content glorified separatist

0: हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं उस जगह में जब एम्स बन रहा है, हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो रही है, अगर बुलेट ट्रेन की शुरुआत हो रही है तो हम लोग डेवलपमेंट के साथ में जाएंगे, काम के साथ में जाएंगे। एवं मेरा निजी राय था, मैं जिस दिन रिजाइन किया उसी दिन मैं बोल दिया था ये मेरा निजी राय है। बाकी बात स्वागतदा ऑनरेबल लीडर हैं, सीनियर एमपी हैं, उनके बात को मैं किसी व्यवस्था से प्रोटेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरा निजी राय था एवं मैं अपना निजी राय दिया, मैं पार्टी से भी
1: और
0: मेरा सांसद पद से मेरी निजी राय दिया।
1: जब तक आप दीदी के साथ थे, जब तक आप टीएमसी के साथ,
0: देखिए 50 साल तक 34 से 35 साल लेफ्ट की सरकार थी वहाँ, 34 से 35 साल लेफ्ट की सरकार थी, 15 साल तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, एवं दोनों ही सरकार सेंट्रल के साथ में कोई कोलैबोरेशन बना के नहीं चले। सेंटर में जो स्कीम होता था वो स्कीम गरीब तबका के लोग वो स्कीम का बेनिफिट नहीं पाते थे, इतना डिफरेंसेस था। हम लोगों को एक साथ चलना चाहिए, सेंट्रल को भी स्टेट को भी, क्योंकि ये लाभ गरीब मजदूरों को, गरीब जनता को के लिए जो बनता है उनको सबके सामने पहुंचाना चाहिए। ये कोलैबोरेशन 50 साल के बाद में मिला, सेंट्रल और स्टेट का कोलैबोरेशन, जो राज्य में सरकार है वो सेंट्रल में भी है।
1: पॉइंट्स टेकन सर, लेट मी कट अक्रॉस वंस अगेन बैक टू मिस्टर स्वागतो रॉय। मिस्टर स्वागतो रॉय, द वन ऑफ द की पॉइंट्स दैट मोस्ट ऑफ द रिबेल्स हैव मेड इज दैट विद इन द पार्टी देयर वर मल्टीपल इश्यूज, दे वर नॉट अलाउड टू हैव देयर वॉइस। Another point that Prakash Bhairek is raising is the issue of development, that none of the governments were able to have any kind of synchronization, any kind of harmony with the center. And that's one of the key issues they feel like they should go with the BJP. Mr. Swagato Roy.
2: See, this has been mentioned. I do not say that anybody cannot differ with the leadership in a party. I do not say that development is not an issue. But to say that now that BJP has come to power in West Bengal, a lot of things will happen, aims will happen. All these are empty promises. And aims will take 10 years to build. So till that, it remains a balloon. Bullet train is also an empty promise. That will not take shape. The member who spoke before me, I understand that he wants development, but by resigning from the Rajya Sabha, to which Trinamool Congress had put him, he is not going to improve development. There are so many states ruled by BJP. Where is development taking place? Now they are thinking of changing chief ministers in Rajasthan, in Madhya Pradesh, in Chhattisgarh. There is talk of money being stolen from the Ram Mandir treasury. There is difference in BJP everywhere. All BJP knows is to carry sack full of money and tempt people with that.
1: But sir,
2: all I say, sir, if somebody asks me, why are you in Trinamool Congress?
1: Sir, with due respect to your...
2: I say, just a moment.
1: Yeah.
2: I say that I got elected with TMC symbol. I got elected with Mamata Banerjee's photograph on my posters. Now suddenly to find that everything is wrong with her, all these people who won with Mamata Banerjee's photograph on the posters, what they're doing is called gaddari, betrayal, treason. This is not rebellion. This is all bogus.
1: Sir, permit me an interjection, Mr. Swagato Roy. When you see the likes of Chandrima Bhattacharya quitting the party, when you see the likes of Chandrima Bhattacharya quitting the party, somebody who has held multiple portfolios, somebody who was a close confidant.
2: Yes, Chandrima Bhattacharya I saw. Chandrima Bhattacharya is absolutely shameless. She was part of my parliament constituency. She lost once in 2016. Mamata Banerjee liked her so much that she was elected in a by-election from somewhere else and came to assembly. Chandrima Bhattacharya has again lost.

0: हुआ जिमी?
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
5: सबका राजा आर्थोर मसाला।
6: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
7: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
6: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: NDTV tops the Reuters Institute. India reach rankings again. Number one in offline and online news reach. For the sixth year in a row, audiences continue to choose NDTV across television and digital. NDTV, trusted across every screen.

0: विश्वास नहीं है, जहां पर कॉन्फिडेंस नहीं है, वहां पर अगर काम करना है तो वो काम ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए हमने वो ये रेजिग्नेशन दिया।
1: चंद्रिमा भट्टाचार्य हमारा रिस्पेक्टेड दीदी था, आप देखिए उनका, वो तो उनका लड़का पहले ही उस कैंप में चला गया था। चंद्रिमा जी कल जब पार्टी ऑफिस में बैठे हुए थे तो वो लोग आया, चंद्रिमा जी थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अगर वहाँ पर रह जाते तो ऐसा ये तालामाला नहीं होता। वो छोड़ के चला गया बीइंग प्रेसिडेंट। और चंद्रिमा जी, ममता दीदी जब चीफ मिनिस्टर थे, सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के हाथ में था। तो आप देखिए, जब दीदी एक के बाद एक इंक्लूडिंग फिनेंस इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री उनको दे रहे थे, तब कुछ दुख नहीं हुआ। आज ममता दीदी का देने का, ममता दीदी चीफ मिनिस्टर नहीं है, ममता दीदी को देने का कुछ नहीं है, सब दुख लगने लगा और पूरा एक्सपोज हो गया। अगर दुख लगा तो बात हो सकता है, ओपोनेंट कैंप में अगर कोई जाता है तो इससे एस्टेब्लिश होता है, ये प्री प्लान्ड था, पूरा प्रोसेस प्री प्लान्ड था।
2: And the battle for control of the Trinamool Congress has now spilled onto the streets and right to the doors of the party's Kolkata headquarters. A dramatic showdown unfolded after the rebel faction led by Leader of Opposition Ritabrata Banerjee laid claim to the TMC office, triggering a fresh political flashpoint. The rebel camp insists it has every right to access the premises, claiming it now the principal opposition party in the assembly is the rebel camp, and alleging that the lease of the party office has in fact expired. Hitting out at the rebels, Mamata Banerjee says that her residence will now be the party office and her only focus is now rebuilding the party.
3: আর বেইমানি করারও তো একটা সীমা থাকা উচিত। পার্টির সাথে বেইমানি না করে যে পার্টিটা আপনাদের কাছে জন্মদাত্রী মা, আপনারা তো সরাসরি বিজেপি করছেন এখন। বিজেপি করবেন আর তৃণমূল বলবেন, এটা তো হতে পারে না, কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের আদর্শ বিজেপি বিরোধী। আমাদের একটা আদর্শ আছে, আমাদের একটা নীতি আছে, আপনারা যারা বেইমানরা গদ্দাররা বিজেপির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের কথা মতো চলছেন, বিজেপি স্পন্সার্ড যারা, তারা আমি বলবো যদি সাহস থাকে, বুকের পাটা থাকে, যান গিয়ে বিজেপিতে গিয়ে জয়েন করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তবুও বুঝবো আপনারা বিজেপিতে চলে গেছেন, বিজেপিতে থেকে দল ভাঙার চক্রান্ত ভাবেন কি যে আমি মরে গেছি। মনে রাখবেন, আপনার পক্ষে আছে বলে সরকার, আপনি তাকে দিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে কমপ্লেন করিয়ে আপনি সিম্বল কেড়ে নিতে পারেন, যদিও আমরা জানি সিম্বল আপনার পক্ষে যাবে না, কিন্তু ধরে নিলাম যদি ভ্যানিশ কুমার বাবু আমাদের পার্টিকে ফিনিশ করার জন্য ইলেকশনটাও করেছেন, যদি সিম্বল দিয়েও দেয় তাতে কি যায় আসে। সিম্বল সেটাই হয় যেটা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে, তৃণমূল কংগ্রেসরা গ্রহণ করে। গলায় সিম্বলটা ঝুলিয়ে মানুষের কাছে যখন বেরোব, আপনারা কি আমার কণ্ঠরোধ করতে পারবেন?
4: তো হাম লোক তৃণমূল কংগ্রেস কা অফিস মে গয়ে থে আর যাকে ওয়াহা পে হাম লোক ব্যাঠে, তো ইস পে কোই ক্যা আরোপ লাগা রাহা হ্যায় উস পে ধ্যান হাম লোক নেহি দেঙ্গে। হাম লোগোঁ কো বিধানসভা মে प्रिंसिपल ऑपोजिशन का स्वीकृति मिल चुका है, उधर का जो मालिक है वो ऑलरेडी चिट्ठी दे चुका है कि जो लीज था वो ओवर हो चुका है, तब भी वो लोग जबरदस्ती, तो वो लोग बैठे हुए हैं। क्या एफआईआर, क्या किस कारण से एफआईआर, खुद दखल करके बैठे हुए हैं। और हम लोग जो तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है उसको हम लोग पकड़ के रखना चाहते हैं और हम ही लोग के ऊपर बोल रहे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
5: तृणमूल कांग्रेस की वर्कर लोगों को ऊपर निर्जातन चल रहा है, बीजेपी का गुंडाई चल रहा है, बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा तृणमूल कांग्रेस कर्मी अपना घर में जा नहीं सकते हैं। उसी टाइम तृणमूल कांग्रेस की एक तो ग्रुप को बचाने के लिए 15 मिनट का अंदर सेंट्रल फोर्स आ गया है। इसी से ये साबित हो जाता है ये लोग बीजेपी का गोद में बैठकर बीजेपी का बी टीम होके काम कर रहे हैं।
6: ये टीएमसी का अंदरूनी मामला है, कौन नेता, कौन कब्जा करेगा ऑफिस, कौन विधानसभा में बैठेगा, कहाँ बैठेगा, ये तो

0: माननीय स्पीकर विधानसभा में और बाहर कानून ठीक करेगा, लेकिन ये जो हो रही है ये नहीं होना चाहिए। जनता ने उनको मैंडेट दिया विपक्ष में बैठने के लिए, 15 साल सत्ता में रह के आदत खराब हो गया है, लड़ाई करने की इच्छा नहीं है, सुविधा में रहने का आदत है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा भूमिका होता है। हम चाहते हैं कि TMC वो भूमिका का वादा करे, सरकार को दिशा दे, साथ दे करके सही रास्ता दिखाए कि जनता को सही में सुशासन मिले। वो काम नहीं कर पाएंगे तो जनता आगे भी सोचेगा।
1: ममता बनर्जी सपोर्टर्स दे वेंट टू द ऑफिस, दे वांटेड टू ब्रेक द लॉक बट पुलिस प्रिवेंटेड देम फ्रॉम डूइंग सो। पुलिस सेड दैट यू कांट टच देयर लॉक। सो दिस इज एन एफर्ट मेड बाय सो कॉल्ड डिसिडेंट TMC MLAs in support of the BJP.
2: And the SIT probe into the alleged Ram Temple donation theft is intensifying, with investigators tracking what sources describe as a larger money trail. Investigators also took accused Avinash Shukla to a yoga center where documents were examined and a fresh search was conducted. The row has taken a political turn, with Akhilesh Yadav stating that an AI-generated video of Lord Ram, and he shared this video. In this video, Lord Ram is leaving Ayodhya and asking, have they gone into an exile again? Apparent jibe at the BJP.
3: इस वक्त मैं कौशलपुरी इलाके में उस योगा सेंटर में हूं जहां अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस आई थी, और यहां पर वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा कैश बरामद हुआ था। तो अविनाश शुक्ला को पुलिस यहां पर लेकर आई थी, और ये जो बक्से रखे हैं इनकी एक बार फिर से तलाशी हुई थी, और इन बक्सों में हालांकि कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला, कोई कैश नहीं मिला। जो कैश 20 लाख रुपए पहले मिला था और साथ में 1100 अमेरिकी डॉलर और कुछ गहने बरामद हुए थे, उसके बाद कल की तलाशी में पुलिस को यहाँ से कुछ नहीं मिला है। पुलिस ने यहाँ पर रखे जो तमाम आधार कार्ड हैं, जो कागजात हैं वो देखे, और इन बक्सों को एक बार फिर से खोला, और पूरी तलाशी के बाद पुलिस यहाँ से निकल गई। देखिए कि बक्से में किस तरह से कम्बल और कपड़े रखे हुए हैं, और इन्हीं कम्बलों के बीच में, कपड़ों के बीच में कैश को छुपाकर रखा गया था। तो पुलिस ने इन बक्सों की तलाशी ली, और ये जो बक्सा है जो हमने पहले दिखाया था जिस पर रामराज कोच लिखा हुआ है, हालांकि इस बक्से में ताला बंद है, लेकिन ये बक्सा फिलहाल यहीं पर रखा हुआ है। इस बक्से का ताला नहीं खोला गया है कि बक्से के अंदर क्या है, तो ये बक्सा यहीं पर रखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों को पुलिस ने बड़ी बारीकी से देखा। ये तमाम जो दस्तावेज हैं, ये दस्तावेज पुलिस ने बहुत बारीकी से देखे, और पुलिस ने काफ़ी लंबी यहाँ पर पूछताछ की, जाँच की, और पुलिस उसके बाद यहाँ से निकल गई। तो ये सारे दस्तावेज अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक के हैं, जो दोनों यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर जो केयर टेकर उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका?
4: हमारा सुंदरलाल नाम है।
3: कैश यहीं से बरामद हुआ था 5 जून को ना?
4: हाँ, वो तो कैश बरामद हुआ, वो तो बाद में न्यूज में निकला है, तब हमको भी जानकारी हुई कि कैश यहाँ से बरामद हुआ है।
5: अयोध्या में चंदा चोरी मामले में तमाम बरामदगी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये राम जन्मभूमि थाना है, और इस राम जन्मभूमि थाने में खड़ी इस ब्रिजा कार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जरा इस ब्रिजा कार को देखिए, ये ब्रिजा कार जिसका नंबर है UP42AP6054, दरअसल ये ब्रिजा कार अविनाश की है, उसकी निशानदेही पर पुलिस की तरफ से बरामद की गई कार है ये, और चंदा चोरी के पैसे से ये कार खरीदी गई थी। ये कार जो है, पूछताछ में पता चला पुलिस को कि अविनाश की तरफ से बताया गया कि ये कार जो चंदे चोरी का पैसा था उससे खरीदी गई। देखिए कार काफ़ी नई दिखाई दे रही है, कुछ समय पहले ही खरीदी गई है। तमाम तरीके के आरोपों के बीच में इस कार को पुलिस ने बरामद किया है। इस कार को इस समय चौकी में लाकर रखा गया है। तस्वीरें हम आपको कार की दिखा रहे हैं। ये देखिए पीछे की तरफ से इसका नंबर प्लेट हटा हुआ है, और पुलिस देखिए पीछे गाड़ी की स्थिति बता रही है कि काफ़ी नई ये कार है। यह कार नगर कोतवाली क्षेत्र के ही एक सड़क पर खड़ी थी, और जब पूछताछ हुआ और इसके बाद जब निशानदेही की गई अविनाश की तरफ से, तो पुलिस ने रिमांड में लेकर तमाम खुलासे किए और इस कार को भी बरामद किया, जो कार अब लाकर यहाँ पर राम जन्मभूमि का जो थाना है वहाँ पर रख दी गई है। तो चंदा चोरी से जुड़ी हुई तमाम जो संपत्तियाँ हैं पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है, चोरी से बनाई गई संपत्तियों को आइडेंटिफाई कर रही है, जब्त कर रही है, जिसके जरिए जो चोरी से धन निकाला गया है उसकी

0: ही पुलिस आगे चलकर करेगी।
1: आजकल कुछ नकली राम भक्त अपने को सनातनी कह रहे हैं, जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि गुंबज पर तो चढ़ गए, उतर नहीं पाएंगे, गोलियों से भूंज दिया गया, चाहे मियां मुलायम क्यों न कहे, आज वो सबसे बड़े सनातनी बन रहे हैं। जो घटना घटी है चोरी का, वो हिंदू समाज आहत है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और वहाँ की सरकार तत्पर है और दूध का दूध पानी का पानी करके रखेंगे।
2: देश में गुस्सा है इस तरह की घटना को लेकर के, जो भगवान राम के भक्त लोग हैं उनको ठेस पहुंची है, इसमें तो दम है इस बात में। सरकार की तरफ से जो ट्रस्ट ने डिमांड रखी तो SIT गठित हो गई। प्रथम दृष्टया SIT ने 8 लोगों के खिलाफ जांच में दोषी पाया, 8 लोगों को जेल भेज दिया।
3: अभी आंदोलन करने जा रहे हैं, फिर एक बार जो राम जन्मभूमि का आंदोलन है वैसे ही छेड़ा जाएगा, क्योंकि ये सारे हिंदुओं की भावना का अपमान है कि भाजपा ने दान पेटी से पैसा को चुराया है और आज सांसदों को उसी पैसे से खरीदना चाहते हैं। तो गांव में जाके हम राम रक्षा आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि रामलल्ला का जो आंदोलन है वो रामलल्ला का रक्षण भाजपा से करे, भाजपा के लुटेरों से करे।
4: And the alleged embezzlement of donations at the Ram Temple in Ayodhya has now triggered a political war of words. Breaking his silence, RSS General Secretary Dattatreya Hosable described the alleged theft as deeply hurtful to the sentiments of devotees of Ram and appealed for patience and restraint. Hosable backed the special investigation team constituted by UP government, saying that those found guilty must face punishment, while urging people not to allow anti-Hindu and anti-national forces to exploit the incident. The Congress, however, has hit back. State Congress Chief Ajay Rai accused RSS of waking up too late, saying statements alone are not enough and demanding strict action and accountability.
5: जान गया और तमाम संगठन आपस में बैठ करके इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के बात कही जा रही है। तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है
6: पर
5: और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।
7: तो राम मंदिर কত টাকা দিয়ে মানুষ বানালেন, কত সোনা, কত রূপো, কত দান, কত ধ্যান, আর আজকে রাম কার নাম আপনি বদনাম কর দিয়া, হিন্দুত্ব কার নাম পে খেলা আর হিন্দুইজম কো আপনি ফিনিশ কিয়া। যেমন দেখছেন না, পুনামি থালা থেকে শুরু করে, পুনামি বাক্স থেকে শুরু করে সব রাম মন্দির সবটাই নাকি ওদের সম্পদ। এবং ডিজিটালে যারা কথা বলতে চায় ইউটিউবে, একটু বিরোধিতা করলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে এবং FIR করা হচ্ছে।
8: শ্রী দত্তাত্রেয় হোসওয়ালে জি নে জো কাহা হ্যায় ওহি ইস দেশ কে লাখো করোড়ো স্বয়ং সেবকো কে করোড়ো করোড় দেশবাসিও কি আওয়াজ থি है और रहेगी। दूसरी बात, देश के राजनेताओं ने इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
9: इतने दिन बीत जाने के बाद अब ये कुंभकर्णी नींद से उठे हैं ये लोग। आप सोच सकते हैं कि जो आज इतना पुराना प्रकरण हो गया है, सारा चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जमीन में घोटाला, सब लगातार बोल रहे हैं, संघ उसमें नहीं जागा, उसमें संघों को नहीं लगता था कि ये क्या हो रहा है। अब जब लगा, गांव गांव में, घर घर में चर्चा हो गई कि चढ़ावा चोर हैं ये लोग, तब ये बयान जारी कर रहे हैं, तब ये वीडियो जारी कर रहे हैं। कार्रवाई कराइए, वीडियो से बयान से नहीं होगा। जो आज बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं दत्तात्रेय हसबोले, कार्रवाई करें और उनको जेल भेजें, चाहे वो चंपत राय बंसल हों, अनिल मिश्रा हों, गोविंद गिरी हों, चाहे गोपाल राव हों, क्योंकि जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता ये कह रही है। अयोध्या वासी कह रहे हैं, मैं अभी 2 दिन पहले दर्शन करने गया था, उसमें भी ये लोग व्यवधान डाल रहे थे कि दर्शन न करने दिया जाए।
4: And after the Ram Temple donation theft trial exploded, another major temple finances are now under the scanner. The Badrinath Kedarnath Temple Committee has ordered an inquiry into allegations of misuse of donations at the temple. The move comes after claims of financial irregularities in the handling of temple funds surface. The committee says show cause notices have already been issued to those allegedly involved and the people who were involved in the finances in the donation counting process. An inquiry committee has been constituted to investigate. The chairman of the BKTC, Hemant Dwivedi, has assured that probe report will be made public. He's warned that anybody found guilty will face strict action.
0: सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है और चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी।
4: Iran has begun an elaborate farewell for its fallen former supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. With millions expected to take part, the world leaders arriving in Tehran, the funeral has become one of the largest state ceremonies in the country's history. In a surprise turn of events, Saudi has sent a delegation for Khamenei's state funeral. A full report.
6: Thousands gathered across Tehran to mourn Ayatollah Khamenei. On the first day of the national mourning, black-clad mourners, alongside foreign dignitaries, paid their final respects. Dignitaries from around the globe are also in attendance. However, what has caught eyes across the world is a surprise attendee. Saudi Arabia has sent a special delegation accompanied by their deputy foreign minister to Iran to pay respect to the late supreme leader. The slain supreme leader of the Islamic regime was also hailed as a symbol of resistance.
10: آزادگی، عدالت طلبی، استقلال و عزت و سربلندی که برای همه مسلمان‌ها در حقیقت به ارمغان آورد. تقریباً تو دنیا کشوری نیست که آمریکا بخواد براشون.
6: With the final procession underway, Iran expects more than 10 million mourners and delegations from over 100 countries. The six-day procession will travel through Tehran, Qom, Najaf, Karbala, and Mashhad. Ali Khamenei's coffin is put on public display at Tehran's Imam Khomeini Masala. The farewell is also taking place with stringent measures. Tehran airport will remain shut till the end of funeral public holidays declared for all 6 days. Private vehicles near the procession route also banned. More than 6,000 water sprinkles installed. Several other medical and surveillance arrangements are also in place. Iran has further commemorated its fallen supreme leader with a new monument in central Tehran. Titled The Clenched Fist, it features Khamenei's raised fist flanked by two missiles. With 20 million people expected to attend Ali Khamenei's funeral, this moment could be a powerful display of unity and strength amid the ongoing war in the region, which has been paused due to the funeral. Bureau Report, NDTV World.
4: My colleague Nasir Masoodi joining us live from Tehran, giving us a sense of how the preparations are. Nasir, give us a sense of how the preparations are right now. Saudi has sent in a delegation. Which other Gulf nations have sent in a delegation for the state funeral of Khamenei?
11: Well, death of Ayatollah Sayyid Ali Husseini Khamenei has united Iran like never before and redefined Iran as well. Just think about how much has changed between the death and the funeral ceremony in Iran. So it also defines Iran's its own journey besides the huge stature of Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. For the last 2 days, we have seen millions of people are marching on different streets and actually paying homage to the fallen leader, to the leader who would revere and see them as a hero and inspiration. As you said, more than 100 countries have sent their representatives, including official representatives from India also, and the private political parties and private citizens. Large number of people are coming. The flight, I was coming from Muscat to Tehran today, I could see several people from India, civilians, they coming to participate in this, you know, funeral ceremony, which is historic. Perhaps in the recent memory, no such funeral ceremony has been seen by anyone. So it is something, it is a time we see large number of people coming, millions of millions, and this funeral ceremony is going for several days, for a week, and across ISTs in two countries, both in Iran and in Iraq, in Karbala and Najaf, two holy cities. So it clearly shows the stature of Ayatollah Khamenei. It shows the loyalty he has. It shows how after 4 months of his death and the bombing that was sought to decimate Iran has actually done the reverse. It has a united Iran. It has shown the public resolve. It has buried the old differences. It has made Iran more stronger than ever before. And Iran, when they are actually mourning and actually holding these celebrations, these ceremonies, funeral ceremonies, we see everybody, men, women, and children. And importantly, number of women is much, much higher in every place, which also shows the women's participation in daily lives. And what is the perception about Iran, women's safety, women's freedom? We have seen here on the ground, at least, whether somebody wear hijab or not, nobody cares. But what is one thing, whether somebody is with hijab or without, they have one resolve, that is the loyalty towards leader that is seen everywhere in Tehran and other parts of the Iran. As I said, this is death has united Iran. His death has given them a resolve. And when we see journey between his death and his funeral, last rites, it is really phenomenal. If no human being can say this or he may have witnessed that a person who died and when he is buried or when his funeral rites, I think so much has changed and so much has been achieved by the country. So that's why Iran is saying they have won this war and they are showing their collective resolve with millions of the people and, on the road.
4: And you rightly
11: paying
4: say
11: homage
4: that
11: to their dear leader.
4: And his era defined the Islamic regime in Iran, and especially after the death of Ayatollah Khamenei and the manner in which he ruled Iran. One thing I agree with you, Nazir, when you said that about 60% of women actually make up at the Tehran University, so quite contrary to the popular perception that exists. Thank you. Thank you, Nazir, for joining us on the broadcast and getting us all those details. My colleague reporting from Tehran. We're stepping into a very short break. News and updates continue on the other side.
12: जिमी हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
13: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
14: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
15: अरे मेरे राजा,
16: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
17: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज India Inc.'s best and brightest.
18: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
19: The eminent juries who are here, and that itself speaks for the commitment towards highlighting the advantage which India is having. What I am looking for in this is that we should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth, but also on bringing good governance.
20: Be part of the jury and vote on the people, the men.

0: के बाद एक इंक्लूडिंग फिनेंस इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री उनको दे रहे थे, तब कुछ दुख नहीं हुआ। आज ममता दीदी का देने का, ममता दीदी चीफ मिनिस्टर नहीं है, ममता दीदी को देने का कुछ नहीं है, सब दुख लगने लगा और पूरा एक्सपोज हो गया। अगर दुख लगा तो बात हो सकता है, ओपोनेंट कैंप में अगर कोई जाता है तो इससे एस्टेब्लिश होता है, ये प्री प्लान था, पूरा प्रोसेस प्री प्लान था।
1: And the battle for control of the Trinamool Congress has now spilled onto the streets and right to the doors of the party's Kolkata headquarters. A dramatic showdown unfolded after the rebel faction led by leader of opposition Ritabrata Banerjee laid claim to the TMC office, triggering a fresh political flashpoint. The rebel camp insists it has every right to access the premises, claiming it now the principal opposition party in the assembly is the rebel camp, and alleging that the lease of the party office has in fact expired. Hitting out at the rebels, Mamata Banerjee says that her residence will now be the party office and her only focus is now rebuilding the party.
2: আর বেইমানি করারও তো একটা সীমা থাকা উচিত। পার্টির সাথে বেইমানি না করে যে পার্টিটা আপনাদের কাছে জন্মদাত্রী মা, আপনারা তো সরাসরি বিজেপি করছেন এখন। বিজেপি করবেন আর তৃণমূল বলবেন, এটা তো হতে পারে না, কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের আদর্শ বিজেপি বিরোধী। আমাদের একটা আদর্শ আছে, আমাদের একটা নীতি আছে। আপনারা যারা বেইমানরা গদ্দাররা বিজেপির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের কথা মতো চলছেন, বিজেপি স্পন্সার্ড যারা, তারা আমি বলবো যদি সাহস থাকে, বুকের পাটা থাকে, যান গিয়ে বিজেপি থেকে জয়েন করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তবুও বুঝবো আপনারা বিজেপিতে চলে গেছেন। বিজেপিতে থেকে দল ভাঙার চক্রান্ত ভাবেন কি যে আমি মরে গেছি? মনে রাখবেন, আপনার পক্ষে আছে বলে সরকার, আপনি তাকে দিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে কমপ্লেন করিয়ে আপনি সিম্বল কেড়ে নিতে পারেন। যদিও আমরা জানি সিম্বল আপনার পক্ষে যাবে না, কিন্তু ধরে নিলাম যদি ভ্যানিশ কুমার বাবু আমাদের পার্টিকে ফিনিশ করার জন্য ইলেকশনটাও করেছেন, যদি সিম্বল দিয়েও দেয় তাতে কি যায় আসে? সিম্বল সেটাই হয় যেটা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে, তৃণমূল কংগ্রেসরা গ্রহণ করে। গলায় সিম্বলটা ঝুলিয়ে মানুষের কাছে যখন বেরোব, আপনারা কি আমার কণ্ঠরোধ করতে পারবেন?
3: তো হামলোক তৃণমূল কংগ্রেস কা অফিস মে গয়ে থে আর যাকে ওয়াহা পে হামলোক ব্যাঠে, তো ইস পে কোই ক্যা আরোপ লাগা রাহা হ্যায় উস পে ধ্যান হামলোক নেহি দেঙ্গে। হামলোগো কো বিধানসভা মে প্রিন্সিপাল অপোজিশন কা স্বীকৃতি মিল চুকা হ্যায়, উধার কা জো মালিক হ্যায় ও অলরেডি চিঠি দে চুকা হ্যায় কি জো লিজ থা ও ওভার হো চুকা হ্যায়, তব ভি ও লোক জবরদস্তি তো ও লোক ব্যাঠে হুয়ে হ্যায়। ক্যা এফআইআর ক্যা, কিস কারণ সে এফআইআর? খুদ দখল করকে ব্যাঠে হুয়ে হ্যায়। আর হামলোক জো তৃণমূল কংগ্রেস হ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেস কা জো আইডিওলজি হ্যায় উসকো হামলোক পকড়কে রাখনা চাহতে হ্যায়, আর হামি লোক কে উপর বোল রা উল্টা চোর কোতওয়াল কো ডাঁটে।
4: তৃণমূল কংগ্রেস কি ওয়ার্কার লোগো কো উপর নির্যাতন চল রা হ্যায়, বিজেপি কা গুন্ডাই চল রা হ্যায়, বড়া বড়া আচ্ছা আচ্ছা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী আপনা ঘর মে যা নেই সকতে হ্যায়। উসি টাইম তৃণমূল কংগ্রেস কি একটা গ্রুপ কো বচানে কে লিয়ে 15 মিনিট কা অন্দর সেন্ট্রাল ফোর্স আ গিয়া হ্যায়। ইসি সে ইয়ে সাবিত হো জাতা হ্যায়, ये लोग बीजेपी का गोद में बैठकर बीजेपी का बी टीम होके काम कर रहे हैं।
5: ये टीएमसी का अंदरूनी मामला है, कौन नेता, कौन कब्जा करेगा ऑफिस, कौन विधानसभा में बैठेगा, कहाँ बैठेगा, ये तो माननीय स्पीकर विधानसभा में और बाहर कानून ठीक करेगा। लेकिन ये जो हो रही है ये नहीं होना चाहिए। जनता ने उनको मैंडेट दिया विपक्ष में बैठने के लिए, 15 साल सत्ता में रह के आदत खराब हो गया है, लड़ाई करने की इच्छा नहीं है, सुविधा में रहने का आदत है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा भूमिका होता है। हम चाहते हैं कि टीएमसी वो भूमिका का वादा करे, सरकार को दिशा दे, साथ दे करके सही रास्ता दिखाए कि जनता को सही में सुशासन मिले। वो काम नहीं कर पाएंगे तो जनता आगे भी सोचेगा।
6: ममता बनर्जी सपोर्टर्स दे वेंट टू द ऑफिस, they wanted to break the lock but police prevented them from doing so. Police said that you can't touch their lock. So this is an effort made by so-called dissident TMC MLAs in support of the BJP.
1: And the SIT probe into the alleged Ram Temple donation theft is intensifying, with investigators tracking what sources describe as a larger money trail. Investigators also took accused Avinash Shukla to a yoga center where documents were examined and a fresh search was conducted. The row has taken a political turn, with Akhilesh Yadav stating that an AI-generated video of Lord Ram, and he shared this video. In this video, Lord Ram is leaving Ayodhya and asking, have they gone into an exile again? Apparent jibe at the BJP.
7: इस वक्त मैं कौशलपुरी इलाके में उस योगा सेंटर में हूं जहां अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस आई थी, और यहां पर वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा कैश बरामद हुआ था। तो अविनाश शुक्ला को पुलिस यहां पर लेकर आई थी, और ये जो बक्से रखे हैं इनकी एक बार फिर से तलाशी हुई थी, और इन बक्सों में हालांकि कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला, कोई कैश नहीं मिला। जो कैश 20 लाख रुपए पहले मिला था और साथ में 1100 अमेरिकी डॉलर और कुछ गहने बरामद हुए थे, उसके बाद कल की तलाशी में पुलिस को यहां से कुछ नहीं मिला है। पुलिस ने यहां पर रखे जो तमाम आधार कार्ड हैं, जो कागजात हैं वो देखे, और इन बक्सों को एक बार फिर से खोला, और पूरी तलाशी के बाद पुलिस यहां से निकल गई। देखिए कि बक्से में किस तरह से कम्बल और कपड़े रखे हुए हैं, और इन्हीं कम्बलों के बीच में, कपड़ों के बीच में कैश को छुपाकर रखा गया था। तो पुलिस ने इन बक्सों की तलाशी ली, और ये जो बक्सा है जो हमने पहले दिखाया था, जिस पर रामराज कोच लिखा हुआ है, हालांकि इस बक्से में ताला बंद है, लेकिन ये बक्सा फिलहाल यहीं पर रखा हुआ है। इस बक्से का ताला नहीं खोला गया है कि बक्से के अंदर क्या है, तो ये बक्सा यहीं पर रखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों को पुलिस ने बड़ी बारीकी से देखा। ये तमाम जो दस्तावेज हैं, ये दस्तावेज पुलिस ने बहुत बारीकी से देखे, और पुलिस ने काफ़ी लंबी यहाँ पर पूछताछ की, जाँच की, और पुलिस उसके बाद यहाँ से निकल गई। तो ये सारे दस्तावेज अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक के हैं, जो दोनों यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर जो केयर टेकर उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका?
8: हमारा सुंदरलाल नाम
7: है। कैश यहीं से बरामद हुआ था 5 जून को ना?
8: हाँ, वो तो कैश बरामद हुआ, वो तो बाद में न्यूज में निकला है, तब हमको भी जानकारी हुई कि कैश यहाँ से बरामद हुआ है।
9: अयोध्या में चंदा चोरी मामले में तमाम बरामदगी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। ये राम जन्मभूमि थाना है, और इस राम जन्मभूमि थाने में खड़ी इस ब्रिजा कार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जरा इस ब्रिजा कार को देखिए। ये ब्रिजा कार जिसका नंबर है UP42AP6054, दरअसल ये ब्रिजा कार अविनाश की है। उसकी निशानदेही पर पुलिस की तरफ से बरामद की गई कार है ये, और चंदा चोरी के पैसे से ये कार खरीदी गई थी। ये कार जो है, पूछताछ में पता चला पुलिस को कि अविनाश की तरफ से बताया गया कि ये कार जो चंदे चोरी का पैसा था उससे खरीदी गई। देखिए, कार काफ़ी नई दिखाई दे रही है, कुछ समय पहले ही खरीदी गई है। तमाम तरीके के आरोपों के बीच में इस कार को पुलिस ने बरामद किया है। इस कार को इस समय चौकी में लाकर रखा गया है। तस्वीरें हम आपको कार की दिखा रहे हैं। ये देखिए, पीछे की तरफ से इसका नंबर प्लेट हटा हुआ है, और पुलिस देखिए पीछे गाड़ी की स्थिति बता रही है कि काफ़ी नई ये कार है। यह कार नगर कोतवाली क्षेत्र के ही एक सड़क पर खड़ी थी, और जब पूछताछ हुआ और इसके बाद जब निशानदेही की गई अविनाश की तरफ से, तो पुलिस ने रिमांड में लेकर तमाम खुलासे किए और इस कार को भी बरामद किया, जो कार अब लाकर यहाँ पर राम जन्मभूमि का जो थाना है वहाँ पर रख दी गई है। तो चंदा चोरी से जुड़ी हुई तमाम जो संपत्तियाँ हैं, पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है। चोरी से बनाई गई संपत्तियों को आइडेंटिफाई कर रही है, जब्त कर रही है, जिसके जरिए जो चोरी से धन निकाला गया है उसकी उगाही पुलिस आगे चलकर करेगी।
10: आजकल कुछ नकली राम भक्त अपने को सनातनी कह रहे हैं, जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि गुंबज पर तो चढ़ गए, उतर नहीं पाएंगे, गोलियों से भूंज दिया गया, चाहे मियां मुलायम क्यों न कहे, आज वो सबसे बड़े सनातनी बन रहे हैं। जो घटना घटी है चोरी का, वो हिंदू समाज आहत है, इसमें कहीं दो मत नहीं, और वहां की सरकार तत्पर है, और दूध का दूध पानी का पानी करके रखेंगे।
11: देश में गुस्सा

0: है इस तरह की घटना को लेकर के, जो भगवान राम के भक्त लोग हैं उनको ठेस पहुंची है, इसमें तो दम है उस बात में। सरकार की तरफ से जो ट्रस्ट ने डिमांड रखी तो एसआईटी गठित हो गई। प्रथम दृष्टया एसआईटी ने 8 लोगों के खिलाफ जांच में दोषी पाया, 8 लोगों को जेल भेज दिया।
1: अभी आंदोलन करने जा रहे हैं, फिर एक बार जो राम जन्मभूमि का आंदोलन है वैसे ही छेड़ा जाएगा, क्योंकि ये सारे हिंदुओं की भावना का अपमान है कि भाजपा ने दान पेटी से पैसा को चुराया है और आज सांसदों को उसी पैसे से खरीदना चाहते हैं। तो गांव में जाके हम राम रक्षा आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि राम लल्ला का जो आंदोलन है वो राम लल्ला का रक्षण भाजपा से करे, भाजपा की लुटेरों से करे।
2: And the alleged embezzlement of donations at the Ram Temple in Ayodhya has now triggered a political war of words. Breaking his silence, RSS General Secretary Dattatreya Hosable described the alleged theft as deeply hurtful to the sentiments of devotees of Ram and appealed for patience and restraint. Hosable backed the special investigation team constituted by UP government, saying that those found guilty must face punishment, while urging people not to allow anti-Hindu and anti-national forces to exploit the incident. The Congress, however, has hit back. State Congress Chief Ajay Rai accused RSS of waking up too late, saying statements alone are not enough and demanding strict action and accountability.
3: जान गया और तमाम संगठन आपस में बैठ करके इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के बात कही जा रही है। तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।
4: तो राम मंदिर কত টাকা দিয়ে মানুষ বানালেন, কত সোনা, কত রূপো, কত দান, কত ধ্যান, আর আজকে রাম কার নাম আপনি বদনাম কর দিয়া, হিন্দুত্ব কার নাম পে খেলা আর হিন্দু ইজম কো আপনি ফিনিশ কিয়া। যেমন দেখছেন না, পুনামি থালা থেকে শুরু করে, পুনামি বাক্স থেকে শুরু করে সব রাম মন্দির সবটাই নাকি ওদের সম্পদ। এবং ডিজিটালে যারা কথা বলতে চায় ইউটিউবে, একটু বিরোধিতা করলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে এবং এফআইআর করা হচ্ছে।
5: শ্রী দত্তাত্রেয় হোসওয়ালে জি নে জো কাহা হ্যা ওহি ইস দেশ কে লাখো করোড়ো স্বয়ং সেবকো কে করোড়ো করোড় দেশবাসিও কি আওয়াজ থি है और रहेगी। दूसरी बात, देश के राजनेताओं ने इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
6: इतने दिन बीत जाने के बाद अब ये कुंभकर्णी नींद से उठे हैं ये लोग। आप सोच सकते हैं कि जो आज इतना पुराना प्रकरण हो गया है, सारा चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जमीन में घोटाला, सब लगातार बोल रहे हैं, संघ उसमें नहीं जागा, उसमें संघों को नहीं लगता था कि ये क्या हो रहा है। अब जब लगा, गांव गांव में, घर घर में चर्चा हो गई कि चढ़ावा चोर हैं ये लोग, तब ये बयान जारी कर रहे हैं, तभी वीडियो जारी कर रहे हैं। कार्रवाई कराइए, वीडियो से बयान से नहीं होगा। जो आज बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं दत्तात्रेय हसबोले, कार्रवाई करें और उनको जेल भेजें, चाहे वो चंपत राय बंसल हों, अनिल मिश्रा हों, गोविंद गिरी हों, चाहे गोपाल राव हों, क्योंकि जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता ये कह रही है। अयोध्या वासी कह रहे हैं, मैं अभी 2 दिन पहले दर्शन करने गया था, उसमें भी ये लोग व्यवधान डाल रहे थे कि दर्शन न करने दिया जाए।
2: And after the Ram temple donation theft trial exploded, another major temple finances are now under the scanner. The Badrinath Kedarnath temple committee has ordered an inquiry into allegations of misuse of donations at the temple. The move comes after claims of financial irregularities in the handling of temple funds surface. The committee says show cause notices have already been issued to those allegedly involved and the people who were involved in the finances in the donation counting process. An inquiry committee has been constituted to investigate. The chairman of the BKTC, Hemant Dwivedi, has assured that probe report will be made public. He's warned that anybody found guilty will face strict action.
7: सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम जो दान है चढ़ावे के कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी गण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, सो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी।
8: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
9: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
10: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
11: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
12: I think it's heartening to see talent that there is in across India Inc.
13: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
14: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
15: For us, the biggest thing is trust. That's what we provide.
16: We need leaders in India that can help take India being a global superpower.
17: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
10: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
18: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
19: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
20: High rate, check the audio.
18: Let's do it. Let's start.
21: Breaking story, we're jumping straight into it.
18: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
22: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
18: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs.
2: Iran has begun an elaborate farewell for its fallen former supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. With millions expected to take part in the world leaders arriving in Tehran, the funeral has become one of the largest state ceremonies in the country's history. In a surprise turn of events, Saudi has sent a delegation for Khamenei's state funeral. A full report.
23: Thousands gathered across Tehran to mourn Ayatollah Khamenei. On the first day of the national mourning, black-clad mourners, alongside foreign dignitaries, paid their final respects. Dignitaries from around the globe are also in attendance. However, what has caught eyes across the world is a surprise attendee. Saudi Arabia has sent a special delegation accompanied by their deputy foreign minister to Iran to pay respect to the late supreme leader. The slain supreme leader of the Islamic regime was also hailed as a symbol of resistance.
24: آزادگی، عدالت طلبی، استقلال و عزت و سربلندی که برای همه مسلمان ها در حقیقت به ارمغان آورد. تقریبا تو دنیا کشوری نیست که آمریکا بخواد براشون.
23: With the final procession underway, Iran expects more than 10 million mourners and delegations from over 100 countries. The six-day procession

0: और जाके वहाँ पे हम लोग बैठे। तो इस पर कोई क्या आरोप लगा रहा है उस पर ध्यान हम लोग नहीं देंगे। हम लोगों को विधानसभा में प्रिंसिपल ऑपोजिशन का स्वीकृति मिल चुका है, उधर का जो मालिक है वो ऑलरेडी चिट्ठी दे चुका है कि जो लीज था वो ओवर हो चुका है, तब भी वो लोग जबरदस्ती, तो वो लोग बैठे हुए हैं। क्या FIR, क्या किस कारण से FIR, खुद दखल करके बैठे हुए हैं। और हम लोग जो तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है उसको हम लोग पकड़ के रखना चाहते हैं, और हम ही लोग के ऊपर बोल रहे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
1: तृणमूल कांग्रेस की वर्कर लोगों को ऊपर निर्यातन चल रहा है, बीजेपी का गुंडाई चल रहा है, बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा तृणमूल कांग्रेस कर्मी अपना घर में जा नहीं सकते हैं। उसी टाइम तृणमूल कांग्रेस की एक तो ग्रुप को बचाने के लिए 15 मिनट के अंदर सेंट्रल फोर्स आ गया है। इसी से ये साबित हो जाता है ये लोग बीजेपी का गोद में बैठकर बीजेपी का बी टीम होके काम कर रहे हैं।
2: टीएमसी का अंदरूनी मामला है, कौन नेता, कौन कब्जा करेगा ऑफिस, कौन विधानसभा में बैठेगा, कहाँ बैठेगा, ये तो माननीय स्पीकर विधानसभा में और बाहर कानून ठीक करेगा। लेकिन ये जो हो रही है ये नहीं होना चाहिए। जनता ने उनको मैंडेट दिया विपक्ष में बैठने के लिए, 15 साल सत्ता में रह के आदत खराब हो गया है, लड़ाई करने की इच्छा नहीं है, सुविधा में रहने का आदत है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा भूमिका होता है। हम चाहते हैं कि TMC वो भूमिका का वादा करे, सरकार को दिशा दे, साथ दे करके सही रास्ता दिखाए कि जनता को सही में सुशासन मिले। वो काम नहीं कर पाएंगे तो जनता आगे भी सोचेगा।
3: ममता बनर्जी सपोर्टर्स दे वेंट टू द ऑफिस, दे वांटेड टू ब्रेक द लॉ बट पुलिस प्रिवेंटेड देम फ्रॉम डूइंग सो। Police said that you can't touch their lock. So this is an effort made by so-called dissident TMC MLAs in support of the BJP.
4: And the SIT probe into the alleged Ram Temple donation theft is intensifying, with investigators tracking what sources describe as a larger money trail. Investigators also took accused Avinash Shukla to a yoga center where documents were examined and a fresh search was conducted. The row has taken a political turn, with Akhilesh Yadav stating that an AI-generated video of Lord Ram, and he shared this video. In this video, Lord Ram is leaving Ayodhya and asking, have they gone into an exile again? Apparent jibe at the BJP.
5: इस वक्त मैं कौशलपुरी इलाके में उस योगा सेंटर में हूं जहां अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस आई थी, और यहां पर वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा कैश बरामद हुआ था। तो अविनाश शुक्ला को पुलिस यहां पर लेकर आई थी, और ये जो बक्से रखे हैं इनकी एक बार फिर से तलाशी हुई थी, और इन बक्सों में हालांकि कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला, कोई कैश नहीं मिला। जो कैश 20 लाख रुपए पहले मिला था और साथ में 1100 अमेरिकी डॉलर और कुछ गहने बरामद हुए थे, उसके बाद कल की तलाशी में पुलिस को यहाँ से कुछ नहीं मिला है। पुलिस ने यहाँ पर रखे जो तमाम आधार कार्ड हैं, जो कागजात हैं वो देखे, और इन बक्सों को एक बार फिर से खोला, और पूरी तलाशी के बाद पुलिस यहां से निकल गई। देखिए कि बक्से में किस तरह से कम्बल और कपड़े रखे हुए हैं, और इन्हीं कम्बलों के बीच में, कपड़ों के बीच में कैश को छुपाकर रखा गया था। तो पुलिस ने इन बक्सों की तलाशी ली, और ये जो बक्सा है जो हमने पहले दिखाया था जिस पर रामराज कोच लिखा हुआ है, हालांकि इस बक्से में ताला बंद है, लेकिन ये बक्सा फिलहाल यहीं पर रखा हुआ है। इस बक्से का ताला नहीं खोला गया है कि बक्से के अंदर क्या है, तो ये बक्सा यहीं पर रखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों को पुलिस ने बड़ी बारीकी से देखा, ये तमाम जो दस्तावेज हैं ये दस्तावेज पुलिस ने बहुत बारीकी से देखे, और पुलिस ने काफ़ी लंबी यहाँ पर पूछताछ की, जाँच की, और पुलिस उसके बाद यहाँ से निकल गई। तो ये सारे दस्तावेज अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक के हैं, जो दोनों यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर जो केयर टेकर उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका?
6: हमारा सुंदरलाल नाम है।
5: कैश यहीं से बरामद हुआ था 5 जून को ना?
6: हाँ, वो तो कैश बरामद हुआ, वो तो बाद में न्यूज में निकला है, तब हमको भी जानकारी हुई कि कैश यहाँ से बरामद।

0: अयोध्या में चंदा चोरी मामले में तमाम बरामदगी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। ये राम जन्मभूमि थाना है और इस राम जन्मभूमि थाने में खड़ी इस ब्रिजा कार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जरा इस ब्रिजा कार को देखिए। ये ब्रिजा कार जिसका नंबर है UP42AP6054। दरअसल ये ब्रिजा कार अविनाश की है। उसकी निशानदेही पर पुलिस की तरफ से बरामद की गई कार है ये, और चंदा चोरी के पैसे से ये कार खरीदी गई थी। ये कार जो है, पूछताछ में पता चला पुलिस को कि अविनाश की तरफ से बताया गया कि ये कार जो चंदे चोरी का पैसा था उससे खरीदी गई। देखिए, कार काफ़ी नई दिखाई दे रही है, कुछ समय पहले ही खरीदी गई है। तमाम तरीके के आरोपों के बीच में इस कार को पुलिस ने बरामद किया है। इस कार को इस समय चौकी में लाकर रखा गया है। तस्वीरें हम आपको कार की दिखा रहे हैं। ये देखिए, पीछे की तरफ से इसका नंबर प्लेट हटा हुआ है और पुलिस देखिए पीछे गाड़ी की स्थिति बता रही है कि काफ़ी नई ये कार है। यह कार नगर कोतवाली क्षेत्र के ही एक सड़क पर खड़ी थी और जब पूछताछ हुआ और इसके बाद जब निशानदेही की गई अविनाश की तरफ से, तो पुलिस ने रिमांड में लेकर तमाम खुलासे किए और इस कार को भी बरामद किया, जो कार अब लाकर यहाँ पर राम जन्मभूमि का जो थाना है वहाँ पर रख दी गई है। तो चंदा चोरी से जुड़ी हुई तमाम जो संपत्तियाँ हैं, पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है। चोरी से बनाई गई संपत्तियों को आइडेंटिफाई कर रही है, जब्त कर रही है, जिसके जरिए जो चोरी से धन निकाला गया है उसकी उगाही पुलिस आगे चलकर करेगी।
1: आजकल कुछ नकली राम भक्त अपने को सनातनी कह रहे हैं, जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि गुंबज पर तो चढ़ गए, उतर नहीं पाएंगे, गोलियों से भूंज दिया गया, चाहे मियां मुलायम क्यों न कहे, आज वो सबसे बड़े सनातनी बन रहे हैं। जो घटना घटी है चोरी का, वो हिंदू समाज आहत है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और वहाँ की सरकार तत्पर है और दूध का दूध पानी का पानी करके रखेंगे।
2: देश में गुस्सा है इस तरह की घटना को लेकर के, जो भगवान राम के भक्त लोग हैं उनको ठेस पहुंची है, इसमें तो दम है। इस बात में सरकार की तरफ से जो ट्रस्ट ने डिमांड रखी तो SIT गठित हो गई। प्रथम दृष्टया SIT ने 8 लोगों के खिलाफ जांच में दोषी पाया, 8 लोगों को जेल भेज दिया।
3: अभी आंदोलन करने जा रहे, फिर एक बार जो राम जन्मभूमि का आंदोलन है वैसे ही छेड़ा जाएगा, क्योंकि ये सारे हिंदुओं की भावना का अपमान है कि भाजपा ने दान पेटी से पैसा को चुराया है और आज सांसदों को उसी पैसे से खरीदना चाहते हैं। तो गांव में जाके हम राम रक्षा आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि राम लल्ला का जो आंदोलन है वो राम लल्ला का रक्षण भाजपा से करे, भाजपा की लुटेरों से करे।
4: And the alleged embezzlement of donations at the Ram Temple in Ayodhya has now triggered a political war of words. Breaking his silence, RSS General Secretary Dattatreya Hosable described the alleged theft as deeply hurtful to the sentiments of devotees of Ram and appealed for patience and restraint. Hosable backed the special investigation team constituted by UP government, saying that those found guilty must face punishment, while urging people not to allow anti-Hindu and anti-national forces to explode.

0: avoid the incident. The Congress, however, has hit back. State Congress Chief Ajay Rai accused RSS of waking up too late, saying statements.
1: इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के बात कही जा रही है, तो अब तो जनता जान गई आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।
2: राम मंदिर কত টাকা দিয়ে মানুষ বানালেন, কত সোনা, কত রূপো, কত

0: श्री दत्तात्रेय होसवेले जी ने जो कहा है वही इस देश के लाखों करोड़ों स्वयं सेवकों की, करोड़ों करोड़ देशवासियों की आवाज थी, है और रहेगी। दूसरी बात, देश के राजनेताओं ने इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
1: इतने दिन बीत जाने के बाद अब ये कुंभकर्णी नींद से उठे हैं ये लोग। आप सोच सकते हैं कि जो आज इतना पुराना प्रकरण हो गया है, सारा चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जमीन में घोटाला, सब लगातार बोल रहे हैं, संघ उसमें नहीं जागा? उसमें संघों को नहीं लगता था कि ये क्या हो रहा है? अब जब लगा, गांव गांव में, घर घर में चर्चा हो गई कि चढ़ावा चोर हैं ये लोग, तब ये बयान जारी कर रहे हैं, तभी वीडियो जारी कर रहे हैं। कार्रवाई कराइए, वीडियो से बयान से नहीं होगा। जो आज बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं दत्तात्रेय हसबोले, कार्रवाई करें और उनको जेल भेजें, चाहे वो चंपत राय बंसल हों, अनिल मिश्रा हों, गोविंद गिरी हों, चाहे गोपाल राव हों, क्योंकि जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता ये कह रही है। अयोध्या वासी कह रहे हैं, मैं अभी दो दिन पहले दर्शन करने गया था, उसमें भी ये लोग व्यवधान डाल रहे थे कि दर्शन न करने दिया जाए।
2: And after the Ram Temple donation theft trial exploded, another major temple finances are now under the scanner. The Badrinath Kedarnath Temple Committee has ordered an inquiry into allegations of misuse of donations at the temple. The move comes after claims of financial irregularities in the handling of temple funds surface. The committee says show cause notices have already been issued to those allegedly involved and the people who were involved in the finances in the donation counting process. An inquiry committee has been constituted to investigate. The chairman of the BKTC, Hemant Dwivedi, has assured that probe report will be made public. He's warned that anybody found guilty will face strict action.
3: सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है और चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी।

0: হাতও বাড়িয়েছেন, সাহায্যের হাতও নাড়িয়েছেন। আমি কিন্তু সবটাই জানি, হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট বোর্ড থেকে দীঘা ডেভেলপমেন্ট বোর্ড সবটাই তো।
1: যাহা পর বিশ্বাস নেই হ্যাঁ, যাহা পর কনফিডেন্স নেই হ্যাঁ, যাহা পর আগর কাম করনা হ্যায় তো ও কাম ঠিক সে নেই হো পাতা, ইসলিয়ে হমনে ও ইয়ে রেজিগনেশন দিয়ে।
2: চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য হামারা রেসপেক্টেড দিদি থা, আপ দেখিয়ে উনকা ও তো উনকা লড়কা আগে পহলেই উস ক্যাম্প মে চলা গিয়া থা। চন্দ্রিমা জি কাল জব পার্টি অফিস মে বেঠে হুয়ে থে তো ও লোক আয়া, চন্দ্রিমা জি থোড়া 15 মিনিট 20 মিনিট আধা ঘন্টা আগার ওহা পর রহে যেতে তো এসা ইয়ে তালামালা নেই হোতা, ও ছোড় কে চলা গয়া বিইং প্রেসিডেন্ট। আর চন্দ্রিমা জি মমতা দিদি জব চিফ মিনিস্টার থে, সবসে জাদা মিনিস্ট্রি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে হাত মে থা। তো আপ দেখিয়ে জব দিদি এক কে বাদ এক ইনক্লুডিং ফিনান্স ইম্পর্টেন্ট মিনিস্ট্রি উনকো দে রহে থে তব কুছ দুঃখ নেই হুয়া। আজ মমতা দিদি কা দেনে কা, মমতা দিদি চিফ মিনিস্টার নেই হ্যায়, মমতা দিদি কো দেনে কা কুছ নেই হ্যায়, সব দুঃখ লাগনে লাগা আর পুরো এক্সপোজড হো গেয়া। আগর দুঃখ লাগা তো বাত হো সকতা হ্যায়, অপোনেন্ট ক্যাম্প মে আগর কোই জাতা হ্যায় তো ইসসে এস্টাবলিশড হোতা হ্যায়, ইয়ে প্রি প্ল্যান্ড থা, পুরা প্রসেস প্রি প্ল্যান্ড থা।
3: And the battle for control of the Trinamool Congress has now spilled onto the streets and right to the doors of the party's Kolkata headquarters. A dramatic showdown unfolded after the rebel faction led by leader of opposition Ritabrata Banerjee laid claim to the TMC office, triggering a fresh political flashpoint. The rebel camp insists it has every right to access the premises, claiming it now the principal opposition party in the assembly is the rebel camp, and alleging that the lease of the party office has in fact expired. Hearing out at the rebels, Mamata Banerjee says that her residence will now be the party office and her only focus is now rebuilding the party.
0: আর বেইমানি করারও তো একটা সীমা থাকা উচিত। পার্টির সাথে বেইমানি না করে যে পার্টিটা আপনাদের কাছে জন্মদাত্রী মা, আপনারা তো সরাসরি বিজেপি করছেন এখন, বিজেপি করবেন আর তৃণমূল বলবেন, এটা তো হতে পারে না, কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের আদর্শ বিজেপি বিরোধী। আমাদের একটা আদর্শ আছে, আমাদের একটা নীতি আছে, আপনারা যারা বেইমানরা গদ্দাররা বিজেপির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের কথা মতো চলছেন, বিজেপি স্পন্সার্ড যারা, তারা আমি বলবো যদি সাহস থাকে, বুকের পাটা থাকে, যান গিয়ে বিজেপিতে গিয়ে জয়েন করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তবুও বুঝবো আপনারা বিজেপিতে চলে গেছেন, বিজেপিতে থেকে দল ভাঙার চক্রান্ত ভাবেন কি যে আমি মরে গেছি? মনে রাখবেন আপনার পক্ষে আছে বলে সরকার, আপনি তাকে দিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে কমপ্লেন করিয়ে আপনি সিম্বল কেড়ে নিতে পারেন, যদিও আমরা জানি সিম্বল আপনার পক্ষে যাবে না, কিন্তু ধরে নিলাম যদি ভ্যানিশ কুমার বাবু আমাদের পার্টিকে ফিনিশ করার জন্য ইলেকশনটাও করেছেন, যদি সিম্বল দিয়েও দেয় তাতে কি যায় আসে? সিম্বল সেটাই হয় যেটা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে, তৃণমূল কংগ্রেসরা গ্রহণ করে, গলায় সিম্বলটা ঝুলিয়ে মানুষের কাছে যখন বেরোবো আপনারা কি আমার কণ্ঠরোধ করতে পারবেন?
4: তো হাম লোক তৃণমূল কংগ্রেস কা অফিস মে গয়ে থে আর যাকে ওহা পে হাম লোক বেঠে, তো ইস পে কোই ক্যা আরোপ লাগা রাহা হ্যায় উস পে ধ্যান হাম লোক নেহি দেঙ্গে। হাম লোগো কো বিধানসভা মে প্রিন্সিপাল অপোজিশন কা স্বীকৃতি মিল চুকা হ্যায়, উধার কা জো মালিক হ্যায় ও অলরেডি চিঠি দে চুকা হ্যায় কি জো লিজ থা ও ওভার হো চুকা হ্যায়, তব ভি ও লোক জবরদস্তি তো ও লোক বেঠে হুয়ে হ্যায়। ক্যা এফআইআর ক্যা কিস কারণ সে এফআইআর, খুদ দখল করকে বেঠে হুয়ে হ্যায়। আর হাম লোক জো তৃণমূল কংগ্রেস হ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেস কা জো আইডিওলজি হ্যায় উসকো হাম লোক পকড় কে রাখনা চাহতে হ্যায়, আর হামি লোককে উপর বল রা উল্টা চোর কোতওয়াল কো ডাটে।
5: তৃণমূল কংগ্রেস কি ওয়ার্কার লোগো কো উপর উপর উপর নির্যাতন চল রহা হ্যায়, বিজেপি কা গুন্ডাই চল রহা হ্যায়, বড়া বড়া আচ্ছা আচ্ছা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী আপনা ঘর মে যা নেই সকতে হ্যায়, উসি টাইম তৃণমূল কংগ্রেস কি একটো গ্রুপ কো বচানে কে লিয়ে 15 মিনিট কা অন্দর সেন্ট্রাল ফোর্স আ গিয়া হ্যায়, ইসি সে ইয়ে সাবিত হো জাতা হ্যায়, ইয়ে লোক বিজেপি কা গোদ মে বৈঠ কর बीजेपी का बी टीम होके काम कर रहे हैं।
6: टीएमसी का अंदरूनी मामला है, कौन नेता, कौन कब्जा करेगा ऑफिस, कौन विधानसभा में बैठेगा, कहाँ बैठेगा, ये तो माननीय स्पीकर विधानसभा में और बाहर कानून ठीक करेगा। लेकिन ये जो हो रही है ये नहीं होना चाहिए। जनता ने उनको मैंडेट दिया विपक्ष में बैठने के लिए, 15 साल सत्ता में रह के आदत खराब हो गया है, लड़ाई करने की इच्छा नहीं है, सुविधा में रहने का आदत है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा भूमिका होता है। हम चाहते हैं कि टीएमसी वो भूमिका का वादा करे, सरकार को दिशा दे, साथ दे करके सही रास्ता दिखाए कि जनता को सही में सुशासन मिले। वो काम नहीं कर पाएंगे तो जनता आगे भी सोचेगा।
7: ममता बनर्जी सपोर्टर्स दे वेंट टू द ऑफिस, दे वांटेड टू ब्रेक द लॉक बट पुलिस प्रिवेंटेड देम फ्रॉम डूइंग सो। Police said that you can't touch their lock. So this is an effort made by so-called dissident TMC MLAs in support of the BJP.
3: And the SIT probe into the alleged Ram Temple donation theft is intensifying, with investigators tracking what sources describe as a larger money trail. Investigators also took accused Avinash Shukla to a yoga center where documents were examined and a fresh search was conducted. The row has taken a political turn, with Akhilesh Yadav stating that an AI-generated video of Lord Ram, and he shared this video. In this video, Lord Ram is leaving Ayodhya and asking, have they gone into an exile again? Apparent jibe at the BJP.
8: इस वक्त मैं कौशलपुरी इलाके में उस योगा सेंटर में हूं जहां अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस आई थी, और यहां पर वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा कैश बरामद हुआ था। तो अविनाश शुक्ला को पुलिस यहां पर लेकर आई थी, और ये जो बक्से रखे हैं इनकी एक बार फिर से तलाशी हुई थी, और इन बक्सों में हालांकि कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला, कोई कैश नहीं मिला। जो कैश 20 लाख रुपए पहले मिला था और साथ में 1100 अमेरिकी डॉलर और कुछ गहने बरामद हुए थे, उसके बाद कल की तलाशी में पुलिस को यहाँ से कुछ नहीं मिला है। पुलिस ने यहाँ पर रखे जो तमाम आधार कार्ड हैं, जो कागजात हैं वो देखे, और इन बक्सों को एक बार फिर से खोला, और पूरी तलाशी के बाद पुलिस यहां से निकल गई। देखिए कि बक्से में किस तरह से कम्बल और कपड़े रखे हुए हैं, और इन्हीं कम्बलों के बीच में, कपड़ों के बीच में कैश को छुपाकर रखा गया था। तो पुलिस ने इन बक्सों की तलाशी ली, और ये जो बक्सा है जो हमने पहले दिखाया था, जिस पर रामराज कोच लिखा हुआ है, हालांकि इस बक्से में ताला बंद है, लेकिन ये बक्सा फिलहाल यहीं पर रखा हुआ है। इस बक्से का ताला नहीं खोला गया है कि बक्से के अंदर क्या है, तो ये बक्सा यहीं पर रखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों को पुलिस ने बड़ी बारीकी से देखा। ये तमाम जो दस्तावेज हैं, ये दस्तावेज पुलिस ने बहुत बारीकी से देखे, और पुलिस ने काफ़ी लंबी यहाँ पर पूछताछ की, जाँच की, और पुलिस उसके बाद यहाँ से निकल गई। तो ये सारे दस्तावेज अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक के हैं, जो दोनों यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर जो केयर टेकर उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका?
9: हमारा सुंदरलाल नाम है।
8: कैश यहीं से बरामद हुआ था 5 जून को ना?
9: हाँ, वो तो कैश बरामद हुआ, वो तो बाद में न्यूज में निकला है, तब हमको भी जानकारी हुई कि कैश यहाँ से बरामद हुआ है।
10: अयोध्या में चंदा चोरी मामले में तमाम बरामदगी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये राम जन्मभूमि थाना है, और इस राम जन्मभूमि थाने में खड़ी इस ब्रिजा कार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जरा इस ब्रिजा कार को देखिए, ये ब्रिजा कार जिसका नंबर है UP42AP6054। दरअसल ये ब्रिजा कार अविनाश की है, उसकी निशानदेही पर पुलिस की तरफ से बरामद की गई कार है ये, और चंदा चोरी के पैसे से ये कार खरीदी गई थी। ये कार जो है, पूछताछ में पता चला पुलिस को कि अविनाश की तरफ से बताया गया कि ये कार जो चंदे चोरी का पैसा था उससे खरीदी गई। देखिए कार काफ़ी नई दिखाई दे रही है, कुछ समय पहले ही खरीदी गई है। तमाम तरीके के आरोपों के बीच में इस कार को पुलिस ने बरामद किया है। इस कार को इस समय चौकी में लाकर रखा गया है। तस्वीरें हम आपको कार की दिखा रहे हैं, ये देखिए पीछे की तरफ से इसका नंबर प्लेट हटा हुआ है और पुलिस देखिए पीछे गाड़ी की स्थिति बता रही है कि काफ़ी नई ये कार है। यह कार नगर कोतवाली क्षेत्र के ही एक सड़क पर खड़ी थी और जब पूछताछ हुआ और इसके बाद जब निशानदेही की गई अविनाश की तरफ से तो पुलिस ने रिमांड में लेकर तमाम खुलासे किए और इस कार को भी बरामद किया, जो कार अब लाकर यहाँ पर राम जन्मभूमि का जो थाना है वहाँ पर रख दी गई है। तो चंदा चोरी से जुड़ी हुई तमाम जो संपत्तियाँ हैं पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है, चोरी से बनाई गई संपत्तियों को आइडेंटिफाई कर रही है, जब्त कर रही है, जिसके जरिए जो चोरी से धन निकाला गया है उसकी उगाही पुलिस आगे चलकर करेगी।
11: आजकल कुछ नकली राम भक्त अपने को सनातनी कह रहे हैं, जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि गुंबज पर तो चढ़ गए उतर नहीं पाएंगे, गोलियों से भूंज दिया गया, चाहे मियां मुलायम क्यों न कहे, आज वो सबसे बड़े सनातनी बन रहे हैं। जो घटना घटी है चोरी का, वो हिंदू समाज आहत है, इसमें कहीं दो मत नहीं, और वहाँ की सरकार तत्पर है और दूध का दूध पानी का पानी करके रखेंगे।
12: देश में गुस्सा है इस तरह की घटना को लेकर के, जो भगवान राम के भक्त लोग हैं उनको ठेस पहुंची है, इसमें तो दम है उस बात में। सरकार की तरफ से जो ट्रस्ट ने डिमांड रखी तो SIT गठित हो गई, प्रथम दृष्टया SIT ने 8 लोगों के खिलाफ जांच में दोषी पाया, 8 लोगों को जेल भेज दिया।
13: अभी आंदोलन करने जा रहे हैं, फिर एक बार जो राम जन्मभूमि का आंदोलन है वैसे ही छेड़ा जाएगा, क्योंकि ये सारे हिंदुओं की भावना का अपमान है कि भाजपा ने दान पेटी से पैसा को चुराया है और आज सांसदों को उसी पैसे से खरीदना चाहते हैं। तो गांव में जाके हम राम रक्षा आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि राम लल्ला का जो आंदोलन है वो राम लल्ला का रक्षण भाजपा से करे, भाजपा की लुटेरों से करे।
3: And the alleged embezzlement of donations at the Ram Temple in Ayodhya has now triggered a political war of words. Breaking his silence, RSS General Secretary Dattatreya Hosable described the alleged theft as deeply hurtful to the sentiments of devotees of Ram and appealed for patience and restraint. Hosable backed the special investigation team constituted by UP government, saying that those found guilty must face punishment, while urging people not to allow anti-Hindu and anti-national forces to exploit the incident. The Congress, however, has hit back. State Congress Chief Ajay Rai accused RSS of waking up too late, saying statements alone are not enough and demanding strict action and accountability.
14: जान गया और तमाम संगठन आपस में बैठ कर के इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के बात कही जा रही है, तो अब तो जनता जान गई आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।
0: तो राम मंदिर কত টাকা দিয়ে মানুষ বানালেন, কত সোনা, কত রূপো, কত দান, কত ধ্যান, আর আজকে রাম কার নাম আপনি বদনাম কর দিয়া, হিন্দুত্ব কার নাম পে খেলা আর হিন্দু ইজম কো আপনি ফিনিশ কিয়া। যেমন দেখছেন না, পুনামি থালা থেকে শুরু করে, পুনামি বাক্স থেকে শুরু করে সব রাম মন্দির সবটাই নাকি ওদের সম্পদ। এবং ডিজিটালে যারা কথা বলতে চায় ইউটিউবে, একটু বিরোধিতা করলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে এবং FIR করা হচ্ছে।
15: শ্রী দত্তাত্রেয় হোসওয়ালে জি নে জো কাহা হ্যা ওহি ইস দেশ কে লাখো করোড়ো স্বয়ং সেবকোঁ কে করোড়ো করোড় দেশবাসিয়ো কি আওয়াজ থি है और रहेगी। दूसरी बात, देश के राजनेताओं ने इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
16: इतने दिन बीत जाने के बाद अब ये कुंभकर्णी नींद से उठे हैं ये लोग। आप सोच सकते हैं कि जो आज इतना पुराना प्रकरण हो गया है, सारा चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जमीन में घोटाला सब लगातार बोल रहे हैं। संघ उसमें नहीं जागा, उसमें संघों को नहीं लगता था कि ये क्या हो रहा है। अब जब लगा गांव गांव में घर घर में चर्चा हो गई कि चढ़ावा चोर हैं ये लोग, तब ये बयान जारी कर रहे हैं, तभी वीडियो जारी कर रहे हैं। कार्रवाई कराइए, वीडियो से बयान से नहीं होगा। जो आज बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं दत्तात्रेय हसबोले, कार्रवाई करें और उनको जेल भेजें।

0: वहाँ पर अगर काम करना है तो वो काम ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए हमने वो ये रेजिग्नेशन दिया।
1: चंद्रिमा भट्टाचार्य हमारा रिस्पेक्टेड दीदी था, आप देखिए उनका वो तो उनका लड़का पहले ही उस कैंप में चला गया था। चंद्रिमा जी कल जब पार्टी ऑफिस में बैठे हुए थे तो वो लोग आया, चंद्रिमा जी थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अगर वहाँ पर रह जाते तो ऐसा ये तालामाला नहीं होता, वो छोड़ के चला गया बीइंग प्रेसिडेंट। और चंद्रिमा जी ममता दीदी जब चीफ मिनिस्टर थे सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के हाथ में था। तो आप देखिए जब दीदी एक के बाद एक इंक्लूडिंग फिनेंस इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री उनको दे रहे थे तब कुछ दुख नहीं हुआ। आज ममता दीदी का देने का, ममता दीदी चीफ मिनिस्टर नहीं है, ममता दीदी को देने का कुछ नहीं है, सब दुख लगने लगा और पूरा एक्सपोज्ड हो गया। अगर दुख लगा तो बात हो सकता है, ओपोनेंट कैंप में अगर कोई जाता है तो इससे एस्टेब्लिश्ड होता है, ये प्री प्लान्ड था, पूरा प्रोसेस प्री प्लान्ड था।
2: And the battle for control of the Trinamool Congress has now spilled onto the streets and right to the doors of the party's Kolkata headquarters. A dramatic showdown unfolded after the rebel faction led by leader of opposition Ritabrata Banerjee laid claim to the TMC office, triggering a fresh political flashpoint. The rebel camp insists it has every right to access the premises, claiming it now the principal opposition party in the assembly is the rebel camp, and alleging that the lease of the party office has in fact expired. Hitting out at the rebels, Mamata Banerjee says that her residence will now be the party office and her only focus is now rebuilding the party.
3: আর বেইমানি করারও তো একটা সীমা থাকা উচিত। পার্টির সাথে বেইমানি না করে যে পার্টিটা আপনাদের কাছে জন্মদাত্রী মা, আপনারা তো সরাসরি বিজেপি করছেন এখন। বিজেপি করবেন আর তৃণমূল বলবেন, এটা তো হতে পারে না, কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের আদর্শ বিজেপি বিরোধী। আমাদের একটা আদর্শ আছে, আমাদের একটা নীতি আছে, আপনারা যারা বেইমানরা গদ্দাররা বিজেপির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের কথা মতো চলছেন, বিজেপি স্পন্সার্ড যারা, তারা আমি বলবো যদি সাহস থাকে বুকের পাটা থাকে যান গিয়ে বিজেপি থেকে জয়েন করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই, তবুও বুঝবো আপনারা বিজেপিতে চলে গেছেন। বিজেপিতে থেকে দল ভাঙার চক্রান্ত ভাবেন কি যে আমি মরে গেছি? মনে রাখবেন আপনার পক্ষে আছে বলে সরকার, আপনি তাকে দিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে কমপ্লেন করিয়ে আপনি সিম্বল কেড়ে নিতে পারেন, যদিও আমরা জানি সিম্বল আপনার পক্ষে যাবে না, কিন্তু ধরে নিলাম যদি ভ্যানিশ কুমার বাবু আমাদের পার্টিকে ফিনিশ করার জন্য ইলেকশনটাও করেছেন, যদি সিম্বল দিয়েও দেয় তাতে কি যায় আসে? সিম্বল সেটাই হয় যেটা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে, তৃণমূল কংগ্রেসরা গ্রহণ করে, গলায় সিম্বলটা ঝুলিয়ে মানুষের কাছে যখন বেরোবো আপনারা কি আমার কণ্ঠরোধ করতে পারবেন?
4: তো হামলোক তৃণমূল কংগ্রেস কা অফিস মে গয়ে থে আর যাকে ওয়াহাঁ পে হামলোক ব্যাঠে, তো ইস পে কোই ক্যা আরোপ লাগা রাহা হ্যায় উস পে ধ্যান হামলোক নেহি দেঙ্গে। হামলোগো কো বিধানসভা মে प्रिंसिपल ऑपोजिशन का स्वीकृति मिल चुका है, उधर का जो मालिक है वो ऑलरेडी चिट्ठी दे चुका है कि जो लीज था वो ओवर हो चुका है, तब भी वो लोग जबरदस्ती तो वो लोग बैठे हुए हैं। क्या एफआईआर, क्या किस कारण से एफआईआर, खुद दखल करके बैठे हुए हैं। और हम लोग जो तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है उसको हम लोग पकड़ के रखना चाहते हैं और हम ही लोग के ऊपर बोल रहे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
5: तृणमूल कांग्रेस की वर्कर लोगों को ऊपर निर्यातन चल रहा है, बीजेपी का गुंडाई चल रहा है, बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा तृणमूल कांग्रेस कर्मी अपना घर में जा नहीं सकते हैं। उसी टाइम तृणमूल कांग्रेस की एक तो ग्रुप को बचाने के लिए 15 मिनट का अंदर सेंट्रल फोर्स आ गया है। इसी से ये साबित हो जाता है ये लोग बीजेपी का गोद में बैठकर बीजेपी का बी टीम होके काम कर रहे हैं।
6: ये टीएमसी का अंदरूनी मामला है, कौन नेता, कौन कब्जा करेगा ऑफिस, कौन विधानसभा में बैठेगा, कहाँ बैठेगा, ये तो माननीय स्पीकर विधानसभा में और बाहर

0: कानून ठीक करेगा। लेकिन ये जो हो रही है ये नहीं होना चाहिए। जनता ने उनको मैंडेट दिया विपक्ष में बैठने के लिए, 15 साल सत्ता में रह के आदत खराब हो गया है, लड़ाई करने की इच्छा नहीं है, सुविधा में रहने का आदत है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा भूमिका होता है। हम चाहते हैं कि TMC वो भूमिका का अदा करे, सरकार को दिशा दे, साथ दे करके सही रास्ता दिखाए कि जनता को सही में सुशासन मिले। वो काम नहीं कर पाएंगे तो जनता आगे भी सोचेगा।
1: ममता बनर्जी सपोर्टर्स दे वेंट टू द ऑफिस, दे वांटेड टू ब्रेक द लॉक बट पुलिस प्रिवेंटेड देम फ्रॉम डूइंग सो। पुलिस सेड दैट यू कांट टच देयर लॉक। सो दिस इज एन एफर्ट made by so-called dissident TMC MLAs in support of the BJP.
2: And the SIT probe into the alleged Ram Temple donation theft is intensifying, with investigators tracking what sources describe as a larger money trail. Investigators also took accused Avinash Shukla to a yoga center where documents were examined and a fresh search was conducted. The row has taken a political turn, with Akhilesh Yadav stating that an AI-generated video of Lord Ram, and he shared this video. In this video, Lord Ram is leaving Ayodhya and asking, have they gone into an exile again? Apparent jibe at the BJP.
3: इस वक्त मैं कौशलपुरी इलाके में उस योगा सेंटर में हूं जहां अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस आई थी, और यहां पर वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा कैश बरामद हुआ था। तो अविनाश शुक्ला को पुलिस यहां पर लेकर आई थी, और ये जो बक्से रखे हैं इनकी एक बार फिर से तलाशी हुई थी, और इन बक्सों में हालांकि कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला, कोई कैश नहीं मिला। जो कैश 20 लाख रुपए पहले मिला था और साथ में 1100 अमेरिकी डॉलर और कुछ गहने बरामद हुए थे, उसके बाद कल की तलाशी में पुलिस को यहाँ से कुछ नहीं मिला है। पुलिस ने यहाँ पर रखे जो तमाम आधार कार्ड हैं, जो कागजात हैं वो देखे, और इन बक्सों को एक बार फिर से खोला, और पूरी तलाशी के बाद पुलिस यहां से निकल गई। देखिए कि बक्से में किस तरह से कम्बल और कपड़े रखे हुए हैं, और इन्हीं कम्बलों के बीच में, कपड़ों के बीच में कैश को छुपाकर रखा गया था। तो पुलिस ने इन बक्सों की तलाशी ली, और ये जो बक्सा है जो हमने पहले दिखाया था जिस पर रामराज कोच लिखा हुआ है, हालांकि इस बक्से में ताला बंद है, लेकिन ये बक्सा फ़िलहाल यहीं पर रखा हुआ है। इस बक्से का ताला नहीं खोला गया है कि बक्से के अंदर क्या है, तो ये बक्सा यहीं पर रखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों को पुलिस ने बड़ी बारीकी से देखा। ये तमाम जो दस्तावेज हैं, ये दस्तावेज पुलिस ने बहुत बारीकी से देखे, और पुलिस ने काफ़ी लंबी यहाँ पर पूछताछ की, जाँच की, और पुलिस उसके बाद यहाँ से निकल गई। तो ये सारे दस्तावेज अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक के हैं, जो दोनों यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर जो केयर टेकर उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका?
4: हमारा सुंदरलाल नाम है।
3: कैश यहीं से बरामद हुआ था 5 जून को ना?
4: हाँ, वो तो कैश बरामद हुआ, वो तो बाद में न्यूज में निकला है, तब हमको भी जानकारी हुई कि कैश यहाँ से बरामद हुआ है।
5: अयोध्या में चंदा चोरी मामले में तमाम बरामदगी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये राम जन्मभूमि थाना है, और इस राम जन्मभूमि थाने में खड़ी इस ब्रिजा कार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जरा इस ब्रिजा कार को देखिए, ये ब्रिजा कार जिसका नंबर है UP42AP6054, दरअसल ये ब्रिजा कार अविनाश की है, उसकी निशानदेही पर पुलिस की तरफ से बरामद की गई कार है ये, और चंदा चोरी के पैसे से ये कार खरीदी गई थी। ये कार जो है, पूछताछ में पता चला पुलिस को कि अविनाश की तरफ से बताया गया कि ये कार जो चंदे चोरी का पैसा था उससे खरीदी गई। देखिए कार काफ़ी नई दिखाई दे रही है, कुछ समय पहले ही खरीदी गई है। तमाम तरीके के आरोपों के बीच में इस कार को पुलिस ने बरामद किया है। इस कार को इस समय चौकी में लाकर रखा गया है। तस्वीरें हम आपको कार की दिखा रहे हैं। ये देखिए पीछे की तरफ से इसका नंबर प्लेट हटा हुआ है, और पुलिस देखिए पीछे गाड़ी की स्थिति बता रही है कि काफ़ी नई ये कार है। यह कार नगर कोतवाली क्षेत्र के ही एक सड़क पर खड़ी थी, और जब पूछताछ हुआ और इसके बाद जब निशानदेही की गई अविनाश की तरफ से, तो पुलिस ने रिमांड में लेकर तमाम खुलासे किए और इस कार को भी बरामद किया, जो कार अब लाकर यहाँ पर राम जन्मभूमि का जो थाना है वहाँ पर रख दी गई है। तो चंदा चोरी से जुड़ी हुई तमाम जो संपत्तियाँ हैं पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है, चोरी से बनाई गई संपत्तियों को आइडेंटिफाई कर रही है, जब्त कर रही है, जिसके जरिए जो चोरी से धन निकाला गया है उसकी उगाही पुलिस आगे चलकर करेगी।
6: आजकल कुछ नकली राम भक्त अपने को सनातनी कह रहे हैं, जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि गुंबज पर तो चढ़ गए, उतर नहीं पाएंगे, गोलियों से भूंज दिया गया, चाहे मियां मुलायम क्यों न कहे, आज वो सबसे बड़े सनातनी बन रहे हैं। जो घटना घटी है चोरी का, वो हिंदू समाज आहत है, इसमें कहीं दो मत नहीं, और वहाँ की सरकार तत्पर है और दूध का दूध पानी का पानी करके रखेंगे।
7: देश में गुस्सा है इस तरह की घटना को लेकर के, जो भगवान राम के भक्त लोग हैं उनको ठेस पहुंची है, इसमें तो दम है इस बात में। सरकार की तरफ से जो ट्रस्ट ने डिमांड रखी तो SIT गठित हो गई। प्रथम दृष्टया SIT ने 8 लोगों के खिलाफ जांच में दोषी पाया, 8 लोगों को जेल भेज दिया।
8: अभी आंदोलन करने जा रहे हैं, फिर एक बार जो राम जन्मभूमि का आंदोलन है वैसे ही छेड़ा जाएगा, क्योंकि ये सारे हिंदुओं की भावना का अपमान है कि भाजपा ने दान पेटी से पैसा को चुराया है और आज सांसदों को उसी पैसे से खरीदना चाहते हैं। तो गांव में जाके हम राम रक्षा आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि रामलल्ला का जो आंदोलन है वो रामलल्ला का रक्षण भाजपा से करे, भाजपा के लुटेरों से करे।
2: And the alleged embezzlement of donations at the Ram Temple in Ayodhya has now triggered a political war of words. Breaking his silence, RSS General Secretary Dattatreya Hosable described the alleged theft as deeply hurtful to the sentiments of devotees of Ram and appealed for patience and restraint. Hosable backed the special investigation team constituted by UP government, saying that those found guilty must face punishment, while urging people not to allow anti-Hindu and anti-national forces to exploit the incident. The Congress, however, has hit back. State Congress Chief Ajay Rai accused RSS of waking up too late, saying statements alone are not enough and demanding strict action and accountability.
9: जान गया है और तमाम संगठन आपस में बैठ कर के इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के बात कही जा रही है। तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।
10: तो राम मंदिर কত টাকা দিয়ে মানুষ বানালেন, কত সোনা, কত রূপো, কত দান, কত ধ্যান, আর আজকে রাম কা নাম আপনে বদনাম কর দিয়া, হিন্দুত্ব কা নাম পে খেলা আর হিন্দুইজম কো আপনে ফিনিশ কিয়া। যেমন দেখছেন না, পুনামি থালা থেকে শুরু করে, পুনামি বাক্স থেকে শুরু করে সব রাম মন্দির সবটাই নাকি ওদের সম্পদ। এবং ডিজিটালে যারা কথা বলতে চায় ইউটিউবে, একটু বিরোধিতা করলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে এবং FIR করা হচ্ছে।
11: শ্রী দত্তাত্রেয় হোসওয়ালে জি নে জো কাহা হ্যায় ওহী ইস দেশ কে লাখো করোড়ো স্বয়ং সেবকো কে করোড়ো করোড় দেশবাসীয় কি আওয়াজ থি है और रहेगी। दूसरी बात, देश के राजनेताओं ने इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
12: इतने दिन बीत जाने के बाद अब ये कुंभकर्णी नींद से उठे हैं ये लोग। आप सोच सकते हैं कि जो आज इतना पुराना प्रकरण हो गया है, सारा चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जमीन में घोटाला सब लगातार बोल रहे हैं, संघ उसमें नहीं जागा, उसमें संघों को नहीं लगता था कि ये क्या हो रहा है। अब जब लगा, गांव गांव में, घर घर में चर्चा हो गई कि चढ़ावा चोर हैं ये लोग, तब ये बयान जारी कर रहे हैं, तभी वीडियो जारी कर रहे हैं। कार्रवाई कराइए, वीडियो से बयान से नहीं होगा। जो आज बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं दत्तात्रेय हसबोले, कार्रवाई करें और उनको जेल भेजें, चाहे वो चंपत राय बंसल हों, अनिल मिश्रा हों, गोविंद गिरी हों, चाहे गोपाल राव हों, क्योंकि जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता ये कह रही है। अयोध्या वासी कह रहे हैं, मैं अभी 2 दिन पहले दर्शन करने गया था, उसमें भी ये लोग व्यवधान डाल रहे थे कि दर्शन न करने दिया जाए।
2: And after the Ram Temple donation theft trial exploded, another major temple finances are now under the scanner. The Badrinath Kedarnath Temple Committee has ordered an inquiry into allegations of misuse of donations at the temple. The move comes after claims of financial irregularities in the handling of temple funds surface. The committee says show cause notices have already been issued to those allegedly involved and the people who were involved in the finances in the donation counting process. An inquiry committee has been constituted to investigate. The chairman of the BKTC, Hemant Dwivedi, has assured that probe report will be made public. He's warned that anybody found guilty will face strict action.
13: सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है और चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी।
14: From the newsroom, to the studio, to the thick of political action.
15: You're watching NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of DJing. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
14: When stories have impact.
16: Padmajal Joshi, managing editor and prime time anchor.
14: Then news has influence. The buck stops here with Padmajal Joshi.
15: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding, and I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
2: Iran has begun an elaborate farewell for its fallen former supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. With millions expected to take part in the world leaders arriving in Tehran, the funeral has become one of the largest state ceremonies in the country's history. In a surprise turn of event, Saudi has sent a delegation for Khamenei's state funeral. A full report.
17: Thousands gathered across Tehran to mourn Ayatollah Khamenei. On the first day of the national mourning, black-clad mourners, alongside foreign dignitaries, paid their final respects. Dignitaries from around the globe are also in attendance. However, what has caught eyes across the world is a surprise attendee. Saudi Arabia has sent a special delegation accompanied by their deputy foreign minister to Iran to pay respect to the late supreme leader. The slain supreme leader of the Islamic regime was also hailed as a symbol of resistance. With the final procession underway, Iran expects more than 10 million mourners and delegations from over 100 countries. The six-day procession will travel through Tehran, Qom, Najaf, Karbala, and Mashhad. Ali Khamenei's coffin is put on public display at Tehran's Imam Khomeini Masala. The farewell is also taking place with stringent measures. Tehran airport will remain shut till the end of funeral public holidays declared for all 6 days. Private vehicles near the procession route also banned. more than 6,000 water sprinkles installed. Several other medical and surveillance arrangements are also in place. Iran has further commemorated its fallen supreme leader with a new monument in central Tehran. Titled The Clenched Fist, it features Khamenei's raised fist flanked by two missiles. With 20 million people expected to attend Ali Khamenei's funeral, this moment could be a powerful display of unity and strength amid the ongoing war in the region, which has been paused due to the funeral. Bureau Report, NDTV World.
2: My colleague Nasir Masoodi joining us live from Tehran, giving us a sense of how the preparations are. Nasir, give us a sense of how the preparations are right now. Saudi has sent in a delegation. Which other Gulf nations have sent in a delegation for the state funeral of Khamenei?
18: Well, death of us, Ayatollah Sayyid Ali Husseini Khamenei has united Iran like never before and redefined Iran as well. Just think about how much has changed between the death and the funeral ceremony in Iran. So it also defines Iran's its own journey besides the huge stature of Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. For the last 2 days, we have seen millions of people are marching on different streets and actually paying homage to the fallen leader, to the leader who would revere and see them as a hero and inspiration. As you said, more than 100 countries have sent their representatives, including official representatives from India also, and their private political parties and private citizens. Large number of people are coming. The flight, I was coming from Muscat to Tehran today, I could see several people from India, civilians, they coming to participate in this, you know, funeral ceremony, which is historic. Perhaps in the recent memory, no such funeral ceremony has been seen by anyone. So it is something, it is a time we see large number of people coming, millions of millions, and this funeral ceremony is going for several days, for a week, and across five cities in two countries, both in Iran and in Iraq, in Karbala and Najaf, two holy cities. So it clearly shows the stature of Ayatollah Khamenei. It shows the loyalty he has. It shows how after 4 months of his death and the bombing that was sought to decimate Iran has actually done the reverse. It has a united Iran. It has shown the public resolve. It has buried the old differences. It has made Iran more stronger than ever before. And Iran, when they are actually mourning and actually holding these celebrations, these ceremonies, funeral ceremonies, we see everybody, men, women, and children, and importantly, number of women is much, much higher in every place, which also shows the women's participation in daily lives. And what is the perception about Iran, women's safety, women's freedom? We have seen here on the ground, at least, whether somebody wear hijab or not, nobody cares. But what is one thing, whether somebody is with hijab or without, they have one resolve, that is the loyalty towards leader that is seen everywhere in Tehran and other parts of the Iran. As I said, this is death has united Iran. His death has given them a resolve. And when we see journey between his death and his funeral, last rites, it is really phenomenal. If no human being can say this or may have witnessed that a person who died and when he is buried or when his funeral rites are taken, so much has changed and so much has been achieved by the country. So that's why Iran is saying they have won this war and they are showing their collective resolve with millions of the people and, on the road.
2: And you rightly say that Khamenei and his era defined the Islamic regime in Iran, and especially after the death of Ayatollah Khamenei and the manner in which he ruled Iran. One thing I agree with you, Nasir, when you said that about 60% of women actually make up at the Tehran University, so quite contrary to the popular perception that exists. Thank you, Nasir, for joining us on the broadcast and getting us all those details. My colleague reporting from Tehran. We're stepping into a very short break. News and updates continue on the other side.
19: NDTV tops the Reuters Institute. India reach rankings again. Number one in offline and online news reach. For the sixth year in a row, audiences continue to choose NDTV across television and digital. NDTV, trusted across every screen.

0: सरकार को दिशा दे, साथ दे करके सही रास्ता दिखाए कि जनता को सही में सुशासन मिले। वो काम नहीं कर पाएंगे तो जनता आगे भी सोचेगा।
1: ममता बनर्जी सपोर्टर्स दे वेंट टू द ऑफिस, दे वांटेड टू ब्रेक द लॉक बट पुलिस प्रिवेंटेड देम फ्रॉम डूइंग सो। पुलिस सेड दैट यू कांट टच देयर लॉक। सो दिस इज एन एफर्ट made by so-called dissident TMC MLAs in support of the BJP.
2: And the SIT probe into the alleged Ram Temple donation theft is intensifying, with investigators tracking what sources describe as a larger money trail. Investigators also took accused Avinash Shukla to a yoga center where documents were examined and a fresh search was conducted. The row has taken a political turn, with Akhilesh Yadav stating that an AI-generated video of Lord Ram, and he shared this video. In this video, Lord Ram is leaving Ayodhya and asking, have they gone into an exile again? Apparent jibe at the BJP.
3: इस वक्त मैं कौशलपुरी इलाके में उस योगा सेंटर में हूं जहां अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस आई थी, और यहां पर वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा कैश बरामद हुआ था। तो अविनाश शुक्ला को पुलिस यहां पर लेकर आई थी, और ये जो बक्से रखे हैं इनकी एक बार फिर से तलाशी हुई थी, और इन बक्सों में हालांकि कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला, कोई कैश नहीं मिला। जो कैश 20 लाख रुपए पहले मिला था और साथ में 1100 अमेरिकी डॉलर और कुछ गहने बरामद हुए थे, उसके बाद कल की तलाशी में पुलिस को यहाँ से कुछ नहीं मिला है। पुलिस ने यहाँ पर रखे जो तमाम आधार कार्ड हैं, जो कागजात हैं वो देखे, और इन बक्सों को एक बार फिर से खोला, और पूरी तलाशी के बाद पुलिस यहां से निकल गई। देखिए कि बक्से में किस तरह से कम्बल और कपड़े रखे हुए हैं, और इन्हीं कम्बलों के बीच में, कपड़ों के बीच में कैश को छुपाकर रखा गया था। तो पुलिस ने इन बक्सों की तलाशी ली, और ये जो बक्सा है जो हमने पहले दिखाया था, जिस पर रामराज कोच लिखा हुआ है, हालांकि इस बक्से में ताला बंद है, लेकिन ये बक्सा फ़िलहाल यहीं पर रखा हुआ है। इस बक्से का ताला नहीं खोला गया है कि बक्से के अंदर क्या है, तो ये बक्सा यहीं पर रखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों को पुलिस ने बड़ी बारीकी से देखा। ये तमाम जो दस्तावेज हैं, ये दस्तावेज पुलिस ने बहुत बारीकी से देखे, और पुलिस ने काफ़ी लंबी यहाँ पर पूछताछ की, जाँच की, और पुलिस उसके बाद यहाँ से निकल गई। तो ये सारे दस्तावेज अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक के हैं, जो दोनों यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर जो केयर टेकर उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका?
4: हमारा सुंदरलाल नाम
3: है। कैश यहीं से बरामद हुआ था 5 जून को ना?
4: हाँ, वो तो कैश बरामद हुआ, वो तो बाद में न्यूज में निकला है, तब हमको भी जानकारी हुई कि कैश यहाँ से बरामद हुआ है।
5: अयोध्या में चंदा चोरी मामले में तमाम बरामदगी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये राम जन्मभूमि थाना है, और इस राम जन्मभूमि थाने में खड़ी इस ब्रिजा कार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जरा इस ब्रिजा कार को देखिए, ये ब्रिजा कार जिसका नंबर है UP42AP6054, दरअसल ये ब्रिजा कार अविनाश की है, उसकी निशानदेही पर पुलिस की तरफ से बरामद की गई कार है ये, और चंदा चोरी के पैसे से ये कार खरीदी गई थी। ये कार जो है, पूछताछ में पता चला पुलिस को कि अविनाश की तरफ से बताया गया कि ये कार जो चंदे चोरी का पैसा था उससे खरीदी गई। देखिए कार काफ़ी नई दिखाई दे रही है, कुछ समय पहले ही खरीदी गई है। तमाम तरीके के आरोपों के बीच में इस कार को पुलिस ने बरामद किया है। इस कार को इस समय चौकी में लाकर रखा गया है। तस्वीरें हम आपको कार की दिखा रहे हैं। ये देखिए पीछे की तरफ से इसका नंबर प्लेट हटा हुआ है, और पुलिस देखिए पीछे गाड़ी की स्थिति बता रही है कि काफ़ी नई ये कार है। यह कार नगर कोतवाली क्षेत्र के ही एक सड़क पर खड़ी थी, और जब पूछताछ हुआ और इसके बाद जब निशानदेही की गई अविनाश की तरफ से, तो पुलिस ने रिमांड में लेकर तमाम खुलासे किए और इस कार को भी बरामद किया, जो कार अब लाकर यहाँ पर राम जन्मभूमि का जो थाना है वहाँ पर रख दी गई है। तो चंदा चोरी से जुड़ी हुई तमाम जो संपत्तियाँ हैं पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है, चोरी से बनाई गई संपत्तियों को आइडेंटिफाई कर रही है, जब्त कर रही है, जिसके जरिए जो चोरी से धन निकाला गया है उसकी उगाही पुलिस आगे चलकर करेगी।
6: आजकल कुछ नकली राम भक्त अपने को सनातनी कह रहे हैं, जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि गुंबज पर तो चढ़ गए, उतर नहीं पाएंगे, गोलियों से भूंज दिया गया, चाहे मोल

0: मियां मुलायम क्यों न कहे, आज वो सबसे बड़े सनातनी बन रहे हैं। जो घटना घटी है चोरी का, वो हिंदू समाज आहत है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और वहाँ की सरकार तत्पर है और दूध का दूध पानी का पानी करके रखेंगे।
1: देश में गुस्सा है इस तरह की घटना को लेकर के, जो भगवान राम के भक्त लोग हैं उनको ठेस पहुंची है, इसमें तो दम है इस बात में। सरकार की तरफ से जो ट्रस्ट ने डिमांड रखी तो SIT गठित हो गई। प्रथम दृष्टया SIT ने 8 लोगों के खिलाफ जांच में दोषी पाया, 8 लोगों को जेल भेज दिया।
2: अभी आंदोलन करने जा रहे हैं, फिर एक बार जो राम जन्मभूमि का आंदोलन है वैसे ही छेड़ा जाएगा, क्योंकि ये सारे हिंदुओं की भावना का अपमान है कि भाजपा ने दान पेटी से पैसा को चुराया है और आज सांसदों को उसी पैसे से खरीदना चाहते हैं। तो गांव में जाके हम राम रक्षा आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि रामलल्ला का जो आंदोलन है वो रामलल्ला का रक्षण भाजपा से करे, भाजपा के लुटेरों से करे।
3: And the alleged embezzlement of donations at the Ram Temple in Ayodhya has now triggered a political war of words. Breaking his silence, RSS General Secretary Dattatreya Hosable described the alleged theft as deeply hurtful to the sentiments of devotees of Ram and appealed for patience and restraint. Hosable backed the special investigation team constituted by UP government, saying that those found guilty must face punishment, while urging people not to allow anti-Hindu and anti-national forces to exploit the incident. The Congress, however, has hit back. State Congress Chief Ajay Rai accused RSS of waking up too late, saying statements alone are not enough and demanding strict action and accountability.
4: जान गया और तमाम संगठन आपस में बैठकर के इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के बात कही जा रही है। तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।
5: तो राम मंदिर কত টাকা দিয়ে মানুষ বানালেন, কত সোনা, কত রূপো, কত দান, কত ধ্যান, আর আজকে রাম কা নাম আপনে বদনাম কর দিয়া, হিন্দুত্ব কা নাম পে খেলা আর হিন্দুইজম কো আপনে ফিনিশ কিয়া। যেমন দেখছেন না, পুনামি থালা থেকে শুরু করে, পুনামি বাক্স থেকে শুরু করে সব রাম মন্দির সবটাই নাকি ওদের সম্পদ। এবং ডিজিটালে যারা কথা বলতে চায় ইউটিউবে, একটু বিরোধিতা করলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে এবং FIR করা হচ্ছে।
6: শ্রী দত্তাত্রেয় হোসওয়ালে জি নে জো কাহা হ্যায় ওহি ইস দেশ কে লাখো করোড়ো স্বয়ং সেবকো কে করোড়ো করোড় দেশবাসীয় কি আওয়াজ থি है और रहेगी। दूसरी बात, देश के राजनेताओं ने इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
7: इतने दिन बीत जाने के बाद अब ये कुंभकर्णी नींद से उठे हैं ये लोग। आप सोच सकते हैं कि जो आज इतना पुराना प्रकरण हो गया है, सारा चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जमीन में घोटाला सब लगातार बोल रहे हैं, संघ उसमें नहीं जागा, उसमें संघों को नहीं लगता था कि ये क्या हो रहा है। अब जब लगा, गांव गांव में घर घर में चर्चा हो गई कि चढ़ावा चोर हैं ये लोग, तब ये बयान जारी कर रहे हैं, तभी वीडियो जारी कर रहे हैं। कार्रवाई कराइए, वीडियो से बयान से नहीं होगा। जो आज बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं दत्तात्रेय हसबोले, कार्रवाई करें और उनको जेल भेजें, चाहे वो चंपत राय बंसल हों, अनिल मिश्रा हों, गोविंद गिरी हों, चाहे गोपाल राव हों, क्योंकि जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता ये कह रही है। अयोध्या वासी कह रहे हैं, मैं अभी 2 दिन पहले दर्शन करने गया था, उसमें भी ये लोग व्यवधान डाल रहे थे कि दर्शन न करने दिया जाए।
3: And after the Ram temple donation theft trial exploded, another major temple finances are now under the scanner. The Badrinath Kedarnath temple committee has ordered an inquiry into allegations of misuse of donations at the temple. The move comes after claims of financial irregularities in the handling of temple funds surface. The committee says show cause notices have already been issued to those allegedly involved and the people who were involved in the finances, in the donation counting process.

जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी गण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी।

0: has been paused due to the funeral. Bureau Report, NDTV World.
1: My colleague Nasir Masoodi joining us live from Tehran, giving us a sense of how the preparations are. Nasir, give us a sense of how the preparations are right now. Saudi has sent in a delegation. Which other Gulf nations have sent in a delegation for the state funeral of Khamenei?
2: Well, death of Ayatollah Sayyid Ali Husseini Khamenei has united Iran like never before and redefined Iran as well. Just think about how much has changed between the death and the funeral ceremony in Iran. So it also defines Iran's its own journey besides the huge stature of Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. For the last 2 days, we have seen millions of people are marching on different streets and actually paying homage to the fallen leader, to the leader who would revere and see them as a hero and inspiration. As you said, more than 100 countries have sent their representatives, including official representatives from India also, and private political parties and private citizens. Large number of people are coming. The flight, I was coming from Muscat to Tehran today, I could see several people from India, civilians, they coming to participate in this, you know, funeral ceremony, which is historic. Perhaps in the recent memory, no such funeral ceremony has been seen by anyone. So it is something, it is a time we see large number of people coming, millions of millions, and this funeral ceremony is going for several days, for a week, and across ISTs in two countries, both in Iran and in Iraq, in Karbala and Najaf, two holy cities. So it clearly shows the stature of Ayatollah Khamenei. It shows the loyalty he has. It shows how after 4 months of his death and the bombing that was sought to decimate Iran has actually done the reverse. It has a united Iran. It has shown the public resolve. It has buried the old differences. It has made Iran more stronger than ever before. And Iran, when they are actually mourning and actually holding these celebrations, these ceremonies, funeral ceremonies, we see everybody, men, women, and children, and importantly, number of women is much, much higher in every place, which also shows the women's participation in daily lives. And what is the perception about Iran, women's safety, women's freedom? We have seen here on the ground, at least, whether somebody wear hijab or not, nobody cares. But what is one thing, whether somebody is with hijab or without, they have one resolve, that is the loyalty towards leader that is seen everywhere in Tehran and other parts of the Iran. As I said, this is death has united Iran. His death has given them a resolve. And when we see journey between his death and his funeral, last rites, it is really phenomenal. If no human being can say this or he may have witnessed that, a person who died, and when he is buried or when his funeral rites are taken, so much has changed and so much has been achieved by the country. So that's why Iran is saying they have won this war and they are showing their collective resolve with millions of the people
1: and,
2: on the road.
1: And you rightly
2: paying
1: say
2: homage
1: that
2: to their dear leader.
1: And his era defined the Islamic regime in Iran, and especially after the death of Ayatollah Khamenei and the manner in which he ruled Iran. One thing I agree with you, Nasir, when you said that about 60% of women actually make up at the Tehran University, so quite contrary to the popular perception that exists. Thank you. Thank you, Nasir, for joining us on the broadcast and getting us all those details. My colleague reporting from Tehran. We're stepping into a very short break. News and updates continue on the other side.
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
4: This location from Tel Aviv.
3: Brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
5: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
6: The Ayatollah Khamenei is gone.
7: There has been a missile attack right behind me.
8: And we need to rush into a shelter.
9: Heading there.
10: Will Prime Minister KP Sharma Oli
8: resign.
3: And now, Aditya Raj Gaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
9: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
10: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, and Sandy.
9: The show that sets the prime time agenda.
10: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
9: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
3: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
11: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
12: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they.
1: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Anusha Sonia. Quick check of the headlines first. Highlighting government's role amid West Asia war, Prime Minister says India beat the biggest energy crisis as government absorbed 75,000 crore rupees fuel shock. Another big blow to Mamata Banerjee. Chandrima Bhattacharya resigns as TMC Bengal president, says she withdraws from all party positions. Mamata loyalists hit back. TMC versus rebel faction war escalates over party headquarter. Mamata says her residence will be her party office from now. The monsoon session of parliament will be held from the 20th of July to the 13th of August. The opposition is expected to bring up the issue of privileged proceedings against Defence Minister Rajnath Singh. The US Department of Justice has forcefully defended its decision to abandon the criminal case against Indian billionaire Gautam Adani and seven others, telling a federal judge that the prosecution was legally flawed, diplomatically counterproductive, inconsistent with the Trump administration's enforcement priorities. In another setback for embattled Trinamool Congress chief Mamata Banerjee, the party's West Bengal president Chandrima Bhattacharya and a long-time aide of TMC chief has resigned from all party posts. In a letter addressed to the Mamata Banerjee, Chandrima relinquished responsibilities from all other posts she held in the party. She told reporters that her decision came after Mamata Banerjee accused her for the takeover of the party headquarters by the rebel faction. Well, soon after the resignation, she met the rebel faction led by Ritabrata Banerjee, which stirred a speculation of her joining the rebel camp. Mamata Banerjee, meanwhile, issued a statement saying that Chandrima is free to take her own decisions.
13: Education Minister, kokhono chota jela daitte chilen, jela porishad, gram sabha, panchayat toirite sahajjo korechen, ebong sahajjer hato bariyechen, sahajjer hato nariyechen. আমি কিন্তু সবটাই জানি, হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট বোর্ড থেকে দীঘা ডেভেলপমেন্ট বোর্ড সবটাই তো।
14: যহাঁ পর বিশ্বাস নেই হ্যাঁ, যহাঁ পর কনফিডেন্স নেই হ্যাঁ, যহাঁ পর আগর কাম করনা হ্যায় তো ও কাম ঠিক সে নেই হো পাতা, ইসলিয়ে হমনে ও ইয়ে রেজিগনেশন দিয়ে।
15: চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য হামারা রেসপেক্টেড দিদি থা। आप देखिए उनका वो तो उनका लड़का पहले ही उस कैंप में चला गया था। चंद्रिमा जी कल जब पार्टी ऑफिस में बैठे हुए थे तो वो लोग आया। चंद्रिमा जी थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अगर वहाँ पर रह जाते तो ऐसा ये तालामाला नहीं होता। वो छोड़ के चला गया बीइंग प्रेसिडेंट। और चंद्रिमा जी ममता दीदी जब चीफ मिनिस्टर थे सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के हाथ में था। तो आप देखिए जब दीदी एक के बाद एक इंक्लूडिंग फिनेंस इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री उनको दे रहे थे तब कुछ दुख नहीं हुआ। आज ममता दीदी का देने का, ममता दीदी चीफ मिनिस्टर नहीं है, ममता दीदी को देने का कुछ नहीं है, सब दुख लगने लगा और पूरा एक्सपोज हो गया। अगर दुख लगा तो बात हो सकता है, ओपोनेंट कैंप में अगर कोई जाता है तो इससे एस्टेब्लिश होता है ये प्री प्लान्ड था, पूरा प्रोसेस प्री प्लान्ड था.
1: And the battle for control of the Trinamool Congress has now spilled onto the streets and right to the doors of the party's Kolkata headquarters. A dramatic showdown unfolded after the rebel faction led by Leader of Opposition Ritabrata Banerjee laid claim to the TMC office, triggering a fresh political flashpoint. The rebel camp insists it has every right to access the premises, claiming it now the principal opposition party in the assembly is the rebel camp, and alleging that the lease of the party office has in fact expired. Hitting out at the rebels, Mamata Banerjee says that her residence will now be the party office and her only focus is now rebuilding the party.
13: আর বেইমানি করারও তো একটা সীমা থাকা উচিত. পার্টির সাথে বেইমানি না করে যে পার্টিটা আপনাদের কাছে জন্মদাত্রী মা, আপনারা তো সরাসরি বিজেপি করছেন এখন. বিজেপি করবেন আর তৃণমূল বলবেন, এটা তো হতে পারে না, কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের আদর্শ বিজেপি বিরোধী. আমাদের একটা আদর্শ আছে, আমাদের একটা নীতি আছে. আপনারা যারা বেইমানরা গদ্দাররা বিজেপির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের কথা মতো চলছেন, বিজেপি স্পন্সার্ড যারা, তারা আমি বলবো যদি সাহস থাকে, বুকের পাটা থাকে, যান গিয়ে বিজেপি থেকে জয়েন করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই. তবুও বুঝবো আপনারা বিজেপিতে চলে গেছেন. বিজেপিতে থেকে দল ভাঙার চক্রান্ত ভাবেন কি যে আমি মরে গেছি? মনে রাখবেন, আপনার পক্ষে আছে বলে সরকার, আপনি তাকে দিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে কমপ্লেন করিয়ে আপনি সিম্বল কেড়ে নিতে পারেন. যদিও আমরা জানি সিম্বল আপনার পক্ষে যাবে না, কিন্তু ধরে নিলাম যদি ভ্যানিশ কুমার বাবু আমাদের পার্টিকে ফিনিশ করার জন্য ইলেকশনটাও করেছেন, যদি সিম্বল দিয়েও দেয় তাতে কি যায় আসে? সিম্বল সেটাই হয় যেটা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে, তৃণমূল কংগ্রেসরা গ্রহণ করে. গলায় সিম্বলটা ঝুলিয়ে মানুষের কাছে যখন বেরোব, আপনারা কি আমার কণ্ঠরোধ করতে পারবেন?
8: তো হামলোক তৃণমূল কংগ্রেস কা অফিস মে গে থে আর যাকে ওহাঁ পে হামলোক ব্যাঠে, তো ইসপে কোই ক্যা আরোপ লাগা রাহা হ্যায় উসপে ধ্যান হামলোক নেহি দেঙ্গে. হামলোগোঁ কো বিধানসভা মে প্রিন্সিপাল অপোজিশন কা স্বীকৃতি মিল চুকা হ্যায়, উধর কা জো মালিক হ্যায় ও অলরেডি চিঠি দে চুকা হ্যায় কি জো লিজ থা ও ওভার হো চুকা হ্যায়, তব ভি ও লোক জবরদস্তি তো ও লোক ব্যাঠে হুয়ে হ্যায়. ক্যা এফ আই আর ক্যা, কিস কারণ সে এফ আই আর? খুদ দখল করকে ব্যাঠে হুয়ে হ্যায়. আর হামলোক জো তৃণমূল কংগ্রেস হ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেস কা জো আইডিওলজি হ্যায় উসকো হামলোক পকড়কে রাখনা চাতে হ্যায়, আর হামি লোককে উপর বল রহে উল্টা চোর কোটওয়াল কো ডাটে.
16: তৃণমূল কংগ্রেস কি ওয়ার্কার লোগো কো উপর উপর উপর নির্যাতন চল রহা হ্যায়, বিজেপি কা গুন্ডাই চল রহা হ্যায়, বড়া বড়া আচ্ছা আচ্ছা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী আপনা ঘর মে যা নেই সকতে হ্যায়, উসি টাইম তৃণমূল কংগ্রেস কি একটো গ্রুপ কো বচানে কে লিয়ে 15 মিনিট কা অন্দর সেন্ট্রাল ফোর্স আ গিয়া হ্যায়. ইসি সে ইয়ে সাবিত হো জাতা হ্যায় ये लोग बीजेपी का गोद में बैठकर बीजेपी का बी टीम होके काम कर रहे हैं.
17: ये टीएमसी का अंदरूनी मामला है, कौन नेता, कौन कब्जा करेगा ऑफिस, कौन विधानसभा में बैठेगा, कहाँ बैठेगा, ये तो माननीय स्पीकर विधानसभा में और बाहर कानून ठीक करेगा. लेकिन ये जो हो रही है ये नहीं होना चाहिए. जनता ने उनको मैंडेट दिया विपक्ष में बैठने के लिए. 15 साल सत्ता में रह के आदत खराब हो गया है, लड़ाई करने की इच्छा नहीं है, सुविधा में रहने का आदत है. लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा भूमिका होता है. हम चाहते हैं कि टीएमसी वो भूमिका का वादा करे, सरकार को दिशा दे, साथ दे करके सही रास्ता दिखाए कि जनता को सही में सुशासन मिले. वो काम नहीं कर पाएंगे तो जनता आगे भी सोचेगा.
18: ममता बनर्जी सपोर्टर्स दे वेंट टू द ऑफिस. They wanted to break the lock, but police prevented them from doing so. Police said that you can't touch the lock. So this is an effort made by so-called dissident TMC MLAs in support of the BJP.
1: And And the SIT probe into the alleged Ram Temple donation theft is intensifying, with investigators tracking what sources describe as a larger money trail. Investigators also took accused Avinash Shukla to a yoga center where documents were examined and a fresh search was conducted. The row has taken a political turn, with Akhilesh Yadav stating that an AI-generated video of Lord Ram, and he shared this video. In this video, Lord Ram is leaving Ayodhya and asking, have they gone into an exile again? Apparent jibe at the BJP.
19: इस वक्त मैं कौशलपुरी इलाके में उस योगा सेंटर में हूं जहां अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस आई थी, और यहां पर वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा कैश बरामद हुआ था। तो अविनाश शुक्ला को पुलिस यहां पर लेकर आई थी, और ये जो बक्से रखे हैं इनकी एक बार फिर से तलाशी हुई थी, और इन बक्सों में हालांकि कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला, कोई कैश नहीं मिला। जो कैश 20 लाख रुपए पहले मिला था और साथ में 1100 अमेरिकी डॉलर और कुछ गहने बरामद हुए थे, उसके बाद कल की तलाशी में पुलिस को यहां से कुछ नहीं मिला है। पुलिस ने यहां पर रखे जो तमाम आधार कार्ड हैं, जो कागजात हैं वो देखे, और इन बक्सों को एक बार फिर से खोला, और पूरी तलाशी के बाद पुलिस यहां से निकल गई। देखिए कि बक्से में किस तरह से कम्बल और कपड़े रखे हुए हैं, और इन्हीं कम्बलों के बीच में, कपड़ों के बीच में कैश को छुपाकर रखा गया था। तो पुलिस ने इन बक्सों की तलाशी ली, और ये जो बक्सा है जो हमने पहले दिखाया था, जिस पर रामराज कोच लिखा हुआ है, हालांकि इस बक्से में ताला बंद है, लेकिन ये बक्सा फ़िलहाल यहीं पर रखा हुआ है। इस बक्से का ताला नहीं खोला गया है कि बक्से के अंदर क्या है, तो ये बक्सा यहीं पर रखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों को पुलिस ने बड़ी बारीकी से देखा। ये तमाम जो दस्तावेज हैं, ये दस्तावेज पुलिस ने बहुत बारीकी से देखे, और पुलिस ने काफ़ी लंबी यहाँ पर पूछताछ की, जाँच की, और पुलिस उसके बाद यहाँ से निकल गई। तो ये सारे दस्तावेज अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक के हैं, जो दोनों यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर जो केयर टेकर, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका?
20: हमारा सुंदरलाल नाम है।
19: कैश यहीं से बरामद हुआ था 5 जून को ना?
20: हाँ, वो तो कैश बरामद हुआ, वो तो बाद में न्यूज में निकला है, तब हमको भी जानकारी हुई कि कैश यहाँ से बरामद हुआ है।
21: अयोध्या में चंदा चोरी मामले में तमाम बरामदगी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये राम जन्मभूमि थाना है, और इस राम जन्मभूमि थाने में खड़ी इस ब्रिजा कार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जरा इस ब्रिजा कार को देखिए, ये ब्रिजा कार जिसका नंबर है UP42AP6054। दरअसल ये ब्रिजा कार अविनाश की है, उसकी निशानदेही पर पुलिस की तरफ से बरामद की गई कार है ये, और चंदा चोरी के पैसे से ये कार खरीदी गई थी। ये कार जो है, पूछताछ में पता चला पुलिस को कि अविनाश की तरफ से बताया गया कि ये कार जो चंदे चोरी का पैसा था उससे खरीदी गई। देखिए कार काफ़ी नई दिखाई दे रही है, कुछ समय पहले ही खरीदी गई है। तमाम तरीके के आरोपों के बीच में इस कार को पुलिस ने बरामद किया है। इस कार को इस समय चौकी में लाकर रखा गया है। तस्वीरें हम आपको कार की दिखा रहे हैं। ये देखिए पीछे की तरफ से इसका नंबर प्लेट हटा हुआ है, और पुलिस देखिए पीछे गाड़ी की स्थिति बता रही है कि काफ़ी नई ये कार है। यह कार नगर कोतवाली क्षेत्र के ही एक सड़क पर खड़ी थी, और जब पूछताछ हुआ और इसके बाद जब निशानदेही की गई अविनाश की तरफ से, तो पुलिस ने रिमांड में लेकर तमाम खुलासे किए और इस कार को भी बरामद किया, जो कार अब लाकर यहाँ पर राम जन्मभूमि का जो थाना है वहाँ पर रख दी गई है। तो चंदा चोरी से जुड़ी हुई तमाम जो संपत्तियाँ हैं, पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है, चोरी से बनाई गई संपत्तियों को आइडेंटिफाई कर रही है, जब्त कर रही है, जिसके जरिए जो चोरी से धन निकाला गया है उसकी उगाही पुलिस आगे चलकर करेगी।
22: आजकल कुछ नकली राम भक्त अपने को सनातनी कह रहे हैं, जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि गुंबज पर तो चढ़ गए, उतर नहीं पाएंगे, गोलियों से भूंज दिया गया, चाहे मियां मुलायम क्यों न कहे, आज वो सबसे बड़े सनातनी बन रहे हैं। जो घटना घटी है चोरी का, वो हिंदू समाज आहत है, इसमें कहीं दो मत नहीं, और वहां की सरकार तत्पर है, और दूध का दूध पानी का पानी करके रखेंगे।
23: देश में गुस्सा है इस तरह की घटना को लेकर के, जो भगवान राम के भक्त लोग हैं उनको ठेस पहुंची है, इसमें तदम है। इस बात में सरकार की तरफ से जो ट्रस्ट ने डिमांड रखी, तो SIT गठित हो गई, प्रथम दृष्टया एसआईटी ने 8 लोगों के खिलाफ जांच में दोषी पाया, 8 लोगों को जेल भेज दिया।
0: अभी आंदोलन करने जा रहे हैं, फिर एक बार जो राम जन्मभूमि का आंदोलन है वैसे ही छेड़ा जाएगा, क्योंकि ये सारे हिंदुओं की भावना का अपमान है कि भाजपा ने दान पेटी से पैसा को चुराया है और आज सांसदों को उसी पैसे से खरीदना चाहते हैं। तो गांव में जाके हम राम रक्षा आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि रामलल्ला का जो आंदोलन है वो रामलल्ला का रक्षण भाजपा से करे, भाजपा के लुटेरों से करे।
1: And the alleged embezzlement of donations at the Ram Temple in Ayodhya has now triggered a political war of words. Breaking his silence, RSS General Secretary Dattatreya Hosable described the alleged theft as deeply hurtful to the sentiments of devotees of Ram and appealed for patience and restraint. Hosable backed the special investigation team constituted by UP government, saying that those found guilty must face punishment, while urging people not to allow anti-Hindu and anti-national forces to exploit the incident. The Congress, however, has hit back. State Congress Chief Ajay Rai accused RSS of waking up too late, saying statements alone are not enough and demanding strict action and accountability.
2: जान गया और तमाम संगठन आपस में बैठ करके इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के बात कही जा रही है। तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।
13: तो राम मंदिर কত টাকা দিয়ে মানুষ বানালেন, কত সোনা, কত রূপো, কত দান, কত ধ্যান, আর আজকে রাম কার নাম আপনি বদনাম কর দিয়া, হিন্দুত্ব কার নাম পে খেলা আর হিন্দুইজম কো আপনি ফিনিশ কিয়া। যেমন দেখছেন না, পুনামি থালা থেকে শুরু করে, পুনামি বাক্স থেকে শুরু করে সব রাম মন্দির সবটাই নাকি ওদের সম্পদ। এবং ডিজিটালে যারা কথা বলতে চায় ইউটিউবে, একটু বিরোধিতা করলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে এবং এফআইআর করা হচ্ছে।
4: শ্রী দত্তাত্রেয় হোসওয়ালে জি নে জো কাহা হ্যায় ওহি ইস দেশ কে লাখো করোড়ো স্বয়ং সেবকো কে করোড়ো করোড় দেশবাসিও কি আওয়াজ থি है और रहेगी। दूसरी बात, देश के राजनेताओं ने इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
5: इतने दिन बीत जाने के बाद अब ये कुंभकर्णी नींद से उठे हैं ये लोग। आप सोच सकते हैं कि जो आज इतना पुराना प्रकरण हो गया है, सारा चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जमीन में घोटाला सब लगातार बोल रहे हैं, संघ उसमें नहीं जागा, उसमें संघों को नहीं लगता था कि ये क्या हो रहा है। अब जब लगा, गांव गांव में, घर घर में चर्चा हो गई कि चढ़ावा चोर हैं ये लोग, तब ये बयान जारी कर रहे हैं, तब ये वीडियो जारी कर रहे हैं। कार्रवाई कराइए, वीडियो से बयान से नहीं होगा। जो आज बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं दत्तात्रेय हसबोले, कार्रवाई करें और उनको जेल भेजें, चाहे वो चंपत राय बंसल हों, अनिल मिश्रा हों, गोविंद गिरी हों, चाहे गोपाल राव हों, क्योंकि जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता ये कह रही है। अयोध्यावासी कह रहे हैं, मैं अभी दो दिन पहले दर्शन करने गया था, उसमें भी ये लोग व्यवधान डाल रहे थे कि दर्शन न करने दिया जाए।
1: And after the Ram temple donation theft trial exploded, another major temple finances are now under the scanner. The Badrinath Kedarnath Temple Committee has ordered an inquiry into allegations of misuse of donations at the temple. The move comes after claims of financial irregularities in the handling of temple funds surface. The committee says show cause notices have already been issued to those allegedly involved and the people who were involved in the finances in the donation counting process. An inquiry committee has been constituted to investigate. The chairman of the BKTC, Hemant Dwivedi, has assured that probe report will be made public. He's warned that anybody found guilty will face strict action.
24: सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है और चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस सो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी।
3: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
11: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
6: The eminent juries who are here and that itself speaks for the commitment towards highlighting the advantage which India is having. What I am looking for in this is that we should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
11: Be part of the jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
3: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
7: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at
1: Iran has begun an elaborate farewell for its fallen former supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. With millions expected to take part in the world leaders arriving in Tehran, the funeral has become one of the largest state ceremonies in the country's history. In a surprise turn of events, Saudi has sent a delegation for Khamenei's state funeral. A full report.
9: Thousands gathered across Tehran to mourn Ayatollah Khamenei. On the first day of the national mourning, black-clad mourners, alongside foreign dignitaries, paid their final respects. Dignitaries from around the globe are also in attendance. However, what has caught eyes across the world is a surprise attendee. Saudi Arabia has sent a special delegation accompanied by their deputy foreign minister to Iran to pay respect to the late supreme leader. The slain supreme leader of the Islamic regime was also hailed as a symbol of resistance.
10: آزادگی، عدالت طلبی، استقلال و عزت و سربلندی که برای همه مسلمان ها در حقیقت به ارمغان آورد. تقریبا تو دنیا کشوری نیست که آمریکا بخواد براشون.
9: With the final procession underway, Iran expects more than 10 million mourners and delegations from over 100 countries. The six-day procession will travel through Tehran, Qom, Najaf, Karbala and Mashhad. Ali Khamenei's coffin is put on public display at Tehran's Imam Khomeini Masala. The farewell is also taking place with stringent measures. Tehran airport will remain shut till the end of funeral public holidays declared for all 6 days. Private vehicles near the procession route also banned. More than 6,000 water sprinkles installed. Several other medical and surveillance arrangements are also in place. Iran has further commemorated its fallen supreme leader with a new monument in central Tehran. Titled The Clenched Fist, it features Khamenei's raised fist flanked by two missiles. With 20 million people expected to attend Ali Khamenei's funeral, this moment could be a powerful display of unity and strength amid the ongoing war in the region, which has been paused due to the funeral. Bureau Report, NDTV World.
1: My colleague Nasir Masoodi joining us live from Tehran, giving us a sense of how the preparation

0: So this is an effort made by so-called dissident TMC MLAs in support of the BJP.
1: And the SIT probe into the alleged Ram Temple donation theft is intensifying, with investigators tracking what sources describe as a larger money trail. Investigators also took accused Avinash Shukla to a yoga center where documents were examined and a fresh search was conducted. The row has taken a political turn, with Akhilesh Yadav stating that an AI-generated video of Lord Ram, and he shared this video. In this video, Lord Ram is leaving Ayodhya and asking, have they gone into an exile again? Apparent jibe at the BJP.
2: इस वक्त मैं कौशलपुरी इलाके में उस योगा सेंटर में हूं जहां अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस आई थी, और यहां पर वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा कैश बरामद हुआ था। तो अविनाश शुक्ला को पुलिस यहां पर लेकर आई थी, और ये जो बक्से रखे हैं इनकी एक बार फिर से तलाशी हुई थी, और इन बक्सों में हालांकि कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला, कोई कैश नहीं मिला। जो कैश 20 लाख रुपए पहले मिला था और साथ में 1100 अमेरिकी डॉलर और कुछ गहने बरामद हुए थे, उसके बाद कल की तलाशी में पुलिस को यहां से कुछ नहीं मिला है। पुलिस ने यहां पर रखे जो तमाम आधार कार्ड हैं, जो कागजात हैं वो देखे, और इन बक्सों को एक बार फिर से खोला, और पूरी तलाशी के बाद पुलिस यहां से निकल गई। देखिए कि बक्से में किस तरह से कम्बल और कपड़े रखे हुए हैं, और इन्हीं कम्बलों के बीच में, कपड़ों के बीच में कैश को छुपाकर रखा गया था। तो पुलिस ने इन बक्सों की तलाशी ली, और ये जो बक्सा है जो हमने पहले दिखाया था, जिस पर रामराज कोच लिखा हुआ है, हालांकि इस बक्से में ताला बंद है, लेकिन ये बक्सा फ़िलहाल यहीं पर रखा हुआ है। इस बक्से का ताला नहीं खोला गया है कि बक्से के अंदर क्या है, तो ये बक्सा यहीं पर रखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों को पुलिस ने बड़ी बारीकी से देखा। ये तमाम जो दस्तावेज हैं, ये दस्तावेज पुलिस ने बहुत बारीकी से देखे, और पुलिस ने काफ़ी लंबी यहाँ पर पूछताछ की, जाँच की, और पुलिस उसके बाद यहाँ से निकल गई। तो ये सारे दस्तावेज अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक के हैं, जो दोनों यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर जो केयर टेकर उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका?
3: हमारा सुंदरलाल नाम है।
2: कैश यहीं से बरामद हुआ था 5 जून को ना?
3: हाँ, वो तो कैश बरामद हुआ, वो तो बाद में न्यूज में निकला है, तब हमको भी जानकारी हुई कि कैश यहाँ से बरामद हुआ है।
4: अयोध्या में चंदा चोरी मामले में तमाम बरामदगी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। ये राम जन्मभूमि थाना है, और इस राम जन्मभूमि थाने में खड़ी इस ब्रिजा कार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जरा इस ब्रिजा कार को देखिए। ये ब्रिजा कार जिसका नंबर है UP42AP6054। दरअसल ये ब्रिजा कार अविनाश की है, उसकी निशानदेही पर पुलिस की तरफ से बरामद की गई कार है ये, और चंदा चोरी के पैसे से ये कार खरीदी गई थी। ये कार जो है, पूछताछ में पता चला पुलिस को कि अविनाश की तरफ से बताया गया कि ये कार जो चंदे चोरी का पैसा था उससे खरीदी गई। देखिए, कार काफ़ी नई दिखाई दे रही है, कुछ समय पहले ही खरीदी गई है। तमाम तरीके के आरोपों के बीच में इस कार को पुलिस ने बरामद किया है। इस कार को इस समय चौकी में लाकर रखा गया है। तस्वीरें हम आपको कार की दिखा रहे हैं। ये देखिए, पीछे की तरफ से इसका नंबर प्लेट हटा हुआ है, और पुलिस देखिए पीछे गाड़ी की स्थिति बता रही है कि काफ़ी नई ये कार है। यह कार नगर कोतवाली क्षेत्र के ही एक सड़क पर खड़ी थी, और जब पूछताछ हुआ और इसके बाद जब निशानदेही की गई अविनाश की तरफ से, तो पुलिस ने रिमांड में लेकर तमाम खुलासे किए और इस कार को भी बरामद किया, जो कार अब लाकर यहाँ पर राम जन्मभूमि का जो थाना है वहाँ पर रख दी गई है। तो चंदा चोरी से जुड़ी हुई तमाम जो संपत्तियाँ हैं, पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है, चोरी से बनाई गई संपत्तियों को आइडेंटिफाई कर रही है, जब्त कर रही है, जिसके जरिए जो चोरी से धन निकाला गया है उसकी उगाही पुलिस आगे चलकर करेगी।
5: आजकल कुछ नकली राम भक्त अपने को सनातनी कह रहे हैं, जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि गुंबज पर तो चढ़ गए, उतर नहीं पाएंगे, गोलियों से भूंज दिया गया, चाहे मियां मुलायम क्यों न कहे, आज वो सबसे बड़े सनातनी बन रहे हैं। जो घटना घटी है चोरी का, वो हिंदू समाज आहत है, इसमें कहीं दो मत नहीं, और वहाँ की सरकार तत्पर है, और दूध का दूध पानी का पानी करके रखेंगे।

0: देश में गुस्सा है इस तरह की घटना को लेकर के, जो भगवान राम के भक्त लोग हैं उनको ठेस पहुंची है, इसमें तो दम है उस बात में। सरकार के तरफ से जो ट्रस्ट ने डिमांड रखी तो SIT गठित हो गई। प्रथम दृष्टया SIT ने 8 लोगों के खिलाफ जांच में दोषी पाया, 8 लोगों को जेल भेज दिया।
1: अभी आंदोलन करने जा रहे हैं, फिर एक बार जो राम जन्मभूमि का आंदोलन है वैसे ही छेड़ा जाएगा, क्योंकि ये सारे हिंदुओं की भावना का अपमान है कि भाजपा ने दान पेटी से पैसा को चुराया है और आज सांसदों को उसी पैसे से खरीदना चाहते हैं। तो गांव में जाके हम राम रक्षा आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि राम लल्ला का जो आंदोलन है वो राम लल्ला का रक्षण भाजपा से करे, भाजपा की लुटेरों से करे।
2: And the alleged embezzlement of donations at the Ram Temple in Ayodhya has now triggered a political war of words. Breaking his silence, RSS General Secretary Dattatreya Hosable described the alleged theft as deeply hurtful to the sentiments of devotees of Ram and appealed for patience and restraint. Hosable backed the special investigation team constituted by UP government, saying that those found guilty must face punishment, while urging people not to allow anti-Hindu and anti-national forces to exploit the incident. The Congress, however, has hit back. State Congress Chief Ajay Rai accused RSS of waking up too late, saying statements alone are not enough and demanding strict action and accountability.
3: जान गया और तमाम संगठन आपस में बैठ करके इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के बात कही जा रही है। तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।
4: तो राम मंदिर কত টাকা দিয়ে মানুষ বানালেন, কত সোনা, কত রূপো, কত দান, কত ধ্যান, আর আজকে রাম কার নাম আপনি বদনাম কর দিয়া, হিন্দুত্ব কার নাম পে খেলা আর হিন্দু ইজম কো আপনি ফিনিশ কিয়া। যেমন দেখছেন না, পুনামি থালা থেকে শুরু করে, পুনামি বাক্স থেকে শুরু করে সব রাম মন্দির সবটাই নাকি ওদের সম্পদ। এবং ডিজিটালে যারা কথা বলতে চায় ইউটিউবে, একটু বিরোধিতা করলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে এবং FIR করা হচ্ছে।
5: শ্রী দত্তাত্রেয় হোসওয়ালে জি নে জো কাহা হ্যা ওহি ইস দেশ কে লাখো করোড়ো স্বয়ং সেবকোঁ কে করোড়ো করোড় দেশবাসিয়োঁ কি আওয়াজ থি है और रहेगी। दूसरी बात, देश के राजनेताओं ने इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
6: इतने दिन बीत जाने के बाद अब ये कुंभकर्णी नींद से उठे हैं ये लोग। आप सोच सकते हैं कि जो आज इतना पुराना प्रकरण हो गया है, सारा चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जमीन में घोटाला सब लगातार बोल रहे हैं, संघ उसमें नहीं जागा, उसमें संघों को नहीं लगता था कि ये क्या हो रहा है। अब जब लगा, गांव गांव में घर घर में चर्चा हो गई कि चढ़ावा चोर हैं ये लोग, तब ये बयान जारी कर रहे हैं, तभी वीडियो जारी कर रहे हैं। कार्रवाई कराइए, वीडियो से बयान से नहीं होगा। जो आज बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं दत्तात्रेय हसबोले, कार्रवाई करें और उनको जेल भेजें, चाहे वो चंपत राय बंसल हों, अनिल मिश्रा हों, गोविंद गिरी हों, चाहे गोपाल राव हों, क्योंकि जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता ये कह रही है। अयोध्या वासी कह रहे हैं, मैं अभी 2 दिन पहले दर्शन करने गया था, उसमें भी ये लोग व्यवधान डाल रहे थे कि दर्शन न करने दिया जाए।
2: And after the Ram temple donation theft trial exploded, another major temple finances are now under the scanner. The Badrinath Kedarnath Temple Committee has ordered an inquiry into allegations of misuse of donations at the temple. The move comes after claims of financial irregularities in the handling of temple funds surface. The committee says show cause notices have already been issued to those allegedly involved and the people who were involved in the finances in the donation counting process. An inquiry committee has been constituted to investigate. The chairman of the BKTC, Hemant Dwivedi, has assured that probe report will be made public. He's warned that anybody found guilty will face strict action.
7: सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति

0: कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी, और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी।
1: NDTV tops the Reuters Institute. India reach rankings again. Number one in offline and online news reach. For the sixth year in a row, audiences continue to choose NDTV across television and digital. NDTV, trusted across every screen.

0: Spilled onto the streets and right to the doors of the party's Kolkata headquarters. A dramatic showdown unfolded after the rebel faction led by Leader of Opposition Ritabrata Banerjee laid claim to the TMC office, triggering a fresh political flashpoint. The rebel camp insists it has every right to access the premises, claiming it now the principal opposition party in the assembly is the rebel camp, and alleging that the lease of the party office has in fact expired. Hitting out at the rebels, Mamata Banerjee says that her residence will now be the party office, and her only focus is now rebuilding the party.
1: আর বেইমানি করারও তো একটা সীমা থাকা উচিত। পার্টির সাথে বেইমানি না করে যে পার্টিটা আপনাদের কাছে জন্মদাত্রী মা, আপনারা তো সরাসরি বিজেপি করছেন এখন। বিজেপি করবেন আর তৃণমূল বলবেন, এটা তো হতে পারে না। কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের আদর্শ বিজেপি বিরোধী। আমাদের একটা আদর্শ আছে, আমাদের একটা নীতি আছে। আপনারা যারা বেইমানরা গদ্দাররা বিজেপির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের কথা মতো চলছেন, বিজেপি স্পন্সর্ড যারা, তারা আমি বলবো যদি সাহস থাকে, বুকের পাটা থাকে, যান গিয়ে বিজেপি থেকে জয়েন করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তবুও বুঝবো আপনারা বিজেপিতে চলে গেছেন। বিজেপিতে থেকে দল ভাঙার চক্রান্ত ভাবেন কি যে আমি মরে গেছি? মনে রাখবেন, আপনার পক্ষে আছে বলে সরকার, আপনি তাকে দিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে কমপ্লেন করিয়ে আপনি সিম্বল কেড়ে নিতে পারেন। যদিও আমরা জানি সিম্বল আপনার পক্ষে যাবে না, কিন্তু ধরে নিলাম যদি ভ্যানিশ কুমার বাবু আমাদের পার্টিকে ফিনিশ করার জন্য ইলেকশনটাও করেছেন, যদি সিম্বল দিয়েও দেয় তাতে কি যায় আসে? সিম্বল সেটাই হয় যেটা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে, তৃণমূল কংগ্রেসরা গ্রহণ করে। গলায় সিম্বলটা ঝুলিয়ে মানুষের কাছে যখন বেরোবো, আপনারা কি আমার কণ্ঠরোধ করতে পারবেন?
2: তো হামলোক তৃণমূল কংগ্রেস কা অফিস মে গয়ে থে আর যাকে ওহা পে হামলোক বেঠে, তো ইস পে কোই ক্যা আরোপ লাগা রাহা হ্যায় উস পে ধ্যান হামলোক নেহি দেঙ্গে। হামলোগো কো বিধানসভা মে প্রিন্সিপাল অপোজিশন কা স্বীকৃতি মিল চুকা হ্যায়, উধার কা জো মালিক হ্যায় ও অলরেডি চিঠি দে চুকা হ্যায় কি জো লিজ থা ও ওভার হো চুকা হ্যায়, তব ভি ও লোক জবরদস্তি তো ও লোক বেঠে হুয়ে হ্যায়। ক্যা এফ আই আর ক্যা, কিস কারণ সে এফ আই আর? খুদ দখল করকে বেঠে হুয়ে হ্যায়। হামলোক যে তৃণমূল কংগ্রেস হ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেস কাজ আইডিওলজি হ্যাঁ হামলোক পকড়কে রাখনা চাতে হ্যাঁ, হামি লোককে উপর বোল রা উল্টা চোর কোতওয়াল কো ডাটে।
3: তৃণমূল কংগ্রেস কি ওয়ার্কার লোগো কো উপর উপর নির্যাতন চল রা হ্যায়, বিজেপি কা গুন্ডাই চল রা হ্যায়, বড়া বড়া আচ্ছা আচ্ছা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী আপনা ঘর মে যা নেই সকতে হ্যায়। উসি টাইম তৃণমূল কংগ্রেস কি একটা গ্রুপ কো বচানে কে লিয়ে 15 মিনিট কা অন্দর সেন্ট্রাল ফোর্স আ গিয়া হ্যায়। ইসি সে ইয়ে সাবিত হো জাতা হ্যায়, ইয়ে লোক বিজেপি কা গোদ মে বৈঠ কর বিজেপি কা বি টিম হোকে কাম কর রহে হ্যায়।
4: ये टीएमसी का अंदरूनी मामला है, कौन नेता कौन कब्जा करेगा ऑफिस, कौन विधानसभा में बैठेगा, कहाँ बैठेगा, ये तो माननीय स्पीकर विधानसभा में और बाहर कानून ठीक करेगा। लेकिन ये जो हो रही है ये नहीं होना चाहिए। जनता ने उनको मैंडेट दिया विपक्ष में बैठने के लिए, 15 साल सत्ता में रह के आदत खराब हो गया है, लड़ाई करने की इच्छा नहीं है, सुविधा में रहने का आदत है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा भूमिका होता है। हम चाहते हैं कि टीएमसी वो भूमिका का अदा करे, सरकार को दिशा दे, साथ दे करके सही रास्ता दिखाए कि जनता को सही में सुशासन मिले। वो काम नहीं कर पाएंगे तो जनता आगे भी सोचेगा।
5: ममता बनर्जी सपोर्टर्स दे वेंट टू द ऑफिस, दे वांटेड टू ब्रेक द लॉक बट पुलिस प्रिवेंटेड देम फ्रॉम डूइंग सो। पुलिस सेड दैट यू कांट टच देयर लॉक। सो दिस इज एन एफर्ट मेड बाय सो कॉल्ड डिसिडेंट टीएमसी MLAs in support of the BJP.
0: And the SIT probe into the alleged Ram Temple donation theft is intensifying, with investigators tracking what sources describe as a larger money trail. Investigators also took accused Avinash Shukla to a yoga center where documents were examined and a fresh search was conducted. The row has taken a political turn with Akhilesh Yadav stating that an AI-generated video of Lord Ram, and he shared this video. In this video, Lord Ram is leaving Ayodhya and asking, have they gone into an exile again? Apparent jibe at the BJP.
6: इस वक्त मैं कौशलपुरी इलाके में उस योगा सेंटर में हूं जहां अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस आई थी और यहां पर वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा कैश बरामद हुआ था। तो अविनाश शुक्ला को पुलिस यहां पर लेकर आई थी और ये जो बक्से रखे हैं इनकी एक बार फिर से तलाशी हुई थी और इन बक्सों में हालांकि कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला, कोई कैश नहीं मिला। जो कैश 20 लाख रुपए पहले मिला था और साथ में 1100 अमेरिकी डॉलर और कुछ गहने बरामद हुए थे, उसके बाद कल की तलाशी में पुलिस को यहां से कुछ नहीं मिला है। पुलिस ने यहां पर रखे जो तमाम आधार कार्ड हैं, जो कागजात हैं वो देखे और इन बक्सों को एक बार फिर से खोला और पूरी तलाशी के बाद पुलिस यहां से निकल गई। देखिए कि बक्से में किस तरह से कम्बल और कपड़े रखे हुए हैं और इन्हीं कम्बलों के बीच में, कपड़ों के बीच में कैश को छुपाकर रखा गया था। तो पुलिस ने इन बक्सों की तलाशी ली और ये जो बक्सा है जो हमने पहले दिखाया था जिस पर रामराज कोच लिखा हुआ है, हालांकि इस बक्से में ताला बंद है लेकिन ये बक्सा फिलहाल यहीं पर रखा हुआ है। इस बक्से का ताला नहीं खोला गया है कि बक्से के अंदर क्या है, तो ये बक्सा यहीं पर रखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों को पुलिस ने बड़ी बारीकी से देखा। ये तमाम जो दस्तावेज हैं ये दस्तावेज पुलिस ने बहुत बारीकी से देखे और पुलिस ने काफ़ी लंबी यहाँ पर पूछताछ की, जाँच की और पुलिस उसके बाद यहाँ से निकल गई। तो ये सारे दस्तावेज अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक के हैं जो दोनों यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर जो केयर टेकर उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका?
7: हमारा सुंदरलाल नाम
6: है। कैश यहीं से बरामद हुआ था 5 जून को ना?
7: हाँ, वो तो कैश बरामद हुआ, वो तो बाद में न्यूज में निकला है, तब हमको भी जानकारी हुई कि कैश यहाँ से बरामद हुआ है।
8: अयोध्या में चंदा चोरी मामले में तमाम बरामदगी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये राम जन्मभूमि थाना है और इस राम जन्मभूमि थाने में खड़ी इस ब्रिजा कार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जरा इस ब्रिजा कार को देखिए, ये ब्रिजा कार जिसका नंबर है UP42AP6054। दरअसल ये ब्रिजा कार अविनाश की है, उसकी निशानदेही पर पुलिस की तरफ से बरामद की गई कार है ये और चंदा चोरी के पैसे से ये कार खरीदी गई थी। ये कार जो है पूछताछ में पता चला पुलिस को कि अविनाश की तरफ से बताया गया कि ये कार जो चंदे चोरी का पैसा था उससे खरीदी गई। देखिए कार काफ़ी नई दिखाई दे रही है, कुछ समय पहले ही खरीदी गई है। तमाम तरीके के आरोपों के बीच में इस कार को पुलिस ने बरामद किया है। इस कार को इस समय चौकी में लाकर रखा गया है। तस्वीरें हम आपको कार की दिखा रहे हैं। ये देखिए पीछे की तरफ से इसका नंबर प्लेट हटा हुआ है और पुलिस देखिए पीछे गाड़ी की स्थिति बता रही है कि काफ़ी नई ये कार है। यह कार नगर कोतवाली क्षेत्र के ही एक सड़क पर खड़ी थी और जब पूछताछ हुआ और इसके बाद जब निशानदेही की गई अविनाश की तरफ से तो पुलिस ने रिमांड में लेकर तमाम खुलासे किए और इस कार को भी बरामद किया, जो कार अब लाकर यहाँ पर राम जन्मभूमि का जो थाना है वहाँ पर रख दी गई है। तो चंदा चोरी से जुड़ी हुई तमाम जो संपत्तियाँ हैं पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है, चोरी से बनाई गई संपत्तियों को आइडेंटिफाई कर रही है, जब्त कर रही है, जिसके जरिए जो चोरी से धन निकाला गया है उसकी उगाही पुलिस आगे चलकर करेगी।
9: आजकल कुछ नकली राम भक्त अपने को सनातनी कह रहे हैं, जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि गुंबज पर तो चढ़ गए उतर नहीं पाएंगे, गोलियों से भूंज दिया गया, चाहे मियां मुलायम क्यों न कहे, आज वो सबसे बड़े सनातनी बन रहे हैं। जो घटना घटी है चोरी का, वो हिंदू समाज आहत है, इसमें कहीं दो मत नहीं, और वहां की सरकार तत्पर है और दूध का दूध पानी का पानी करके रखेंगे।
10: देश में गुस्सा है इस तरह की घटना को लेकर के, जो भगवान राम के भक्त लोग हैं उनको ठेस पहुंची है, इसमें तो दम है इस बात में। सरकार की तरफ से जो ट्रस्ट ने डिमांड रखी तो SIT गठित हो गई। प्रथम दृष्टया SIT ने 8 लोगों के खिलाफ जांच में दोषी पाया, 8 लोगों को जेल भेज दिया।
11: अभी आंदोलन करने जा रहे हैं, फिर एक बार जो राम जन्मभूमि का आंदोलन है वैसे ही छेड़ा जाएगा, क्योंकि ये

0: state claim to the TMC office, triggering a fresh political flashpoint. The rebel camp insists it has every right to access the premises, claiming it now the principal opposition party in the assembly is the rebel camp, and alleging that the lease of the party office has in fact expired. Hearing out at the rebels, Mamata Banerjee says that her residence will now be the party office and her only focus is now rebuilding the party.
1: আর বেইমানি করারও তো একটা সীমা থাকা উচিত। পার্টির সাথে বেইমানি না করে যে পার্টিটা আপনাদের কাছে জন্মদাত্রী মা, আপনারা তো সরাসরি বিজেপি করছেন। এখন বিজেপি করবেন আর তৃণমূল বলবেন, এটা তো হতে পারে না, কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের আদর্শ বিজেপি বিরোধী। আমাদের একটা আদর্শ হচ্ছে, আমাদের একটা নীতি আছে, আপনারা যারা বেইমানরা গদ্দাররা বিজেপির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের কথা মতো চলছেন, বিজেপি স্পন্সর্ড যারা, তারা আমি বলবো যদি সাহস থাকে, বুকের পাটা থাকে, যান গিয়ে বিজেপিতে গিয়ে জয়েন করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তবুও বুঝবো আপনারা বিজেপিতে চলে গেছেন। বিজেপিতে থেকে দল ভাঙার চক্রান্ত ভাবেন কি যে আমি মরে গেছি? মনে রাখবেন, আপনার পক্ষে আছে বলে সরকার, আপনি তাকে দিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে কমপ্লেন করিয়ে আপনি সিম্বল কেড়ে নিতে পারেন। যদিও আমরা জানি সিম্বল আপনার পক্ষে যাবে না, কিন্তু ধরে নিলাম যদি ভ্যানিশ কুমার বাবু আমাদের পার্টিকে ফিনিশ করার জন্য ইলেকশনটাও করেছেন, যদি সিম্বল দিয়েও দেয় তাতে কি যায় আসে? সিম্বল সেটাই হয় যেটা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে, তৃণমূল কংগ্রেসরা গ্রহণ করে। গলায় সিম্বলটা ঝুলিয়ে মানুষের কাছে যখন বেরোবো, আপনারা কি আমার কণ্ঠরোধ করতে পারবেন?
2: তো হাম লোক তৃণমূল কংগ্রেস কা অফিস মে গয়ে থে আর যাকে ওহা পে হাম লোক বেঠে, তো ইস পে কোই ক্যা আরোপ লাগা রাহা হ্যায় উস পে ধ্যান হাম লোক নেহি দেঙ্গে। হাম লোগো কো বিধানসভা মে প্রিন্সিপাল অপোজিশন কা স্বীকৃতি মিল চুকা হ্যায়, উধার কা জো মালিক হ্যায় ও অলরেডি চিঠি দে চুকা হ্যায় কি জো লিজ থা ও ওভার হো চুকা হ্যায়, তব ভি ও লোক জবরদস্তি তো ও লোক বেঠে হুয়ে হ্যায়। ক্যা এফ আই আর ক্যা কিস কারণ সে এফ আই আর, খুদ দখল করকে বেঠে হুয়ে হ্যায়। আর হাম লোক জো তৃণমূল কংগ্রেস হ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেস কা জো আইডিওলজি হ্যায় উসকো হাম লোক পকড়কে রাখনা চাহতে হ্যায়, আর হামি লোক কে উপর বোল রা উল্টা চোর কোতওয়াল কো ডাটে।
3: তৃণমূল কংগ্রেস কি ওয়ার্কার লোগো কো উপর উপর নির্যাতন চল রহা হ্যায়, বিজেপি কা গুন্ডাই চল রহা হ্যায়, বড়া বড়া আচ্ছা আচ্ছা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী আপনা ঘর মে যা নেই সকতে হ্যায়, উসি টাইম তৃণমূল কংগ্রেস কি একটা গ্রুপ কো বচানে কে লিয়ে 15 মিনিট কা অন্দর সেন্ট্রাল ফোর্স আ গিয়া হ্যায়। ইসি সে ইয়ে সাবিত হো জাতা হ্যায়, ইয়ে লোক বিজেপি কা গোদ মে বৈঠ কর বিজেপি কা বি টিম হোকে কাম কর রহে হ্যায়।
4: टीएमसी का अंदरूनी मामला है, कौन नेता कौन कब्जा करेगा ऑफिस, कौन विधानसभा में बैठेगा, कहाँ बैठेगा, ये तो माननीय स्पीकर विधानसभा में और बाहर कानून ठीक करेगा। लेकिन ये जो हो रही है ये नहीं होना चाहिए। जनता ने उनको मैंडेट दिया विपक्ष में बैठने के लिए, 15 साल सत्ता में रह के आदत खराब हो गया है, लड़ाई करने की इच्छा नहीं है, सुविधा में रहने का आदत है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा भूमिका होता है। हम चाहते हैं कि टीएमसी वो भूमिका का अदा करे, सरकार को दिशा दे, साथ दे करके सही रास्ता दिखाए कि जनता को सही में सुशासन मिले। वो काम नहीं कर पाएंगे तो जनता आगे भी सोचेगा।
5: ममता बनर्जी सपोर्टर्स दे वेंट टू द ऑफिस, दे वांटेड टू ब्रेक द लॉक बट पुलिस प्रिवेंटेड देम फ्रॉम डूइंग सो। Police said that you can't touch their lock. So this is an effort made by so-called dissident TMC MLAs in support of the BJP.
0: And the SIT probe into the alleged Ram Temple donation theft is intensifying, with investigators tracking what sources describe as a larger money trail. Investigators also took accused Avinash Shukla to a yoga center where documents were examined and a fresh search was conducted. The row has taken a political turn, with Akhilesh Yadav stating that an AI-generated video of Lord Ram, and he shared this video. In this video, Lord Ram is leaving Ayodhya and asking, have they gone into an exile again? Apparent jibe at the BJP.
6: इस वक्त मैं कौशलपुरी इलाके में उस योगा सेंटर में हूं जहां अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस आई थी, और यहां पर वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा कैश बरामद हुआ था। तो अविनाश शुक्ला को पुलिस यहां पर लेकर आई थी, और ये जो बक्से रखे हैं इनकी एक बार फिर से तलाशी हुई थी, और इन बक्सों में हालांकि कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला, कोई कैश नहीं मिला। जो कैश 20 लाख रुपए पहले मिला था और साथ में 1100 अमेरिकी डॉलर और कुछ गहने बरामद हुए थे, उसके बाद कल की तलाशी में पुलिस को यहाँ से कुछ नहीं मिला है। पुलिस ने यहाँ पर रखे जो तमाम आधार कार्ड हैं, जो कागजात हैं वो देखे, और इन बक्सों को एक बार फिर से खोला, और पूरी तलाशी के बाद पुलिस यहां से निकल गई। देखिए कि बक्से में किस तरह से कम्बल और कपड़े रखे हुए हैं, और इन्हीं कम्बलों के बीच में, कपड़ों के बीच में कैश को छुपाकर रखा गया था। तो पुलिस ने इन बक्सों की तलाशी ली, और ये जो बक्सा है जो हमने पहले दिखाया था जिस पर रामराज कोच लिखा हुआ है, हालांकि इस बक्से में ताला बंद है, लेकिन ये बक्सा फ़िलहाल यहीं पर रखा हुआ है। इस बक्से का ताला नहीं खोला गया है कि बक्से के अंदर क्या है, तो ये बक्सा यहीं पर रखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों को पुलिस ने बड़ी बारीकी से देखा, ये तमाम जो दस्तावेज हैं ये दस्तावेज पुलिस ने बहुत बारीकी से देखे, और पुलिस ने काफ़ी लंबी यहाँ पर पूछताछ की, जाँच की, और पुलिस उसके बाद यहाँ से निकल गई। तो ये सारे दस्तावेज अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक के हैं, जो दोनों यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर जो केयर टेकर उनसे बात करते हैं, सर क्या नाम है आपका?
7: हमारा सुंदरलाल नाम है।
6: कैश यहीं से बरामद हुआ था 5 जून को ना?
7: हाँ, वो तो कैश बरामद हुआ, वो तो बाद में न्यूज में निकला है, तब हमको भी जानकारी हुई कि कैश यहाँ से बरामद हुआ है।
8: अयोध्या में चंदा चोरी मामले में तमाम बरामदगी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये राम जन्मभूमि थाना है, और इस राम जन्मभूमि थाने में खड़ी इस ब्रिजा कार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जरा इस ब्रिजा कार को देखिए, ये ब्रिजा कार जिसका नंबर है UP42AP6054। दरअसल ये ब्रिजा कार अविनाश की है, उसकी निशानदेही पर पुलिस की तरफ से बरामद की गई कार है ये, और चंदा चोरी के पैसे से ये कार खरीदी गई थी। ये कार जो है, पूछताछ में पता चला पुलिस को कि अविनाश की तरफ से बताया गया कि ये कार जो चंदे चोरी का पैसा था उससे खरीदी गई। देखिए कार काफ़ी नई दिखाई दे रही है, कुछ समय पहले ही खरीदी गई है। तमाम तरीके के आरोपों के बीच में इस कार को पुलिस ने बरामद किया है। इस कार को इस समय चौकी में लाकर रखा गया है। तस्वीरें हम आपको कार की दिखा रहे हैं, ये देखिए पीछे की तरफ से इसका नंबर प्लेट हटा हुआ है, और पुलिस देखिए पीछे गाड़ी की स्थिति बता रही है कि काफ़ी नई ये कार है। यह कार नगर कोतवाली क्षेत्र के ही एक सड़क पर खड़ी थी, और जब पूछताछ हुआ और इसके बाद जब निशानदेही की गई अविनाश की तरफ से, तो पुलिस ने रिमांड में लेकर तमाम खुलासे किए और इस कार को भी बरामद किया, जो कार अब लाकर यहाँ पर राम जन्मभूमि का जो थाना है वहाँ पर रख दी गई है। तो चंदा चोरी से जुड़ी हुई तमाम जो संपत्तियाँ हैं पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है, चोरी से बनाई गई संपत्तियों को आइडेंटिफाई कर रही है, जब्त कर रही है, जिसके जरिए जो चोरी से धन निकाला गया है उसकी उगाही पुलिस आगे चलकर करेगी।
9: आजकल कुछ नकली राम भक्त अपने को सनातनी कह रहे हैं, जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि गुंबज पर तो चढ़ गए, उतर नहीं पाएंगे, गोलियों से भूंज दिया गया, चाहे मियां मुलायम क्यों न कहे, आज वो सबसे बड़े सनातनी बन रहे हैं। जो घटना घटी है चोरी का, वो हिंदू समाज आहत है, इसमें कहीं दो मत नहीं, और वहां की सरकार तत्पर है, और दूध का दूध पानी का पानी करके रखेंगे।
10: देश में गुस्सा है इस तरह की घटना को लेकर के, जो भगवान राम के भक्त लोग हैं उनको ठेस पहुंची है, इसमें तो दम है इस बात में। सरकार की तरफ से जो ट्रस्ट ने डिमांड रखी तो SIT गठित हो गई। प्रथम दृष्टया SIT ने 8 लोगों के खिलाफ जांच में दोषी पाया, 8 लोगों को जेल भेज दिया।
11: अभी आंदोलन करने जा रहे हैं, फिर एक बार जो राम जन्मभूमि का आंदोलन है वैसे ही छेड़ा जाएगा, क्योंकि ये सारे हिंदुओं की भावना का अपमान है कि भाजपा ने दान पेटी से पैसा को चुराया है और आज सांसदों को उसी पैसे से खरीदना चाहते हैं।

0: जाके हम राम रक्षा आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि रामलल्ला का जो आंदोलन है वो रामलल्ला का रक्षण भाजपा से करे, भाजपा के लुटेरों से करे।
1: And the alleged embezzlement of donations at the Ram Temple in Ayodhya has now triggered a political war of words. Breaking his silence, RSS General Secretary Dattatreya Hosable described the alleged theft as deeply hurtful to the sentiments of devotees of Ram and appealed for patience and restraint. Hosable backed the special investigation team constituted by UP government, saying that those found guilty must face punishment, while urging people not to allow anti-Hindu and anti-national forces to exploit the incident. The Congress, however, has hit back. State Congress Chief Ajay Rai accused RSS of waking up too late, saying statements alone are not enough and demanding strict action and accountability.
2: जान गया और तमाम संगठन आपस में बैठ कर के इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के बात कही जा रही है। तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।
3: तो राम मंदिर কত টাকা দিয়ে মানুষ বানালেন, কত সোনা, কত রূপো, কত দান, কত ধ্যান, আর আজকে রাম কা নাম আপনে বদনাম কর দিয়া, হিন্দুত্ব কা নাম পে খেলা, আর হিন্দুইজম কো আপনে ফিনিশ কিয়া। যেমন দেখছেন না, পুনামি থালা থেকে শুরু করে, পুনামি বাক্স থেকে শুরু করে সব রাম মন্দির সবটাই নাকি ওদের সম্পদ। এবং ডিজিটালে যারা কথা বলতে চায় ইউটিউবে, একটু বিরোধিতা করলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে এবং এফআইআর করা হচ্ছে।
4: শ্রী দত্তাত্রেয় হোসওয়ালে জি নে জো কাহা হ্যায় ওহি ইস দেশ কে লাখো করোড়ো স্বয়ং সেবকো কে করোড়ো করোড় দেশবাসিও কি আওয়াজ থি है और रहेगी। दूसरी बात, देश के राजनेताओं ने इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
5: इतने दिन बीत जाने के बाद अब ये कुंभकर्णी नींद से उठे हैं ये लोग। आप सोच सकते हैं कि जो आज इतना पुराना प्रकरण हो गया है, सारा चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जमीन में घोटाला सब लगातार बोल रहे हैं, संघ उसमें नहीं जागा, उसमें संघों को नहीं लगता था कि ये क्या हो रहा है। अब जब लगा, गांव गांव में, घर घर में चर्चा हो गई कि चढ़ावा चोर हैं ये लोग, तब ये बयान जारी कर रहे हैं, तभी वीडियो जारी कर रहे हैं। कार्रवाई कराइए, वीडियो से बयान से नहीं होगा। जो आज बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं दत्तात्रेय हसबोले, कार्रवाई करें और उनको जेल भेजें, चाहे वो चंपत राय बंसल हों, अनिल मिश्रा हों, गोविंद गिरी हों, चाहे गोपाल राव हों, क्योंकि जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता ये कह रही है। अयोध्यावासी कह रहे हैं, मैं अभी दो दिन पहले दर्शन करने गया था, उसमें भी ये लोग व्यवधान डाल रहे थे कि दर्शन न करने दिया जाए।
1: And after the Ram temple donation theft trial exploded, another major temple finances are now under the scanner. The Badrinath Kedarnath Temple Committee has ordered an inquiry into allegations of misuse of donations at the temple. The move comes after claims of financial irregularities in the handling of temple funds surface. The committee says show cause notices have already been issued to those allegedly involved and the people who were involved in the finances in the donation counting process. An inquiry committee has been constituted to investigate. The chairman of the BKTC, Hemant Dwivedi, has assured that probe report will be made public. He's warned that anybody found guilty will face strict action.
6: सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है और चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी।
7: Five hours to go for

0: यहाँ पर लेकर आई थी और ये जो बक्से रखे हैं इनकी एक बार फिर से तलाशी हुई थी और इन बक्सों में हालांकि कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला, कोई कैश नहीं मिला। जो कैश 20 लाख रुपए पहले मिला था और साथ में 1100 अमेरिकी डॉलर और कुछ गहने बरामद हुए थे, उसके बाद कल की तलाशी में पुलिस को यहां से कुछ नहीं मिला है। पुलिस ने यहां पर रखे जो तमाम आधार कार्ड हैं, जो कागजात हैं वो देखे और इन बक्सों को एक बार फिर से खोला और पूरी तलाशी के बाद पुलिस यहां से निकल गई। देखिए कि बक्से में किस तरह से कम्बल और कपड़े रखे हुए हैं और इन्हीं कम्बलों के बीच में, कपड़ों के बीच में कैश को छुपाकर रखा गया था। तो पुलिस ने इन बक्सों की तलाशी ली और ये जो बक्सा है जो हमने पहले दिखाया था जिस पर रामराज कोच लिखा हुआ है, हालांकि इस बक्से में ताला बंद है लेकिन ये बक्सा फ़िलहाल यहीं पर रखा हुआ है। इस बक्से का ताला नहीं खोला गया है कि बक्से के अंदर क्या है, तो ये बक्सा यहीं पर रखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों को पुलिस ने बड़ी बारीकी से देखा। ये तमाम जो दस्तावेज हैं ये दस्तावेज पुलिस ने बहुत बारीकी से देखे और पुलिस ने काफ़ी लंबी यहाँ पर पूछताछ की, जाँच की और पुलिस उसके बाद यहाँ से निकल गई। तो ये सारे दस्तावेज अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक के हैं जो दोनों यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर जो केयर टेकर उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका?
1: हमारा सुंदरलाल नाम
0: है। कैश यहीं से बरामद हुआ था 5 जून को ना?
1: हाँ, वो तो कैश बरामद हुआ, वो तो बाद में न्यूज में निकला है तब हमको भी जानकारी हुई कि कैश यहाँ से बरामद हुआ है।
2: अयोध्या में चंदा चोरी मामले में तमाम बरामदगी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये राम जन्मभूमि थाना है और इस राम जन्मभूमि थाने में खड़ी इस ब्रिजा कार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जरा इस ब्रिजा कार को देखिए, ये ब्रिजा कार जिसका नंबर है UP42AP6054, दरअसल ये ब्रिजा कार अविनाश की है, उसकी निशानदेही पर पुलिस की तरफ से बरामद की गई कार है ये और चंदा चोरी के पैसे से ये कार खरीदी गई थी। ये कार जो है पूछताछ में पता चला पुलिस को कि अविनाश की तरफ से बताया गया कि ये कार जो चंदे चोरी का पैसा था उससे खरीदी गई। देखिए कार काफ़ी नई दिखाई दे रही है, कुछ समय पहले ही खरीदी गई है। तमाम तरीके के आरोपों के बीच में इस कार को पुलिस ने बरामद किया है। इस कार को इस समय चौकी में लाकर रखा गया है। तस्वीरें हम आपको कार की दिखा रहे हैं। ये देखिए पीछे की तरफ से इसका नंबर प्लेट हटा हुआ है और पुलिस देखिए पीछे गाड़ी की स्थिति बता रही है कि काफ़ी नई ये कार है। यह कार नगर कोतवाली क्षेत्र के ही एक सड़क पर खड़ी थी और जब पूछताछ हुआ और इसके बाद जब निशानदेही की गई अविनाश की तरफ से तो पुलिस ने रिमांड में लेकर तमाम खुलासे किए और इस कार को भी बरामद किया, जो कार अब लाकर यहाँ पर राम जन्मभूमि का जो थाना है वहाँ पर रख दी गई है। तो चंदा चोरी से जुड़ी हुई तमाम जो संपत्तियाँ हैं पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है, चोरी से बनाई गई संपत्तियों को आइडेंटिफाई कर रही है, जब्त कर रही है, जिसके जरिए जो चोरी से धन निकाला गया है उसकी उगाही पुलिस आगे चलकर करेगी।
3: आजकल कुछ नकली राम भक्त अपने को सनातनी कह रहे हैं, जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि गुंबज पर तो चढ़ गए उतर नहीं पाएंगे, गोलियों से भूंज दिया गया, चाहे मियां मुलायम क्यों न कहे, आज वो सबसे बड़े सनातनी बन रहे हैं। जो घटना घटी है चोरी का, वो हिंदू समाज आहत है, इसमें कहीं दो मत नहीं, और वहां की सरकार तत्पर है और दूध का दूध पानी का पानी करके रखेंगे।
4: देश में गुस्सा है इस तरह की घटना को लेकर के, जो भगवान राम के भक्त लोग हैं उनको ठेस पहुंची है, इसमें तो दम है इस बात में। सरकार की तरफ से जो ट्रस्ट ने डिमांड रखी तो SIT गठित हो गई। प्रथम दृष्टया SIT ने 8 लोगों के खिलाफ जांच में दोषी पाया, 8 लोगों को जेल भेज दिया।
5: अभी आंदोलन करने जा रहे हैं, फिर एक बार जो राम जन्मभूमि का आंदोलन है वैसे ही छेड़ा जाएगा, क्योंकि ये सारे हिंदुओं की भावना का अपमान है कि भाजपा ने दान पेटी से पैसा को चुराया है और आज सांसदों को उसी पैसे से खरीदना चाहते हैं। तो गांव में जाके हम राम रक्षा आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि रामलल्ला का जो आंदोलन है वो रामलल्ला का रक्षण भाजपा से करे, भाजपा के लुटेरों से करे।
6: And the alleged embezzlement of donations at the Ram Temple in Ayodhya has now triggered a political war of words. Breaking his silence, RSS General Secretary Dattatreya Hosable described the alleged theft as deeply hurtful to the sentiments of devotees of Ram.

0: and appealed for patience and restraint. Hosable backed the special investigation team constituted by UP government, saying that those found guilty must face punishment, while urging people not to allow anti-Hindu and anti-national forces to exploit the incident. The Congress, however, has hit back. State Congress Chief Ajay Rai accused RSS of waking up too late, saying statements alone are not enough and demanding strict action and accountability.
1: जान गया और तमाम संगठन आपस में बैठ करके इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के बात कही जा रही है। तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची
2: है
1: और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।
3: राम मंदिर কত টাকা দিয়ে মানুষ বানালেন, কত সোনা, কত রূপো, কত দান, কত ধ্যান, আর আজকে রাম কার নাম আপনি বদনাম কর দিয়া, হিন্দুত্ব কার নাম পে খেলা, আর হিন্দু ইজম কো আপনি ফিনিশ কিয়া। যেমন দেখছেন না, পুনামি থালা থেকে শুরু করে, পুনামি বাক্স থেকে শুরু করে সব রাম মন্দির সবটাই নাকি ওদের সম্পদ। এবং ডিজিটালে যারা কথা বলতে চায় ইউটিউবে, একটু বিরোধিতা করলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে এবং এফআইআর করা হচ্ছে।
4: শ্রী দত্তাত্রেয় হোসওয়েলে জি নে জো কাহা হ্যায় ওহি ইস দেশ কে লাখো করোড়ো স্বয়ং সেবকো কে করোড়ো করোড় দেশবাসীয় কি আওয়াজ থি है और रहेगी। दूसरी बात, देश के राजनेताओं ने इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
5: इतने दिन बीत जाने के बाद अब ये कुंभकर्णी नींद से उठे हैं ये लोग। आप सोच सकते हैं कि जो आज इतना पुराना प्रकरण हो गया है, सारा चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जमीन में घोटाला सब लगातार बोल रहे हैं, संघ उसमें नहीं जागा, उसमें संघों को नहीं लगता था कि ये क्या हो रहा है। अब जब लगा, गांव गांव में, घर घर में चर्चा हो गई कि चढ़ावा चोर हैं ये लोग, तब ये बयान जारी कर रहे हैं, तब ये वीडियो जारी कर रहे हैं। कार्रवाई कराइए, वीडियो से बयान से नहीं होगा। जो आज बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं दत्तात्रेय हसबोले, कार्रवाई करें और उनको जेल भेजें, चाहे वो चंपत राय बंसल हों, अनिल मिश्रा हों, गोविंद गिरी हों, चाहे गोपाल राव हों, क्योंकि जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता ये कह रही है। अयोध्या वासी कह रहे हैं, मैं अभी दो दिन पहले दर्शन करने गया था, उसमें भी ये लोग व्यवधान डाल रहे थे कि दर्शन न करने दिया जाए।
0: And after the Ram temple donation theft trial exploded, another major temple finances are now under the scanner. The Badrinath Kedarnath Temple Committee has ordered an inquiry into allegations of misuse of donations at the temple. The move comes after claims of financial irregularities in the handling of temple funds surface. The committee says show cause notices have already been issued to those allegedly involved and the people who were involved in the finances in the donation counting process. An inquiry committee has been constituted to investigate. The chairman of the BKTC, Hemant Dwivedi, has assured that probe report will be made public. He's warned that anybody found guilty will face strict action.
6: सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है और चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी।

0: पर लेकर आई थी और ये जो बक्से रखे हैं इनकी एक बार फिर से तलाशी हुई थी और इन बक्सों में हालांकि कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला, कोई कैश नहीं मिला। जो कैश 20 लाख रुपए पहले मिला था और साथ में 1100 अमेरिकी डॉलर और कुछ गहने बरामद हुए थे, उसके बाद कल की तलाशी में पुलिस को यहां से कुछ नहीं मिला है। पुलिस ने यहां पर रखे जो तमाम आधार कार्ड हैं, जो कागजात हैं वो देखे और इन बक्सों को एक बार फिर से खोला और पूरी तलाशी के बाद पुलिस यहां से निकल गई। देखिए कि बक्से में किस तरह से कम्बल और कपड़े रखे हुए हैं और इन्हीं कम्बलों के बीच में, कपड़ों के बीच में कैश को छुपाकर रखा गया था। तो पुलिस ने इन बक्सों की तलाशी ली और ये जो बक्सा है जो हमने पहले दिखाया था जिस पर रामराज कोच लिखा हुआ है, हालांकि इस बक्से में ताला बंद है लेकिन ये बक्सा फ़िलहाल यहीं पर रखा हुआ है। इस बक्से का ताला नहीं खोला गया है कि बक्से के अंदर क्या है, तो ये बक्सा यहीं पर रखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों को पुलिस ने बड़ी बारीकी से देखा। ये तमाम जो दस्तावेज हैं, ये दस्तावेज पुलिस ने बहुत बारीकी से देखे और पुलिस ने काफ़ी लंबी यहाँ पर पूछताछ की, जाँच की और पुलिस उसके बाद यहाँ से निकल गई। तो ये सारे दस्तावेज अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक के हैं जो दोनों यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर जो केयर टेकर उनसे बात करते हैं, सर क्या नाम है आपका?
1: हमारा सुंदरलाल नाम
0: है। कैश यहीं से बरामद हुआ था 5 जून को ना?
1: हाँ, वो तो कैश बरामद हुआ, वो तो बाद में न्यूज में निकला है, तब हमको भी जानकारी हुई कि कैश यहाँ से बरामद हुआ है।
2: अयोध्या में चंदा चोरी मामले में तमाम बरामदगी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये राम जन्मभूमि थाना है और इस राम जन्मभूमि थाने में खड़ी इस ब्रिजा कार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जरा इस ब्रिजा कार को देखिए, ये ब्रिजा कार जिसका नंबर है UP42AP6054, दरअसल ये ब्रिजा कार अविनाश की है, उसकी निशानदेही पर पुलिस की तरफ से बरामद की गई कार है ये और चंदा चोरी के पैसे से ये कार खरीदी गई थी। ये कार जो है, पूछताछ में पता चला पुलिस को कि अविनाश की तरफ से बताया गया कि ये कार जो चंदे चोरी का पैसा था उससे खरीदी गई। देखिए कार काफ़ी नई दिखाई दे रही है, कुछ समय पहले ही खरीदी गई है। तमाम तरीके के आरोपों के बीच में इस कार को पुलिस ने बरामद किया है। इस कार को इस समय चौकी में लाकर रखा गया है। तस्वीरें हम आपको कार की दिखा रहे हैं, ये देखिए पीछे की तरफ से इसका नंबर प्लेट हटा हुआ है और पुलिस देखिए पीछे गाड़ी की स्थिति बता रही है कि काफ़ी नई ये कार है। यह कार नगर कोतवाली क्षेत्र के ही एक सड़क पर खड़ी थी और जब पूछताछ हुआ और इसके बाद जब निशानदेही की गई अविनाश की तरफ से, तो पुलिस ने रिमांड में लेकर तमाम खुलासे किए और इस कार को भी बरामद किया, जो कार अब लाकर यहाँ पर राम जन्मभूमि का जो थाना है वहाँ पर रख दी गई है। तो चंदा चोरी से जुड़ी हुई तमाम जो संपत्तियाँ हैं पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है, चोरी से बनाई गई संपत्तियों को आइडेंटिफाई कर रही है, जब्त कर रही है, जिसके जरिए जो चोरी से धन निकाला गया है उसकी उगाही पुलिस आगे चलकर करेगी।
3: आजकल कुछ नकली राम भक्त अपने को सनातनी कह रहे हैं, जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि गुंबज पर तो चढ़ गए, उतर नहीं पाएंगे, गोलियों से भूंज दिया गया, चाहे मियां मुलायम क्यों न कहे, आज वो सबसे बड़े सनातनी बन रहे हैं। जो घटना घटी है चोरी का, वो हिंदू समाज आहत है, इसमें कहीं दो मत नहीं, और वहां की सरकार तत्पर है और दूध का दूध पानी का पानी करके रखेंगे।
4: देश में गुस्सा है इस तरह की घटना को लेकर के, जो भगवान राम के भक्त लोग हैं उनको ठेस पहुंची है, इसमें तो दम है इस बात में। सरकार की तरफ से जो ट्रस्ट ने डिमांड रखी तो SIT गठित हो गई। प्रथम दृष्टया SIT ने 8 लोगों के खिलाफ जांच में दोषी पाया, 8 लोगों को जेल भेज दिया।
5: अभी आंदोलन करने जा रहे हैं, फिर एक बार जो राम जन्मभूमि का आंदोलन है वैसे ही छेड़ा जाएगा, क्योंकि ये सारे हिंदुओं की भावना का अपमान है कि भाजपा ने दान पेटी से पैसा को चुराया है और आज सांसदों को उसी पैसे से खरीदना चाहते हैं। तो गांव में जाके हम राम रक्षा आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि राम लल्ला का जो आंदोलन है वो राम लल्ला का रक्षण भाजपा से करे, भाजपा के लुटेरों से करे।
6: And the alleged embezzlement of donations at the Ram Temple in Ayodhya has now triggered a political war of words. Breaking his silence, RSS General Secretary Dattatreya Hosable described the alleged theft as deeply hurtful to the sentiments of devotees of Ram and appealed for patience and restraint. Hosable backed the special investigation team constituted by UP government, saying that those found guilty must face punishment, while urging people not to allow anti-Hindu and anti-national forces to exploit the incident. The Congress, however, has hit back. State Congress Chief Ajay Rai accused RSS of waking up too late, saying statements alone are not enough and demanding strict action and accountability.
7: जान गया और तमाम संगठन आपस में बैठ कर के इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के बात कही जा रही है। तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।
8: तो राम मंदिर কত টাকা দিয়ে মানুষ বানালেন, কত সোনা, কত রূপো, কত দান, কত ধ্যান, আর আজকে রাম কা নাম আপনে বদনাম কর দিয়া, হিন্দুত্ব কা নাম পে খেলা আর হিন্দুইজম কো আপনে ফিনিশ কিয়া। যেমন দেখছেন না, পুনামি থালা থেকে শুরু করে, পুনামি বাক্স থেকে শুরু করে সব রাম মন্দির সবটাই নাকি ওদের সম্পদ। এবং ডিজিটালে যারা কথা বলতে চায় ইউটিউবে, একটু বিরোধিতা করলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে এবং এফআইআর করা হচ্ছে।
9: শ্রী দত্তাত্রেয় হোসওয়েলে জি নে জো কাহা হ্যায় ওহি ইস দেশ কে লাখো করোড়ো স্বয়ং সেবকো কে করোড়ো করোড় দেশবাসীয় কি আওয়াজ থি है और रहेगी। दूसरी बात, देश के राजनेताओं ने इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
10: इतने दिन बीत जाने के बाद अब ये कुंभकर्णी नींद से उठे हैं ये लोग। आप सोच सकते हैं कि जो आज इतना पुराना प्रकरण हो गया है, सारा चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जमीन में घोटाला सब लगातार बोल रहे हैं, संघ उसमें नहीं जागा, उसमें संघों को नहीं लगता था कि ये क्या हो रहा है। अब जब लगा, गांव गांव में, घर घर में चर्चा हो गई कि चढ़ावा चोर हैं ये लोग, तब ये बयान जारी कर रहे हैं, तभी वीडियो जारी कर रहे हैं। कार्रवाई कराइए, वीडियो से बयान से नहीं होगा। जो आज बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं दत्तात्रेय हसबोले, कार्रवाई करें और उनको जेल भेजें, चाहे वो चंपत राय बंसल हों, अनिल मिश्रा हों, गोविंद गिरी हों, चाहे गोपाल राव हों, क्योंकि जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता ये कह रही है। अयोध्या वासी कह रहे हैं, मैं अभी दो दिन पहले दर्शन करने गया था, उसमें भी ये लोग व्यवधान डाल रहे थे कि दर्शन न करने दिया जाए।
6: And after the Ram temple donation theft trial exploded, another major temple finances are now under the scanner. The Badrinath Kedarnath Temple Committee has ordered an inquiry into allegations of misuse of donations at the temple. The move comes after claims of financial irregularities in the handling of temple funds surface. The committee says show cause notices have already been issued to those allegedly involved and the people who were involved in the finances in the donation counting process. An inquiry committee has been constituted to investigate. The chairman of the BKTC, Hemant Dwivedi, has assured that probe report will be made public. He's warned that anybody found guilty will face strict action.
11: सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है और चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी।
12: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break.

0: Usha Soni, a quick check of the headlines first. Highlighting government's role amid West Asia war, Prime Minister says India beat the biggest energy crisis as government absorbed 75,000 crore rupees fuel shock. Another big blow to Mamata Banerjee. Chandrima Bhattacharya resigns as TMC Bengal president, says she withdraws from all party positions. Mamata loyalists hit back. TMC versus rebel faction war escalates over party headquarter. Mamata says her residence will be her party office from now. The monsoon session of parliament will be held from the 20th of July to the 13th of August. The opposition is expected to bring up the issue of privileged proceedings against Defence Minister Rajnath Singh. The US Department of Justice has forcefully defended its decision to abandon the criminal case against Indian billionaire Gautam Adani and seven others, telling a federal judge that the prosecution was legally flawed, diplomatically counterproductive, inconsistent with the Trump administration's enforcement priorities. In another setback for embattled Trinamool Congress chief Mamata Banerjee, the party's West Bengal president Chandrima Bhattacharya and a long-time aide of TMC chief has resigned from all party posts. In a letter addressed to the Mamata Banerjee, Chandrima relinquished responsibilities from all other posts she held in the party. She told reporters that her decision came after Mamata Banerjee accused her for the takeover of the party headquarters by the rebel faction. Well, soon after the resignation, she met the rebel faction led by Ritabrata Banerjee, which stirred a speculation of her joining the rebel camp. Mamata Banerjee, meanwhile, issued a statement saying that Chandrima is free to take her own decisions.
1: Education Minister, kokhono chota jela daitte chilen, jela porishad, gram sabha, panchayat toirite sahajjo korechen, ebong sahajjer hato bariyechen, sahajjer hato nariyechen. আমি কিন্তু সবটাই জানি, হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট বোর্ড থেকে দীঘা ডেভেলপমেন্ট বোর্ড সবটাই তো
2: যাহা পর বিশ্বাস নেই হ্যাঁ যাহা পর কনফিডেন্স নেই হ্যাঁ যাহা পর আগর কাম করনা হ্যায় তো ও কাম ঠিক সে নেই হো পাতা ইসলিয়ে হমনে ও ইয়ে রেজিগনেশন দিয়ে
3: চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য হামারা রেসপেক্টেড দিদি থা आप देखिए उनका वो तो उनका लड़का पहले ही उस कैंप में चला गया था. चंद्रिमा जी कल जब पार्टी ऑफिस में बैठे हुए थे तो वो लोग आया. चंद्रिमा जी थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अगर वहाँ पर रह जाते तो ऐसा ये तालामाला नहीं होता. वो छोड़ के चला गया बीइंग प्रेसिडेंट. और चंद्रिमा जी ममता दीदी जब चीफ मिनिस्टर थे सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के हाथ में था. तो आप देखिए जब दीदी एक के बाद एक इंक्लूडिंग फिनेंस इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री उनको दे रहे थे तब कुछ दुख नहीं हुआ. आज ममता दीदी का देने का, ममता दीदी चीफ मिनिस्टर नहीं है, ममता दीदी को देने का कुछ नहीं है, सब दुख लगने लगा और पूरा एक्सपोज हो गया. अगर दुख लगा तो बात हो सकता है. ओपोनेंट कैंप में अगर कोई जाता है तो इससे एस्टेब्लिश होता है ये प्री प्लान्ड था, पूरा प्रोसेस प्री प्लान्ड था.
0: And the battle for control of the Trinamool Congress has now spilled onto the streets and right to the doors of the party's Kolkata headquarters. A dramatic showdown unfolded after the rebel faction led by Leader of Opposition Ritabrata Banerjee laid claim to the TMC office, triggering a fresh political flashpoint. The rebel camp insists it has every right to access the premises, claiming it now the principal opposition party in the assembly is the rebel camp, and alleging that the lease of the party office has in fact expired. Hitting out at the rebels, Mamata Banerjee says that her residence will now be the party office and her only focus is now rebuilding the party.
1: আর বেইমানি করারও তো একটা সীমা থাকা উচিত. পার্টির সাথে বেইমানি না করে যে পার্টিটা আপনাদের কাছে জন্মদাত্রী মা, আপনারা তো সরাসরি বিজেপি করছেন এখন. বিজেপি করবেন আর তৃণমূল বলবেন, এটা তো হতে পারে না, কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের আদর্শ বিজেপি বিরোধী. আমাদের একটা আদর্শ আছে, আমাদের একটা নীতি আছে. আপনারা যারা বেইমানরা গদ্দাররা বিজেপির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের কথা মতো চলছেন, बीजेपी

0: স্পন্সার্ড যারা, তারা আমি বলবো যদি সাহস থাকে, বুকের পাটা থাকে, যান গিয়ে বিজেপিতে গিয়ে জয়েন করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তবুও বুঝবো আপনারা বিজেপিতে চলে গেছেন, বিজেপিতে থেকে দল ভাঙার চক্রান্ত, ভাবেন কি যে আমি মরে গেছি? মনে রাখবেন, আপনার পক্ষে আছে বলে সরকার, আপনি তাকে দিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে কমপ্লেন করিয়ে আপনি সিম্বল কেড়ে নিতে পারেন, যদিও আমরা জানি সিম্বল আপনার পক্ষে যাবে না, কিন্তু ধরে নিলাম যদি ভ্যানিশ কুমার বাবু আমাদের পার্টিকে ফিনিশ করার জন্য ইলেকশনটাও করেছেন, যদি সিম্বল দিয়েও দেয়, তাতে কি যায় আসে? সিম্বল সেটাই হয় যেটা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে, তৃণমূল কংগ্রেসরা গ্রহণ করে। গলায় সিম্বলটা ঝুলিয়ে মানুষের কাছে যখন বেরোবো, আপনারা কি আমার কণ্ঠরোধ করতে পারবেন?
1: তো হম লোক তৃণমূল কংগ্রেস কা অফিস মে গয়ে থে আর যাকে ওহা পে হম লোক ব্যাঠে, তো ইস পে কোই ক্যা আরোপ লাগা রাহা হ্যায় উস পে ধ্যান হম লোক নেহি দেঙ্গে। হম লোগো কো বিধানসভা মে প্রিন্সিপাল অপোজিশন কা স্বীকৃতি মিল চুকা হ্যায়, উধার কা জো মালিক হ্যায় ও অলরেডি চিঠি দে চুকা হ্যায় কি জো লিজ থা ও ওভার হো চুকা হ্যায়, তব ভি ও লোক জবরদস্তি তো ও লোক ব্যাঠে হুয়ে হ্যায়। ক্যা এফ আই আর ক্যা, কিস কারণ সে এফ আই আর? খুদ দখল করকে ব্যাঠে হুয়ে হ্যায়। আর হম লোক জো তৃণমূল কংগ্রেস হ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেস কা জো আইডিওলজি হ্যায় উসকো হম লোক পকড় কে রাখনা চাহতে হ্যায়, আর হামি লোক কে উপর বোল রা উল্টা চোর কোতওয়াল কো ডাঁটে।
2: তৃণমূল কংগ্রেস কি ওয়ার্কার লোগো কো উপর উপর উপর নির্যাতন চল রহা হ্যায়, বিজেপি কা গুন্ডাই চল রহা হ্যায়, বড়া বড়া আচ্ছা আচ্ছা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী আপনা ঘর মে যা নেই সকতে হ্যায়, উসি টাইম তৃণমূল কংগ্রেস কি একটো গ্রুপ কো বচানে কে লিয়ে 15 মিনিট কা অন্দর সেন্ট্রাল ফোর্স আ গিয়া হ্যায়। ইসি সে ইয়ে সাবিত হো জাতা হ্যায়, ইয়ে লোক বিজেপি কা গোদ মে ব্যাঠ কর বিজেপি কা বি টিম হোকে কাম কর রহে হ্যায়।
3: टीएमसी का अंदरूनी मामला है, कौन नेता कौन कब्जा करेगा ऑफिस, कौन विधानसभा में बैठेगा, कहाँ बैठेगा, ये तो माननीय स्पीकर विधानसभा में और बाहर कानून ठीक करेगा। लेकिन ये जो हो रही है ये नहीं होना चाहिए। जनता ने उनको मैंडेट दिया विपक्ष में बैठने के लिए, 15 साल सत्ता में रह के आदत खराब हो गया है, लड़ाई करने की इच्छा नहीं है, सुविधा में रहने का आदत है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा भूमिका होता है। हम चाहते हैं कि टीएमसी वो भूमिका का वादा करे, सरकार को दिशा दे, साथ दे करके सही रास्ता दिखाए कि जनता को सही में सुशासन मिले। वो काम नहीं कर पाएंगे तो जनता आगे भी सोचेगा।
4: ममता बनर्जी सपोर्टर्स दे वेंट टू द ऑफिस, दे वांटेड टू ब्रेक द लॉक बट पुलिस प्रिवेंटेड देम फ्रॉम डूइंग सो। Police said that you can't touch their lock. So this is an effort made by so-called dissident TMC MLAs in support of the BJP.
5: And the SIT probe into the alleged Ram Temple donation theft is intensifying, with investigators tracking what sources describe as a larger money trail. Investigators also took accused Avinash Shukla to a yoga center where documents were examined and a fresh search was conducted. The row has taken a political turn, with Akhilesh Yadav stating that an AI-generated video of Lord Ram, and he shared this video. In this video, Lord Ram is leaving Ayodhya and asking, have they gone into an exile again?
6: इस वक्त मैं कौशलपुरी इलाके में उस योगा सेंटर में हूं जहां अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस आई थी, और यहां पर वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा कैश बरामद हुआ था। तो अविनाश शुक्ला को पुलिस यहां पर लेकर आई थी, और ये जो बक्से रखे हैं इनकी एक बार फिर से तलाशी हुई थी, और इन बक्सों में हालांकि कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला, कोई कैश नहीं मिला। जो कैश 20 लाख रुपए पहले मिला था और साथ में 1100 अमेरिकी डॉलर और कुछ गहने बरामद हुए थे, उसके बाद कल की तलाशी में पुलिस को यहाँ से कुछ नहीं मिला है। पुलिस ने यहाँ पर रखे जो तमाम आधार कार्ड हैं, जो कागजात हैं वो देखे, और इन बक्सों को एक बार फिर से खोला, और पूरी तलाशी के बाद पुलिस यहां से निकल गई। देखिए कि बक्से में किस तरह से कम्बल और कपड़े रखे हुए हैं और इन्हीं कम्बलों के बीच में, कपड़ों के बीच में कैश को छुपाकर रखा गया था। तो पुलिस ने इन बक्सों की तलाशी ली और ये जो बक्सा है जो हमने पहले दिखाया था जिस पर रामराज कोच लिखा हुआ है, हालांकि इस बक्से में ताला बंद है लेकिन ये बक्सा फिलहाल यहीं पर रखा हुआ है। इस बक्से का ताला नहीं खोला गया है कि बक्से के अंदर क्या है, तो ये बक्सा यहीं पर रखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों को पुलिस ने बड़ी बारीकी से देखा, ये तमाम जो दस्तावेज हैं ये दस्तावेज पुलिस ने बहुत बारीकी से देखे और पुलिस ने काफ़ी लंबी यहाँ पर पूछताछ की, जांच की और पुलिस उसके बाद यहाँ से निकल गई। तो ये सारे दस्तावेज अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक के हैं जो दोनों यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर जो केयर टेकर उनसे बात करते हैं, सर क्या नाम है आपका?
7: हमारा सुंदरलाल नाम है।
6: कैश यहीं से बरामद हुआ था 5 जून को ना?
7: हाँ, वो तो कैश बरामद हुआ, वो तो बाद में न्यूज में निकला है, तब हमको भी जानकारी हुई कि कैश यहाँ से बरामद हुआ है।
8: अयोध्या में चंदा चोरी मामले में तमाम बरामदगी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये राम जन्मभूमि थाना है और इस राम जन्मभूमि थाने में खड़ी इस ब्रिजा कार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जरा इस ब्रिजा कार को देखिए, ये ब्रिजा कार जिसका नंबर है UP42AP6054। दरअसल ये ब्रिजा कार अविनाश की है, उसकी निशानदेही पर पुलिस की तरफ से बरामद की गई कार है ये और चंदा चोरी के पैसे से ये कार खरीदी गई थी। ये कार जो है पूछताछ में पता चला पुलिस को कि अविनाश की तरफ से बताया गया कि ये कार जो चंदे चोरी का पैसा था उससे खरीदी गई। देखिए कार काफ़ी नई दिखाई दे रही है, कुछ समय पहले ही खरीदी गई है। तमाम तरीके के आरोपों के बीच में इस कार को पुलिस ने बरामद किया है। इस कार को इस समय चौकी में लाकर रखा गया है। तस्वीरें हम आपको कार की दिखा रहे हैं, ये देखिए पीछे की तरफ से इसका नंबर प्लेट हटा हुआ है और पुलिस देखिए पीछे गाड़ी की स्थिति बता रही है कि काफ़ी नई ये कार है। यह कार नगर कोतवाली क्षेत्र के ही एक सड़क पर खड़ी थी और जब पूछताछ हुआ और इसके बाद जब निशानदेही की गई अविनाश की तरफ से तो पुलिस ने रिमांड में लेकर तमाम खुलासे किए और इस कार को भी बरामद किया, जो कार अब लाकर यहाँ पर राम जन्मभूमि का जो थाना है वहाँ पर रख दी गई है। तो चंदा चोरी से जुड़ी हुई तमाम जो संपत्तियाँ हैं पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है, चोरी से बनाई गई संपत्तियों को आइडेंटिफाई कर रही है, जब्त कर रही है, जिसके जरिए जो चोरी से धन निकाला गया है उसकी उगाही पुलिस आगे चलकर करेगी।
9: आजकल कुछ नकली राम भक्त अपने को सनातनी कह रहे हैं, जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि गुंबज पर तो चढ़ गए उतर नहीं पाएंगे, गोलियों से भूंज दिया गया, चाहे मियां मुलायम क्यों न कहे, आज वो सबसे बड़े सनातनी बन रहे हैं। जो घटना घटी है चोरी का, वो हिंदू समाज आहत है, इसमें कहीं दो मत नहीं, और वहां की सरकार तत्पर है और दूध का दूध पानी का पानी करके रखेंगे।
10: देश में गुस्सा है इस तरह की घटना को लेकर के, जो भगवान राम के भक्त लोग हैं उनको ठेस पहुंची है, इसमें तो दम है। इस बात में सरकार की तरफ से जो ट्रस्ट ने डिमांड रखी तो SIT गठित हो गई। प्रथम दृष्टया SIT ने 8 लोगों के खिलाफ जांच में दोषी पाया, 8 लोगों को जेल भेज दिया।
11: अभी आंदोलन करने जा रहे हैं, फिर एक बार जो राम जन्मभूमि का आंदोलन है वैसे ही छेड़ा जाएगा, क्योंकि ये सारे हिंदुओं की भावना का अपमान है कि भाजपा ने दान पेटी से पैसा को चुराया है और आज सांसदों को उसी पैसे से खरीदना चाहते हैं। तो गांव में जाके हम राम रक्षा आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि राम लल्ला का जो आंदोलन है वो राम लल्ला का रक्षण भाजपा से करे, भाजपा के लुटेरों से करे।
5: And the alleged embezzlement of donations at the Ram Temple in Ayodhya has now triggered a political war of words. Breaking his silence, RSS General Secretary Dattatreya Hosable described the alleged theft as deeply hurtful to the sentiments of devotees of Ram and appealed for patience and restraint. Hosable backed the special investigation team constituted by UP government, saying that those found guilty must face punishment, while urging people not to allow anti-Hindu and anti-national forces to exploit the incident. The Congress, however, has hit back. State Congress Chief Ajay Rai accused RSS of waking up too late, saying statements alone are not enough and demanding strict action and accountability.
12: जान गया है और तमाम संगठन आपस में बैठ करके इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के बात कही जा रही है। तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।
0: तो राम मंदिर কত টাকা দিয়ে মানুষ বানালেন, কত সোনা, কত রূপো, কত দান, কত ধ্যান, আর আজকে রাম কার নাম আপনি বদনাম কর দিয়া, হিন্দুত্ব কার নাম পে খেলা আর হিন্দু ইজম কো আপনি ফিনিশ কিয়া। যেমন দেখছেন না, পুনামী থালা থেকে শুরু করে, পুনামী বাক্স থেকে শুরু করে সব রাম মন্দির সবটাই নাকি ওদের সম্পদ। এবং ডিজিটালে যারা কথা বলতে চায় ইউটিউবে, একটু বিরোধিতা করলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে এবং এফআইআর করা হচ্ছে।
13: শ্রী দত্তাত্রেয় হোসওয়ালে জি নে জো কাহা হ্যায় ওহি ইস দেশ কে লাখো করোড়ো স্বয়ং সেবকোঁ কে করোড়ো করোড় দেশবাসিয়ো কি আওয়াজ থি है और रहेगी। दूसरी बात, देश के राजनेताओं ने इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
14: इतने दिन बीत जाने के बाद अब ये कुंभकर्णी नींद से उठे हैं ये लोग। आप सोच सकते हैं कि जो आज इतना पुराना प्रकरण हो गया है, सारा चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जमीन में घोटाला सब लगातार बोल रहे हैं, संघ उसमें नहीं जागा, उसमें संघों को नहीं लगता था कि ये क्या हो रहा है। अब जब लगा, गांव गांव में घर घर में चर्चा हो गई कि चढ़ावा चोर हैं ये लोग, तब ये बयान जारी कर रहे हैं, तभी वीडियो जारी कर रहे हैं। कार्रवाई कराइए, वीडियो से बयान से नहीं होगा। जो आज बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं दत्तात्रेय हसबोले, कार्रवाई करें और उनको जेल भेजें, चाहे वो चंपत राय बंसल हों, अनिल मिश्रा हों, गोविंद गिरी हों, चाहे गोपाल राव हों, क्योंकि जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता ये कह रही है। अयोध्या वासी कह रहे हैं, मैं अभी दो दिन पहले दर्शन करने गया था, उसमें भी ये लोग व्यवधान डाल रहे थे कि दर्शन न करने दिया जाए।
5: And after the Ram temple donation theft trial exploded, another major temple finances are now under the scanner. The Badrinath Kedarnath Temple Committee has ordered an inquiry into allegations of misuse of donations at the temple. The move comes after claims of financial irregularities in the handling of temple funds surface. The committee says show cause notices have already been issued to those allegedly involved and the people who were involved in the finances in the donation counting process. An inquiry committee has been constituted to investigate. The chairman of the BKTC, Hemant Dwivedi, has assured that probe report will be made public. He's warned that anybody found guilty will face strict action.
15: सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है और चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी।
16: NDTV tops the Reuters Institute. India reach rankings again. Number one in offline and online news reach. For the sixth year in a row, audiences continue to choose NDTV across television and digital. NDTV, trusted across every screen.